गलियां ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स की जहां हम बात कर रहे थे, बहुत सी चीजें सामने आई और जब स्ट्रेस को देखा तो उससे जुड़े हुए कई एस्पेक्ट्स आए थे। ऐसा ही एक एस्पेक्ट हमारे जीवन का है जिससे हम अभी तक पार नहीं पा रहे और कई बार उसे जस्टिफाई करते हैं, और वो है हमें गुस्सा आना, एंगर। एंगर मैनेजमेंट पे बहुत सी हमने क्लासेस अटेंड किए हैं, बहुत से सेमिनार सीखे हैं, लेकिन फिर भी इनहेरेंटली जो गुस्सा जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और कई रूपों में फिर अगर हम वो जो बाहर एक्सप्रेस करते थे वो नहीं कर पा रहे तो कई और रूपों में वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। इस कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो एंगर से जुड़ा हुआ है जिसको हमें चेंज करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जो हमें डिप्लीट करती हैं, जो सारी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि अब हमने समझा हैप्पीनेस या लव या पीस या कंटेंटमेंट जो है वो एक एस्पेक्ट मेरे फील करने का, और उससे जुड़ा जितने भी बाकी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एंगर था, स्ट्रेस था, जेलसी है, फियर है, वो एक नेगेटिव। सो नेगेटिव को कन्वर्ट करना है हमें पॉजिटिव में। आज बात करते हैं एंगर की। व्हाई इज इट दैट वी आर रियली अंडरस्टैंडिंग कि एंगर इज नॉट गुड, बट अगेन वो
1: कौन सी फील? एंगर इज नॉट गुड।
0: आई फील कम्प्लीटली, आई टोटली कम्प्लीट। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई नेवर यूज्ड टू फील, आई यूज्ड टू फील इज जस्टिफाइड,
1: राइट।
0: लेकिन अब मेरे को हर बार ये लगता है जब भी मैं गुस्सा करती हूँ या मैं किसी और को देखती हूँ, एक्चुअली किसी और को देखना जब शुरू करते हैं ना गुस्से में, तब बहुत क्लियरली रियलाइजेशन होता है कि व्हाट इज इट, आई मीन यू नो इट कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली।
1: एब्सोल्युटली। सी दिस इज सच अ डिफरेंट नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट कि चाहे कितनी भी बात बड़ी हो जाए, लेकिन जैसे ही हम किसी और को गुस्से में देखते हैं, हमें उसका गुस्सा लॉजिकल नहीं लगता कभी भी। हम कहते हैं ये बिना बात के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मतलब, एंड फिर हम उनको कहते भी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये बात ही आप तो आराम से भी। नेवर हैव वी एवर फेल्ट कि किसी का भी गुस्सा जस्टिफाइड है। वी फील कि ये नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है। एंड दैट मीन्स द सेम अप्लाइज टू मी कि किसी भी परिस्थिति में मेरा गुस्सा जस्ट, एंड गुस्सा कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो, गुस्सा जरूरी loud explosion हो ये necessary नहीं है।
0: It goes deep in, you know.
1: Yes, it is something holding back, पकड़ के रखी है बात, लेकिन अंदर ही अंदर
0: वो सिमर करते रहना, you know, that's again वो अंदर अंदर जो वो सिमर हो रहा होता है।
1: So इसको भी अगर हम सचमुच में happiness really create करना चाहते हैं, तो one thing we will have to remember कि happiness and anger ये कट्ठे कट्ठे नहीं चल सकता है। तो इसमें हमें अपनी बिलीफ को चेक करना पड़ेगा कि हैप्पीनेस नेचुरल है या एंगर नेचुरल है। तो दोनों में से हमें अब चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती, वो कट्ठे नहीं रह सकते आपके अंदर। नाउ यू चूज। अब हो क्या रहा है, वी आर चूजिंग एंगर, क्योंकि हमने अपने आप को कहा कि इससे काम होता है, इससे लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं, इससे कोई बिगड़ता नहीं है, यू नो, लोगों के अंदर मोटिवेशन, ये सारे जो हमने अपने आप को बिलीव्स दिए, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर चूजिंग एंगर। अब दोनों के बीच में अगर हमें चूज करना पड़ा, तो आज हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता कि हमारी जीवन खुशी के बिना चल रही है, लेकिन गुस्से के बिना
0: चल नहीं पा रही ना?
1: चल नहीं पा
0: रही। बिना गुस्सा की मैंने कितने दिन कोशिश की कि गुस्सा ना करूं, काम नहीं हुआ,
1: काम नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि जब दोनों की ऑप्शन हमारे सामने आई, हमने किसको चूज कर लिया,
0: गुस्से
1: को। तो अगर चूज किया है तो फिर उसके साथ जीवन जीना होगा ना। आपके पास दो आए थे कि आपने किसके साथ अपना जीवन जीना है, तो आपने चूज किया गुस्सा। अब जी रहे हैं गुस्से के साथ, चूज भी गुस्सा किया, और गुस्से के साथ जीते जीते मांग किसकी कर रहे हैं,
0: खुशी,
1: मुझे खुशी चाहिए। तो फिर गो गिव योर लिव योर लाइफ विद हैप्पीनेस, बट नो, आई वांट टू लिव माय लाइफ विद एंगर, बट आई वांट हैप्पी,
0: दिस इज माय बर्थ राइट, यू नो, बीइंग हैप्पी, आई एम लाइक आई वांट टू बी हैप्पी एक्चुअली।
1: या एग्जैक्टली, बट दैट्स व्हाट वी सेड, वो दोनों कट्ठे नहीं रह सकते। तो हम खुश रहना बहुत ईजी है, हम रह सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें कट्ठे नहीं रह सकती। जिस दिन आपने गुस्से को ये रियलाइज कर लिया कि इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है, इसके बिना मेरा जीवन बहुत अच्छा चल सकता है, सिर्फ चल सकता है मतलब आई एम नॉट ड्रैगिंग इट, बहुत अच्छा चल सकता है, उस दिन आपको खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। खुशी तो आपका, खुश तो हम ऑलरेडी हैं, हम अभी खुश हैं। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आई डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस इज नेचुरल। राइट नाउ आई एम हैप्पी, बट राइट नाउ अगर कुछ हो जाए जिससे मैंने गुस्सा क्रिएट किया, तो फिर मेरी हैप्पीनेस जो थी वो
0: चली गई।
1: क्योंकि उसकी प्लेस में रिप्लेस हो गया गुस्से से. बैठकर कभी खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है. इवन दो वी बीन सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन हैप्पीनेस, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, इट्स ऑलरेडी देयर. वी आर क्रिएटिंग एंगर, वी आर क्रिएटिंग पेन, वी आर क्रिएटिंग हर्ट. एंड जैसे ये क्रिएट हो गए,
0: देन यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस अगेन.
1: That is what. Otherwise, अगर हमने ये ध्यान रख लिया कि गुस्सा नहीं क्रिएट करना, तो हमें कोई बैठ के खुशी क्रिएट नहीं करनी है.
0: हाँ, actually, अगर हम सारा दिन में देखें तो हम नॉर्मल जब होते हैं
1: तो नॉर्मल
0: नॉर्मल स्टेट में होते हैं, तो हैप्पी होते हैं.
1: क्या होते हैं? हैप्पी मीन स्टेबिलिटी. तो नॉर्मल होते हैं तो स्टेबल है, लेकिन स्पाइक आया कोई तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टर्ब हो गई. स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं करनी है. दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग लिबरेशन कि मुझे खुशी के लिए कुछ नहीं करना है. आज तक हम सब कुछ खुशी के लिए कर रहे थे. खुशी ऑलरेडी है, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट द थॉट एवरी मॉर्निंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, आई डोंट वॉन्ट हैप्पीनेस, आई डोंट नीड हैप्पीनेस, इट्स ऑलरेडी देयर. हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ये हर आत्मा का नेचुरल स्वभाव है. और नेचुरल मतलब जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता. तो हमें अब सिर्फ सारा दिन क्या ध्यान रखना है कि हम कुछ अननेचुरल ना क्रिएट कर दें. और उसके लिए हमें ये अपने जो बिलीफ्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, बहुत पक्के जो बना दिए, कि एक तो गुस्से से काम होता है, गुस्से से हम औरों को मोटिवेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि बच्चों को हम गुस्से से मोटिवेट करते. बच्चों को कभी भी अपने आप से पूछो, बच्चों को डांटा और फिर कहा पढ़ने जाओ, तो बच्चे डांट सुने, अगर किसी को भी डांटा जाएगा तो उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होगी? अब डांट खाने के बाद बच्चा पढ़ने बैठे, हाउ वुड ही स्टडी? इफ समवन शाउट्स एट
0: हमारे साथ, हाँ, करें अगर तो हम नहीं,
1: और फिर हम अभी वी जस्ट हैव टू पुट आवरसेल्फ इन दैट पोजीशन कि किसी ने, और किसी ने भी नहीं, वो जो सबसे मेरे लिए
0: उसमें पता है, इतना कंटिन्यूअस फिर दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती
1: है. एग्जैक्टली. सो अब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो लोग जो मेरे लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मुझे डांटा और वो डांट सुनने के बाद अब मैं पढ़ने बैठी हूँ.
0: I can actually imagine what happens to the child, you know.
1: But we are doing it day in, day out. वो भी कभी कभी नहीं हो रहा है. This is a ritual जैसा हो गया है जो हर घर के अंदर रोज क्रिएट हो रहा है. होमवर्क करना है, होमवर्क कराना है, तो उसका तरीका कौन सा है? एंड फिर पेरेंट्स ने ये बिलीफ ही बना लिया है कि गुस्से के बिना तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो वो दूसरा कोई मेथड ट्राई भी नहीं करते हैं. सीधा और अच्छा, एक बार कहेंगे, एक बार प्यार से बोला, दो बार प्यार से बोला, मैं कितनी बार प्यार से बोलूं? अब ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत डिप्लीटिंग है, क्योंकि मुझे रोज पढ़ाना है. जो काम हमें रोज करना है, अगर हमने उसको ये डिप्लीटिंग एनर्जी के साथ एक फिट कर लिया अपने लाइफ में कि इसके लिए तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, व्हाट एम आई टेलिंग मायसेल्फ कि रोज तुम्हें इस बात पे गुस्सा तो करना ही करना है. अब रोज शाम को गुस्सा करेंगे तो हालत कैसी हो जाएगी? और करते करते करते फिर वो मेरा बन गया संस्कार. इसी तरह ऑफिस में अब गुस्सा करना है, एक तो नहीं है लोग ऑफिस में, पांच हैं, दस हैं, हर एक अपने अपनी स्थिति से काम कर रहा है, लेकिन गुस्से से ही काम होगा. आई मीन समटाइम वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से व्हेन वी ट्राइंग टू से कि गुस्से से ही काम होगा? व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? हम क्या मैसेज अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात तब मानेगा
0: जब मैं एबनॉर्मल होंगी, जब मैं नॉर्मल नहीं होंगी, कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर रही
1: हूं. जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल चले जाऊंगी तो सामने वाला मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल मायसेल्फ. या सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मेरा आउट ऑफ कंट्रोल जाना
0: जरूरी
1: है. हाउ इज इट लॉजिकली? आई मीन जस्ट लॉजिक डिफाइज इट, जस्ट डिफाइज एवरीथिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? एक रिलेशनशिप के अंदर अगर हमें एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है, सो व्हाट इज द बेसिक वैल्यू दैट्स नीडेड? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. अब ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बीच में एंगर कहाँ फिट होगा? कहाँ फिट हो रहा है? इट जस्ट डजंट फिट. एंड जैसे ही हमने किसी से गुस्से से किया, रिस्पेक्ट
0: अपने आप आने लगती है ना. फिर यही तो मैं कहना चाहती थी. नो, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. आई जस्ट रियलाइज दैट, यू नो, कि रिस्पेक्ट
1: करने से रिस्पेक्ट आती है.
0: आई कुड एक्चुअली, नो, बट आई कुड विजुलाइज ऑल द पीपल, बॉसेस, पेरेंट्स, यू नो, टीचर्स, एवरीवेयर, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. जो रिस्पेक्ट वो डिमांड करते हैं, जो वो चीज़ वो डिमांड कर रहे होते हैं, जो एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, वो सिर्फ पूरा वो एटमॉस्फेयर वैसा बना के they see that that work starts happening.
1: Work starts happening. We're not denying that work will start
0: but
1: happening.
0: ऊपर से जो respect है वो भी नजर आने
1: लगती है. Fear है. Is fear and respect the same thing? Anger will always create that energy जो सिर्फ मुझे नहीं deplete करती, लेकिन साथ वाले को भी deplete करती है. And trust and respect. आप किसी भी office में देख लो, जहाँ senior बहुत उस habit में है गुस्सा करने के, तो सारे जो उनके अंडर काम करते हैं वो उनके बारे में सामने तो यस सर करेंगे, पीछे तो वो रिस्पेक्ट का क्या फायदा. आई मीन इट्स जस्ट दैट प्रोबेबली ये कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को हम समझते हैं कि बूस्ट करता है कि एटलीस्ट मेरे सामने इसने यू नो मेरी बात मान ली यस सर का. जैसे ही मैं बाहर गया दरवाजा बंद हुआ आपस में. सो इज दिस रिस्पेक्ट व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अगेंस्ट द बॉस? रिस्पेक्ट वो होती कि चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है,
0: अंदर से हमें अच्छा फील होता है.
1: लेकिन वो अच्छा फील मुझे कब होगा? जब उनके साथ इंटरेक्शन में हमारी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि जिनको हम दर्द वाली पेनफुल एनर्जी भेज रहे हैं हर टाइम वो हमारे लिए अच्छा सोचे. हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव नॉट गिवन देम दैट एनर्जी. आई विल हैव टू गिव देम द राइट एनर्जी फॉर देम टू थिंक राइट. उतने स्ट्रॉन्ग बहुत कम हैं हम जो हम डांट सुनते जाएं वो
0: और हम अच्छा फील करते हैं. एक्चुअली देन वी स्टार्ट अवॉइडिंग देम आल्सो ना.
1: Natural
0: हम उनका बॉस का मूड देखकर मम्मी का मूड देखकर जाएंगे. सो अगेन ये मैनिपुलेशन
1: दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. सी अगर रिस्पेक्ट मींस कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं आई विल बी ऑलवेज ओपन टू कमिंग टू यू. मतलब मेरा जब मन चाहे और मेरे अंदर जो है आई विल बी एबल टू शेयर विद यू. लेकिन दिस इज फियर कि मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपके सामने ये बात नहीं कर सकती या ये बात मुझे आपसे छुपानी पड़ेगी. आज ऑफिस कल्चर में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट वर्कशॉप में कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. कैसे मैं ट्रांसपेरेंट हूँ अपने बॉस के साथ? जहाँ मैंने जाकर उसको बता दिया कुछ, इज ही गोइंग टू एक्सेप्ट मी और शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट मी एज आई एम? नहीं, वो तो तुरंत ऐसे हो जाएगी, डांट पड़ेगी. तो डांट सुनने के लिए आई शुड गो एंड टेल द ट्रूथ? तब तो उल्टा गलती पकड़े जाने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ. क्यों हम झूठ बोलते हैं ऑफिस में? सिर्फ उस डांट से बचने के लिए. तो एक हम झूठ बोलते हैं, दूसरा हम उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं. सर मेरी गलती नहीं थी, ये तो ना उन्होंने ऐसा ऐसा किया. दिस एक्चुअली स्पॉइल्स द एंटायर वर्क फोर्स के अंदर जो टीम स्पिरिट है वो खराब होती. लेकिन अगर बॉस डांटे नहीं तो फिर इट विल जस्ट नेवर हैपन. अगर आप किसी को देखते हैं, लेट्स से हम एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं, कि एक ने गलती की दूसरे ने उसको डांट रहा है, हम एक थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व करते, हमें किसकी गलती बड़ी लग रही होती है?
0: जो डांट रहा है कि डोंट डू दैट, यू नो इट्स ओके.
1: हम उसके हम क्योंकि जो दूसरा है उसको तो हम एक्सेप्ट बहुत इजीली करते हैं कि गलती तो हो ही जाती है या यू कुड हैव बीन स्लो, यू डिडंट फिनिश, व्हाटएवर. लेकिन जो डांट रहा है वो कभी हमें सही नहीं लगता, क्योंकि इनहेरेंट नेचर हर एक की है शांति. We are all very peaceful. तो हमें गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं लग सकता. तो जब हमें कोई और करते हुए ठीक नहीं लग रहा, तो जिसको मिल रहा होगा सारा दिन मेरे से, वो मेरे बारे में कैसा सोचता होगा? They just can't be respect. लेकिन हम क्यों गुस्सा करते हैं? Why do we get angry? क्योंकि अंदर हमारे अंदर वो flexibility नहीं है. Inwardly यहाँ पर मेरे अंदर वो flexibility नहीं है कि जो बाहर हो रहा है
0: उसे एक्सेप्ट कर.
1: वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर नहीं मैच होता आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. तो ये किसकी ज्यादा कमजोरी है?
0: मुझे वो चेंज करने की, फटाफट अपने आप को अपने पूरे थॉट प्रोसेस.
1: लेट्स से मैंने आकर अपने जूनियर को कहा कि ये काम एक घंटे में पूरा हो जाना चाहिए. आई गो आउट आफ्टर वन आवर आई कम बैक एंड द वर्क इज नॉट डन. तो मैंने फिक्स किया था कि ये काम होना चाहिए एक घंटे के अंदर, लेकिन सामने वाले को डेढ़ घंटा लग गया या कई बार थोड़ा सा ज्यादा भी लग गया. सो व्हाट डू आई डू? आई इमीडिएटली, बिकॉज आई फील कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो अगली बार वो काम
0: टाइम पे हो जाएगा और उसे रियलाइज हो जाएगा. तो फिर लेकिन अगर उसकी सपोज लापरवाही है, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी या ही इज लाइक नॉट डन इट डेलिबरेटली, तब फिर क्या करें?
1: तब भी गुस्से से क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सी एम्पावर करना लोगों को, मतलब अगर आप हमेशा राइट एनर्जी भेजते हो लोगों को, आप प्यार से ही, ये एक दिन में नहीं होगी बात, चार दिन में नहीं होगी, दिस विल टेक लिटिल टाइम, कि आप प्यार से ही काम कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया ठीक से, आप फिर भी अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखो, आप फिर भी ठीक से एक्सेप्ट करो कि हो सकता है नहीं हुआ. पूछ लो, एक्सपेक्ट करो और विश्वास करो कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है. यू नो, पर क्या, वेयर दिस विशेस साइकिल बिगिंस. आई कम एंड आस्क यू, ये काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था ना, आपको 2 घंटे क्यों लग गए? आप ऊपर से अपना रीजन देते हो कि वो ऐसा ऐसा हो गया. मैं इमिजिएटली पता है क्या थॉट अंदर से क्रिएट करती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे तो केयरलेस हैं, इधर उधर बातें कर रहे हो कि ये बैठ के जब मैं नहीं हूँगा. दिस एनर्जी आई सेंड टू यू, यू रिसीव दिस एनर्जी, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. इफ आई कैन से ओके आई अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर खराब हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड कुछ हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम फिनिश करो. अगर आपने झूठ बोला भी था ना, लेकिन ये जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये रिस्पेक्ट आपको अगली बार
0: झूठ नहीं बोलने देगी और काम भी टाइम पे कर देंगे.
1: ये करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 10 बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये करने से वो रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होगा. देयर इज नो वे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि सामने वाला आपको झूठ बोलेगा. वो अगली बार अगर नहीं भी करेगा ना काम, तो आपको सच बोल देगा, पता है सर मेरा टाइम, मेरा मूड ही नहीं कर रहा था काम करने के लिए. योर टीम शुड एक्चुअली हैव द करेज टू से दिस टू यू कि हमारा मन नहीं है आज काम करने को, इसलिए हम काम नहीं कर रहे. दे शुड हैव द करेज के फोन करके वो बोले आपको कि आज रियली ऐसी बात है कि मैं नहीं आ सकता, बजाय कि वो सर मेरी वाइफ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है. हमारा एटीट्यूड की वजह से अदर पीपल आर टेकिंग टू लाइज एंड एक्सक्यूजेस. ये क्या रिलेशनशिप है जहाँ हम इतनी इजिली एक दूसरे को फोन करके झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलत, सिर्फ क्यों? क्योंकि वी नो के सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा वो नहीं आएगा. अगर आप एनर्जी फ्लो को राइट पर्सपेक्टिव में समझ गए, तो पॉजिटिव एनर्जी का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा. हाँ, मेरे इंटेंशन में अगर कहीं कोई डाउट है, मिसट्रस्ट है, तो उसका रिजल्ट भी, हाँ कई बार ये हो सकता है, हम ऊपर से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड,
0: लेकिन अंदर से सोचते हैं,
1: फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वो विश्वास पात्र बने. वो विश्वास पात्र नहीं बनेगा क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने ऊपर से मीठा बोला.
0: हाँ, अभी तो आपने ये कहा कि अगर आपको पता भी है कि वो झूठ बोल रहा है, तब भी उसे आप एक्सेप्ट करो,
1: तब भी आप उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी उसको भेजोगे, तब वो अपने उस नेगेटिव, सी व्हाट इज हैपनिंग, सपोज यहाँ नेगेटिव कुछ है, मुझे इसको काउंटर करना है ना, आई वॉन्ट टू फिनिश. पेरेंट को बच्चे के साथ क्या करना है, सीनियर को, उसकी नेगेटिविटी को फिनिश करना है. तो नेगेटिव को क्या भेजना पड़ेगा?
0: Positive.
1: हम नेगेटिव को नेगेटिव भेजते हैं, फिर नेगेटिव से हमें नेगेटिव मिलता है. पहले उसने झूठ बोला, फिर मैंने डांटा, फिर उसको मेरे ऊपर बुरा लगा, फिर उसने वो भेजा, फिर उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, फिर मैंने उसके बारे में और उसको गुस्सा किया.
0: It's a vicious circle, you know, continuously, yes.
1: What is happening? We're getting nowhere. And this is all in the name of कि हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं. कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं सुधरा. आप अपनी तरफ से एक साइड भेजो विदाउट क्वेश्चनिंग कि दूसरी साइड से क्या आ रहा है. अगर दूसरी साइड से पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव तो उस पर एड ही होने वाला है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव. लेकिन अगर दूसरी साइड से थोड़ा नेगेटिव भी है, तो आपका पॉजिटिव उसको क्या करेगा? धीरे धीरे धीरे उसको फिनिश करेगा. लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव भेजा, वॉट इज द रिजल्ट? एंड दैट्स वाई वी आर हेडिंग नो वेयर. काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो सारी आपस में. एंड तब आज फिर हम इस किस बिलीफ सिस्टम पर आए, लोगों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है. किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल, लोग तो धोखा ही देते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज वॉट वी हैव बीन एक्सचेंजिंग विद ईच अदर. एंड इसका ब्लेम हमने तुरंत किस पर डाला हुआ है? औरों के ऊपर. मेरी कोई जिम्मेवारी थी? नहीं. लोग सच बोल रहे थे, मैंने अंदर से उन पर विश्वास नहीं किया. विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है जो दूसरे को एम्पावर करती है. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड. इफ आई ट्रस्ट यू, दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट यू. बट इफ आई डाउट यू, देन आई डिसरिस्पेक्ट यू. फिर ये गुस्सा कहीं फिट नहीं होगा बीच में. लेकिन अगर गुस्सा है, देन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, दिस टू.
0: आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रस्ट इन सेंस कि जब हम कहते हैं कि हम, मैं आपको ट्रस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपकी नेगेटिविटीज या वीक पॉइंट्स को देख ही नहीं रही हूँ, या मैं उन्हें देखते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ.
1: एक्सेप्ट कर रहे हो एंड सेंडिंग यू दैट एनर्जी ऑफ ट्रस्ट जो आपको मदद करेगी
0: उन नेगेटिविटीज को ठीक करने के लिए.
1: सी
0: सो
1: हम
0: इट
1: ही
0: मीन्स
1: क्या
0: आई हैव टू सी. कई बार क्या होता है कि हम आंखें ही बंद कर लेते हैं,
1: ना
0: हम
1: ना ना
0: और हम कहते हैं कि हम उस पर पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन मैं उसकी वो वीकनेस देखना ही नहीं चाहती हूँ.
1: यू नो बट एक्चुअली इफ यू रियली लुक एट इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट. हर एक अपने, ये हो सकता है कि आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट सेम नहीं होगा. यू नो आपका स्किल, आपकी जो भी है वो सेम मेरे जैसी नहीं होगी, लेकिन एवरी वन, अगर आप हर एक को ऐसे छोड़ो विद द राइट एनर्जी, एवरी वन इज ट्राइंग टू पुट इन देयर बेस्ट. लेकिन धीरे धीरे जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तों में आती जाती है, ये कहीं हमें हमारे बेस्ट से नीचे ले आती है. इसी को अगर एनर्जी को चेंज कर दो, दिस विल टेक यू वेरी वेरी हाई. ठीक है, हमारे ऑफिस में एक पर्टिकुलरली काम करने का तरीका है, कल से स्टार्ट करो. लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट कल्चर, एंड दैट इज इस ऑफिस में बिना गुस्सा किए काम होगा. काम हो तो भी ठीक, काम नहीं हो 4 दिन के लिए, कम हो जाए तो भी ठीक, हमने गुस्सा नहीं करना है. कैन वी ट्राई टू डू दैट फॉर अ फ्यू डेज?
0: वाई नॉट.
1: ओके, नेवर माइंड ना, थोड़े दिन काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेवर माइंड. पहली बात तो होगा नहीं, कम होगा नहीं. गुस्सा करने के बाद या डांट खाने के बाद किसी की परफॉर्मेंस
0: अच्छी नहीं
1: अच्छी
0: होते.
1: नहीं हुई है, तो देयर इज नो वे. और करना क्या है, ये तो नहीं करना ना कि मैंने आपको बोलना नहीं है कि काम करो, या मैंने आपको
0: खाली
1: बोलना,
0: हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, काम तो होना ही है.
1: ये यस.
0: हाँ.
1: सपोज आपको ये काम 1 घंटे में करना था, आपने 2 घंटे लगा दिए. आई कैन से, कनुप्रिया, आई थिंक वी शुड फिनिश दिस इन 1 आवर. आई थिंक वी जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. बट सेइंग दैट विद अ,
0: ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों किया, तुम कहाँ थे. एंड देन यू नो व्हेन वी गेट एंग्री वी
1: पता नहीं
0: एक्चुअली,
1: क्या क्या
0: हाँ,
1: बोल
0: क्या क्या
1: देते
0: बोल देते. इट
1: हैं.
0: मीन्स समवेयर आई फील कि वो हमारे अंदर चलता होगा
1: बहुत
0: वो हमें.
1: अक्यूमुलेटेड है, तब तो
0: हाँ.
1: वो सारा ऐसे निकल आता है. इतना सुनने के बाद किसका मन करेगा काम करने के लिए? किस थॉट्स के साथ हम काम करेंगे? हमने ये सोच लिया कि ये करने से ना सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छा और बहुत एफिशिएंटली काम करेगा. अपने ऊपर डालो कि जब मैं डांट खाता हूं किसी से तो कितना एफिशिएंटली काम करता हूं उसके ऊपर. इट्स अ बिग
0: पर
1: क्वेश्चन
0: बेसिकली
1: मार्क.
0: ये हमने अपने आप को प्ली दी हुई है कि हम गुस्सा करने से काम होता है बेसिकली, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत सारी बातें सोची हुई होती है.
1: ये हम किसी भी ग्रुप में पूछते हैं लोगों से कि अच्छा आपको काम करवाना है तो गुस्से से करवाना है, कोई बात नहीं. लोग काम नहीं करते ना आजकल प्यार से. अगर आपसे किसी को काम करवाना
0: तो
1: है
0: कैसे करवाए.
1: तो आपसे वो कैसे करवाए? तो कहते हैं मेरे से तो प्यार से करवाए. अच्छा आपसे क्यों प्यार से करवाए? क्योंकि मैं कर दूंगा. इफ 50 पीपल आर सिटिंग इन द रूम, एवरी वन सेज मेरे से जो मेरा बॉस करवाए ना प्यार से करवाए क्योंकि मैं कर दूंगा. डोंट यू थिंक दैट इज इनहेरेंट नेचर ऑफ एवरीबडी? देन इट इज ऑफ एवरीबडी.
0: प्यार से मांगोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे लोग कहते
1: इट
0: हैं.
1: इज लाइक दैट. लेकिन प्रोवाइडेड आपने रियली प्यार से किया हो. एक है ऊपर से मीठा बोलना, दैट इज नॉट प्यार से करना.
0: मैं आपकी बॉस हूँ सपोज, मैंने बहुत सारी चीजें ना उस टाइम पे नहीं कही, लेकिन मैंने अपने साथ रखती गई, और फिर गुस्सा होते ही मुझे वो छूट मिल जाती है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ.
1: लेकिन
0: एंड
1: जो
0: देन
1: आपने
0: एज
1: रखते गए ना मेरे लिए, तो वो सिर्फ जब आपने गुस्सा किया तब मेरे पास नहीं पहुंचा,
0: वो
1: वो
0: पहले भी
1: मेरे
0: पहुंच
1: पास
0: रहा
1: सारा दिन
0: होगा.
1: पहुंचता है. आप, दैट इज वाई एनर्जी. यू सी, मेरा रिश्ता आपसे ऑलरेडी टूट रहा है क्योंकि आपने मेरे बारे में रोज इतना पकड़ के रखा हुआ है. आपने तो मुझे आपके कांटेक्ट में भी नहीं आना है. आप दूसरे देश में भी बैठे हो ना, तो भी आपकी सारी एनर्जी मेरे पास पहुंच रही
0: और
1: है.
0: उसके बाद क्या, मैं एक और भी चीज करती हूँ कि मैं बाद में आपसे कहती हूँ कि मेरा ये मतलब था नहीं, लेकिन क्योंकि गुस्से में था तो इसलिए मेरे मेरा ये निकल गया.
1: एंड वी
0: यू नो
1: ऑलवेज टेल ईच अदर डोंट टेक मी सीरियसली. हाँ
0: आई
1: वो मैं
0: नो
1: उस टाइम गुस्से
0: गुस्से
1: में
0: में थी.
1: था.
0: सो इट मीन्स समवेयर वट एवर आई एम सेइंग इन एंगर इज
1: Yes,
0: एक्चुअली वट आई एम थिंकिंग, यू नो.
1: absolutely. Never believe anyone when they say कि अगर मैं गुस्से में बोल दिया तो गलती से था. That
0: हाँ.
1: is what they actually think and feel. It's just that उनका वो कन्वर्टर काम करना बंद कर
0: वही,
1: जाता है
0: वो
1: और
0: चिलमन हट
1: वो
0: गई वो.
1: सब कुछ निकल आता है. लेकिन वो क्यों बोलती? वो झूठ नहीं बोलते एक्चुअली. जब हम कहते हैं ना किसी को कि मैं ये एक्चुअली फील नहीं कर रहा था, ये मैंने गलती से बोल दिया, उनको खुद ही नहीं पता होता. हमें खुद ही नहीं पता
0: कि
1: होता
0: हम दूसरे
1: कि
0: के बारे
1: हम
0: में
1: दूसरे
0: क्या-क्या
1: के बारे
0: सोच
1: में
0: रहे हैं.
1: सारा दिन क्या क्या क्या क्या सोचते हैं. वो तो जब बाहर निकल आता है ना इस तरह से, देन वी आर सरप्राइज्ड कि ये हमने क्या बोल दिया. एंड देन वी से डोंट बिलीव व्हाट आई सेड, दिस इज नॉट
0: बिकॉज
1: व्हाट
0: इवन
1: आई
0: आई
1: मीन,
0: डोंट बिलीव, यू नो,
1: बिकॉज आई
0: लाइक.
1: डोंट बिलीव इट. इज इट कम्स एज अ शॉक टू मी कि व्हाट डिड आई से, मैं इनके बारे में ऐसा तो सोचती नहीं बिल्कुल भी. एंड देन आई से प्लीज आप आप भूल जाओ उस बात को, यू नो वी ऑलवेज गो प्लीज आप भूल जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था. देखो रिश्ता वो 5 मिनट के गुस्से पे बनता और बिगड़ता नहीं है, रिश्ता तो ये जो मेरी कलेक्शन ऑफ थॉट्स है एक एक के प्रति, उस पर बनता है. मैं एक बॉस हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, सारा दिन चेक कर रहा हूँ, अगर मैं हर एक के प्रति ये सोचता रहूँ बैठ के, पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत धीरे करते हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो सकता,
0: ये तो करेगा ही ऐसे, मुझे पता है.
1: व्हाट एम आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग,
0: इन फैक्ट कॉन्शियसली भी नहीं क्रिएट कर रहे होते. It's like somewhere, so it means, my God, we don't know ourselves actually.
1: Yes, that is why awareness of what I'm thinking is so important. Because my own quality of life aur mere ye sare rishte and my work culture, my family culture, sab kuch meri ek ek thought par dependent hai. Hum usko words par dekhte jab wo bahar nikal aata. Relationship words pe nahi ban raha hai. Ye sara din jab hum bhej rahe hain. Agar main sara din apni team ke bare mein aise thoughts rakhu, fir main kitna bhi unke saath achhi tarah se baat karu, it doesn't click. It will not happen.
0: I'll have to be very, very careful ki trust या प्यार जो है वो अंदर से शुरू होने वाला है. मतलब मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं सबके लिए क्या सोच रही हूँ.
1: और अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं तो गुस्सा कभी आएगा ही नहीं, इट जस्ट वोंट कम, इट विल नॉट हैपन.
0: ट्रस्ट इन द सेंस कि वो ठीक ही कर रहा है. कई बार होता है कि हम अंदर से ये सोच रहे होते कि वो गलत कर रहा है और हम कहते नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमने कहना नहीं होता कि हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें सोचना ही चाहिए कि वो ठीक कर रहा है.
1: एंड अगर आप इस थॉट से जाओगे ना कि वो अपने एप्टीट्यूड से ठीक ही कर रहा है, अगर आप जाके उसको कुछ कह भी दोगे ना, अभी उसको बुरा नहीं लगेगा. यू नो इट नेवर फील्स बैड इफ इट इज विद द राइट एनर्जी एंड विद आई ट्रस्ट यू. बोलने की चीज नहीं है ये, आई ट्रस्ट यू, लेकिन अंदर से इफ आई ट्रस्ट यू कि आप राइट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ भी कह दूं ना उसके बाद, ये जो आपके काम पर एक कोई कमेंट भी है, या मैं आपको ये भी कह दूं ना कि आपने जो ये काम किया ना सारा, ये तो कुछ भी ठीक नहीं, आज तो सारी आपकी गलतियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी आई ट्रस्ट यू कि आपने उस दिन अपना बेस्ट उसमें लगाया था. दिस इज टू डिफरेंट थिंग. आई ट्रस्ट कि आपने अपना बेस्ट लगाया था, लेकिन एक्चुअली सारी गलतियां हो गई हैं आज. You will not feel bad. You will say, oh, I'm really sorry. I'll do it all over again. That's all. Relationship पे उसका कहीं असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ था गलतियां कर दी, ये तो है ही ऐसे, केयरलेस है, इनका ध्यान ही नहीं रहता, ये आपस में
0: कहां लगे रहते हैं, क्या कर रहे थे. अच्छा, ये सारा कुछ हमारे अपने अंदर चल रहा है. थैंक यू सो मच सचिवानी, अमेजिंग द वे इट हैज कम.
1: थैंक यू सो मच
0: शांति. अब आपको भी चेक करने की जरूरत है सचमुच में, और उसमें एक बहुत छोटा सा तरीका है कि जैसे ही गुस्सा आए किसी और को देख ले, या जब भी कोई और गुस्सा कर रहा है उसे जब जस्ट ऑब्जर्व करें और फिर अपने ऊपर लागू करें, और जो जो हम गुस्से में बात बोलें हमें कभी भी अपने आप को धोखा ना दें कि हम ये नहीं सोचते हैं. तो इसीलिए सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोच क्या रहे हैं. कोई सवाल, कोई आपके मन में ऐसी शंका उठ रही है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. आने वाली घड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिक्षक दिवस। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि एक अच्छे शिक्षक का योगदान समाज और देश के भविष्य को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षक हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसे कक्षा के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। जब भी शिक्षक उसे कुछ बोलने के लिए कहते, वह घबरा जाता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उसकी परेशानी समझी। उन्होंने उसे डांटने की बजाय प्यार से कहा, आरव, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। शिक्षिका ने उसे रोज थोड़ा थोड़ा बोलने का अवसर दिया। जब आरव से कोई गलती होती तो वे उसे डांटने की बजाय समझाती और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती। कुछ महीनों बाद आरव का डर दूर हो गया। एक दिन उसने अपने स्कूल के मंच पर सैकड़ों बच्चों के सामने भाषण किया। सभी ने तालियां बजाई। बड़े होकर आरव एक सफल व्यक्ति बना। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मेरी शिक्षिका ने मुझे केवल किताब

इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को याद करना, उन्हें धन्यवाद देना है। शिक्षक एक ऐसे दीपक की तरह हैं जो स्वयं प्रकाश देकर दूसरों का जीवन रोशन करते हैं। वे हमारी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं और असफल होने पर हमें फिर से प्रयास करने की हिम्मत देते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। गुरु वह है जो ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। मेरे सभी आदरणीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियां बांटे।

0: अहो ऐकलत का
1: हो पुणेरी
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। अभी तक जो हम बातचीत करते आ रहे हैं, जिस ज्ञान की हमने बात की है, इस पूरी श्रृंखला में किस तरह से ज़िंदगी को जिया जाए, इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पर हम बात करते आ रहे हैं। और आपका भी हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हर बार हमने यही कहा कि ये सीधा परमात्मा के कहे हुए महावाक्य हैं, परमात्मा स्वयं ये ज्ञान दे रहा है। और जिस तरह से हमने एक बार पहले भी बात की थी कि सेंटर पर जाके हर रोज़ हमें वो महावाक्य सुनने को मिलते हैं, वो मुरली सुनने को मिलती है जो जीवन का आधार बन सकती है और सही दिशा में हमें लेकर जा सकती है। सेंटर पे जाना मैंने भी शुरू किया है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका है, लेकिन कई हमारे जो दर्शक हैं उनके हमें कॉल्स आते हैं कि वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो आज हमने ये तय किया है कि वो मुरली जो खासकर एंगर से जुड़ी है, क्रोध से जुड़ी है, उसे आपके साथ शेयर करेंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफ़र की हम सफ़र ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक बार मुरली की हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपके जीवन में मुरली का जो रेलेवेंस है वो जानना चाहेंगे कि जो क्योंकि हर बार हमने आपसे जब भी कहा कि लोग बहुत बोलते हैं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान, इतना एक्सपीरियंस कैसे आ पाया, तो कैसे इस मुरली को सुनना आपके लिए रेलेवेंट रहा और इम्प्लीमेंटेशन आसान हो गया?
1: आज जो कुछ भी समझ में आया है अभी तक और जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करके जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन ला पाए हैं वो सिर्फ इस मुरली से ही है, क्योंकि मुरली मेरा फर्स्ट कनेक्शन बनती है परमात्मा के साथ। इसी जब हम नए नए समझते हैं इस ज्ञान को तो एकदम से मेडिटेशन शायद नहीं होता या एकदम से वो कम्युनिकेशन नहीं जुड़ता है, लेकिन परमात्मा के ये महावाक्य हमारा फर्स्ट कनेक्शन बनता, क्योंकि परमात्मा के जो महावाक्य होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, एंड जो हम कर सकते हैं वो ही हमें बताया जाता है। तो जो हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शंस हैं वो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो आज दिन तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उससे हमारे थॉट्स बने, परसेप्शन बनी, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बने। अब जब हमें परमात्मा से डायरेक्ट ज्ञान मिलता है तो इट इज़ द मोस्ट एलिवेटेड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जब रोज़ रोज़ रोज़ धीरे धीरे फीड होती है तो थॉट्स अपने आप चेंज होते जाते हैं।

0: आज दिन तक समझते थे अपने आप को परिवर्तन करना मेहनत का काम है, गुस्सा नहीं करना, सहन शक्ति, मतलब वट एवर. एंड अगर हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करने की कोशिश करें, वेरी डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स, अ लिटिल डिफिकल्ट. आई ट्राई टू डू इट, देन अगेन आई फेल, अगेन आई ट्राई टू डू इट. लेकिन ये जो रोज ड्रॉप बाई ड्रॉप ज्ञान अमृत जब पढ़ता जाता तो अंदर चेंज आ जाता है ना. पहले हम चेंज करने की कोशिश बाहर करते थे कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन अब क्या हुआ, पूरा थॉट पैटर्न ही चेंज हो गया. तो गुस्सा नहीं करने का एफर्ट नहीं करना पड़ता, इट जस्ट बिकम्स नेचुरल. तो मुरली बिकम्स अ सोर्स जिससे मेरा परमात्मा से कनेक्शन भी जुड़ जाता, मेरी थॉट पैटर्न एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स देन इन माय बिहेवियर एंड माय पर्सनालिटी. तो जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, becomes very simple.
1: और आसानी से हो जाता है. दिन का सूत्र जो है वो मिल जाता है. इनफैक्ट आई टोटली बिलीव इन दैट कि वो हो जाता है, हो रहा है. तो आज हमने अपने दर्शकों के लिए, उन भाई बहनों के लिए ये खास किया है.
0: हाँ, हमने आज, क्योंकि हम बहुत दिन से क्रोध पर बात कर रहे हैं, तो कई बार लोग पूछते कि ये सब कहाँ से आप डिस्कस कर रहे हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारा कुछ मुरली से आ रहा है. मुरली में हमें मिलता, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करें, हर एक का अंडरस्टैंड अपनी तरह से करें, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, यू नो. बट इट्स कमिंग ओनली फ्रॉम द मुरली. तो आज हमने कुछ एक मुरलियों से क्रोध के बारे में शिव बाबा ने क्या कहा है उसको लिया है. जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं. तो अब जब हम एकदम से समझे कि क्रोध भी करे उसमें भी दुआएं हैं, तो कैसे, क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो. तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वो क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो. जैसे हमें जब कोई दुआ देता है तो हमें कोई ब्लेसिंग देगा ना, कि आप सक्सेसफुल रहो, आपकी लंबी जीवन हो. अब परमात्मा हमें दुआ देते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, वो तो परमात्मा ब्लेसिंग देते. लेकिन जो क्रोध कर रहा है वो मुझे कैसे ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि वो मुझे याद दिला रहा है कि मैं इस टाइम कमजोर हूँ लेकिन आप कौन हो. तो उसका मुझे याद दिलाना भी उसका मुझे ब्लेसिंग देना हो गया. तो बाबा कहते उस तरह से अगर उसको देखोगे तो फिर आप उससे दुआएं लोगे. जो दे रहा है वो कुछ भी दे, उससे आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता. और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, जो खाद है वो कितनी गंदी है, बदबू से खुद क्या लेता है. अब गुलाब का फूल कहे कि जिस खाद मेरे अंदर जो पड़ी है वो तो बदबू वाली है, पर बाबा ने कहा बदबू से खुद क्या लेता है, वो खुशबू लेता है ना. गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है और आप क्रोध से दुआएं नहीं ले सकते. सी ना, इफ आई जस्ट लिसन टू दिस इन द मॉर्निंग एंड मेरे सामने मुरली सुनते सुनते एक इमेज क्रिएट हो जाए कि खाद है, बदबू वाली है, और फिर भी उसके अंदर से जो फूल निकलता है उसके अंदर उस बदबू का कोई ट्रेस नहीं है, उल्टा इतनी खुशबू है.
1: ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, एक्चुअली यू नो दैट्स व्हाट वी आल्सो हैव टू डू. वाओ,
0: तो अब ये पिक्चर मेरे सामने बन जाती है कि गुलाब का फूल है, उसके अंदर खाद है, लेकिन वो खुशबू लेता है. और बाबा ने मुझे आज याद दिलाया कि दूसरा जो क्रोध दे रहा है, आपको लगता है कि वो क्रोध कर रहा है लेकिन उससे आपको क्या लेना है, ये आपकी चॉइस है. उससे अगर आप ये ले लो कि वो आपको दुआ दे रहा है कि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं इस टाइम कमजोर हूँ, तो फिर आपके अंदर क्रोध आने की मार्जिन रहेगी ही नहीं. कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ. Because this is with all of us, कि ये ठीक हो जाए,
1: कि वो ऐसे करे तभी ये अच्छा होगा, तभी मेरे लिए भी अच्छा होगा.
0: तो बाबा ने कहा ये नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं. बाबा कहते कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे कि हे लहरें आप बड़ी नहीं हो, आप छोटी आ जाओ, टेढ़ी नहीं आओ, आप सीधी आओ. What can we do? हम सागर के किनारे खड़े हैं. अब जैसे जैसे हम मुरली सुने, हम उसको विजुअलाइज भी करें, क्योंकि माइंड सुन रहा है, इंटेलेक्ट उसको विजुअलाइज कर रही है कि जब हम सागर के किनारे खड़े होते हैं तो हर तरह की लहरें आती हैं, छोटी बड़ी, हर एक डायरेक्शन से. वी डोंट हैव अ चॉइस. हम उस टाइम खड़े होकर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि ऐसे नहीं आओ, ऐसे आओ. तो ये संसार भी सागर है. कभी लहरें छोटी होंगी, कभी टेढ़ी होंगी, तो कभी सीधी होंगी, तो कभी बड़ी होंगी, कभी छोटी होंगी. तो ये आधार नहीं रखो कि ये ठीक हो जाए
1: तो मैं ठीक हो जाऊंगा,
0: तो मैं ठीक हो जाऊंगा. तो अगर ऐसा आधार रखोगे तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े,
1: सिचुएशन बड़ी हो जाती है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स कि बड़ी लहर आ रही है और मैं चाह रहा था कि छोटी आए, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली.
0: अब नॉर्मली अगर बड़ी लहर हमारे सामने आ रही है सागर के किनारे, तो हम ये थोड़ी वहां खड़े हो जाएंगे और कहें क्या करें, इतनी बड़ी लहर आई जो मेरे ऊपर ही आ गई. हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो तो एक सिचुएशन है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना उस टाइम मुझे आता है. तो इसी तरह जब हम जीवन में खड़े हैं, सागर की इतनी सारी लहरें आ रही हैं, तो बाबा ने कहा आप बड़े हो या परिस्थिति बड़ी है. अब ये मुझे सारा दिन याद रखना कि मैं बड़ी, मैं आत्मा जो इतनी शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ी या परिस्थिति बड़ी. अब अगर ये नहीं याद रहे तो सारा दिन में अगर हम चेक करें तो परिस्थिति
1: हमेशा यूजुअली देखा गया है कि वो बड़ी हो जाती है.
0: तो बाबा ने कहा बाबा के पास सब बातें पहुंचती हैं. जब हमारे साथ कोई परिस्थिति आती है और जब हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो हर आत्मा तो अपने पिता से बात करती है. तो बाबा ने कहा बाबा के पास सब बातें पहुंचती हैं. तो बच्चे कहते हैं ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा. इट्स अ चाइल्ड टॉकिंग टू द फादर, एंड बच्चे में अपने आप को ठीक करने की ताकत ही नहीं है. तो वो बाबा से ही प्लीड करता है कि बाबा आप उसको ही ठीक कर दो. तो ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा. इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं तो शीतल हो जाऊंगा. इस खिटखिट करने वाले को किनारा कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो बाबा ने कहा कैसी कैसी बातें बच्चे आकर मेरे साथ करते हैं. तो फिर परमात्मा हमें ही याद दिलाते कि आपका स्लोगन क्या है, बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ. हमें ना बदला लेना है ना दूसरों को बदलना है, हमें खुद अपने को बदल कर.
1: And we just talked about, you know, कि जब भी कोई हमें hurt करता है, पहला हमारा reaction होता है revenge, बदला.
0: So this is all coming from here. क्योंकि revenge एक बहुत subtle है जो हम सबके अंदर भरा हुआ है कि अच्छा मेरे साथ ऐसे किया, अब मुझे बदला
1: लेना है. जायज है, उसे हम justify करते हैं, जायज लगता है.
0: अब अगर रोज बाबा का ये महावाक्य याद आए, बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ, तो मेरा thought pattern automatically change होता जाएगा. ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा. परंतु पहले स्व को बदल. तो क्या होगा ये जो सारा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो जानता है हम आत्माओं की इंटरनल कॉन्वर्सेशन सारा दिन यहाँ क्या चल रही है. तो बाबा कहते सारा दिन सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा. नहीं, परंतु पहले स्व को बदलो. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन. ये स्लोगन है ब्रह्मा कुमारीज में, ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमारा मोटो जिसको कहे ये है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन. तो अगर वो एक भी हर टाइम हमारे सामने याद रहे तो ये जो सारा दिन औरों को परिवर्तन करने का चलता वो खत्म हो जाता है. तो ये एक मुरली से जैसे हमने निकाला. तो अब आप सोचो कि अगर हम सुबह जाए सारा दिन शुरू करने से पहले और ये महावाक्य हम सुन लेते हैं और बहुत पीसफुल माइंड में इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं, तो ये हमारे दिन की फाउंडेशन है. तो अगर ये सारे महावाक्य यहाँ प्रिंट हो जाएं, बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ, कोई क्रोध भी कर रहा है आप उसमें से दुआएं लो, कोई बदबू है लेकिन आप उसमें से खुशबू लो, आप ये नहीं वेट करो कि दूसरा बदले तो मैं बदलू, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन.
1: और हम कितनी बार कहते हैं वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड,
0: वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, पर बाबा ने कहा दूसरा बदले इसका इंतजार नहीं करना है. तो बाबा ने और भी पूछा कि परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बस ये तीन चार लाइंस, तीन चार महावाक्य मुझे याद रखने हैं सिर्फ सारा दिन में. विल दे नॉट वर्क ऑन मी?
1: डेफिनेटली द मोमेंट देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन नाउ, एक्चुअली इट विल कम बैक.
0: एब्सोल्युटली.
1: जहां मैंने इतना ज्यादा अपने साथ इसको सुबह सुबह या जब भी वक्त मिला इसको अपने साथ रखा, जैसी सिचुएशन आएगी actually this sentence can come back to me
0: absolutely
1: and help me out.
0: हाँ, हम normally क्या करते कि मुरली सुनते time एक notebook और pen पास में रख के जो main points लिखने हैं जो मेरे को सारा दिन में practice करने हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन मैं हर रोज सारा नहीं practice कर सकती, तो तीन चार points अपने लिए लिख लेने हैं और वो notebook को या उस paper को अपने पास रखना चाहिए और हर थोड़ी देर बाद बीच बीच में उसको निकाल कर फिर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि है वो बहुत इस समय कमजोर हो चुकी है, उसमें नेगेटिविटी
1: इतनी ज्यादा भरी हुई है कि इसमें अब इसके लिए जगह.
0: अब क्या होता है जनरली पॉजिटिविटी रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही बाहर जाते हैं बहुत सारी और बातें सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तो वो भर जाता है और ये भूल जाता है. तो थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट एफर्ट करते हैं कि हर दो चार घंटे के बाद फिर से मुरली की पॉइंट रिवाइज कर ले कि आज मेरे लिए क्या था, और फिर सिर्फ पढ़ना सुनना या रिवाइज करना नहीं, उसको यूज करना. ये परमात्मा के महावाक्य है, ये उनका ज्ञान है, लेकिन ये मेरा तब बनेगा
1: जब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए,
0: जब मैं उसको यूज कर लूं. मतलब सिर्फ सुनने से या कहने से हाँ बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक उसको हम यूज नहीं करें, एक बार उसको यूज कर लिया दैट्स इट. Then it becomes my property because then slowly slowly वो मेरे संस्कार में आना शुरू हो जाएगा. तो consciously ये प्रयास करें कि आज जो सुना उसको आज के दिन में ही implement जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मैंने सुना ये सब और फिर भी सारा दिन में जब भी कोई परिस्थिति आई मैं तो भी ordinary way में ही चलती गई, वही गुस्सा किया, वही react किया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए useful नहीं है, मुझे उसको यूज करना है. अब जैसे ये सुन लिया हमने महावाक्य सवेरे, सारा दिन में कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा या कोई ना कोई परिस्थिति तो ऐसी हो ही जाएगी जो पहले मेरे अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी. अब अगर उस टाइम मैं स्टेबल रहूं और मुझे याद रहे कि परिस्थिति बड़ी नहीं है, मेरी स्थिति बड़ी है. सामने वाला भले क्रोध कर रहा है वो परवश है, मुझे स्टेबल रहना है. अगर मैंने एक बार कर लिया ऐसा यू नो, तो मुझे अपने अंदर डिफरेंस दिखाई देता कि पहले तो मैं गुस्सा कर देती अगर इन्होंने ऐसे बोला होता, आज मैंने गुस्सा नहीं किया तो मुरली की वो वाली पॉइंट मेरे ऊपर वर्क की और मेरा संस्कार जो क्रोध का था वो धीरे धीरे खत्म होना गया. अगर एक बार कर लिया तो अगली बार करना
1: आसान हो जाता
0: और इजी हो जाता है. तो इसको इम्प्लीमेंट और फिर इम्प्लीमेंट करने से फेथ बढ़ता जाता है
1: कि मैं कर
0: पाया, परमात्मा सुना रहा है वो मैं कर सकती हूँ. क्योंकि बाबा सुनाएंगे वो जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करते. यू नो व्हाट हैपेंस, वी जस्ट गो बैक टू द ऑर्डिनरी वे ऑफ वर्किंग. इट रिक्वायर्स लिटिल अटेंशन, दैट्स ऑल, नॉट टू मच एफर्ट, जस्ट लिटिल अटेंशन कि आज ये सुना था, बाबा ये सिखाता है मुझे, तो मुझे ये करना है. देन इट बिकम्स माई प्रॉपर्टी, इट बिकम्स वेरी सिंपल.
1: इनफैक्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो जाता है कि अगर हम कंप्लीट इस फेथ के साथ रहें जब भी मुरली सुन रहे हैं कि हम परमात्मा के ही महावाक्य सुन रहे हैं,
0: परमात्मा के ही महावाक्य सुन रहे हैं और परमात्मा मुझसे ही बात कर रहे हैं. यू नो, अगर हम समझे कि परमात्मा तो सबको कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना, देन इट्स वेरी जनरलाइज्ड थिंग. जब हम मुरली सुनते हैं तो परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरे जीवन के लिए या मेरे आज के दिन के लिए है. यू नो, कई बार जब कई भाई बहने कहते हैं मैंने तो अपना क्वेश्चन रखा था सामने योग में तो मुझे आंसर तो मिला नहीं, मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी इन द मुरली. लेकिन उस मुरली को अगर उस भाव से सुने कि ये परमात्मा का लेटर मेरे लिए आया है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो मेरे लेटर में ही आएगा ना, तो उस भाव से सुनेंगे तो आपका आंसर इज राइट देयर. एक मुरली में और बाबा ने कहा, क्रोध करना अर्थात दुख देना और दुख लेना भी. क्योंकि वही हमने देखा कि देने के लिए पहले अपने अंदर
1: से
0: क्रिएट करना पड़ता. कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध न आए. सी बाबा हमारे लिए पैरामीटर सेट कर देता है ताकि हम कोई भी प्ली नहीं दे सके, नहीं पर भी पता है उसने इतनी इंसल्ट कर दी, नहीं जब भी कोई कुछ भी करे तो भी क्रोध ना आए, नहीं तो है तो बहुत अच्छा लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी, मतलब संस्कार सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चेंज करना लेकिन किसी भी परिस्थिति में क्रोध को आने नहीं देना है। बाबनी का इसलिए लक्ष्य रखना कि क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि करना ही पड़ता है नहीं तो काम नहीं चलता।
1: यही बात हमने हर बार कही है,
0: यही हमने देखा कि सबसे बड़ा जो बिलीफ सिस्टम है वो यही कि करना ही पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो बाबा खुद ही पूछते कि ऐसे तो नहीं कहोगे ना जाके, आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता। और ये बहुत डीप बात है, अब इसको हमें यूज करना है। ऑर्डिनरी वे ऑफ वर्किंग क्रोध से ही काम चलेगा, गुस्से के बिना काम नहीं चलता। परमात्मा कह रहे हैं किसको मैं कम से कम ट्राई करके तो देखूं। तो बाबा ने कहा क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता।
1: यहाँ मुझे वो अभी हमने पीछे एक ईमेल जब ली थी कि एक फादर के साथ जो उनका रिश्ता जो था वो खराब था, तो अगर वो क्रोध में ही रहेंगे, एंगर में या उसमें ही रहेंगे, डिस्टरबेंस में, तो कभी भी वो रिश्ता नहीं। तो जहाँ वो सोल्यूशन यही था कि उस रिश्ते को पहले कंप्लीट।
0: एब्सोल्युटली। और इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें ये है आत्मिक प्यार से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से तो प्यार से बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो शांति में है। कई बार कई लोग कहते हैं पर मैं तो ठीक चलता हूँ, मैं तो ठीक से ही बात करता हूँ, लेकिन वो गुस्सा ही करते रहते हैं। तो आत्मिक प्यार मतलब अंदर से आत्मा का, आत्मा के लिए प्यार। कई बार हम ऊपर से प्यार से अंदर से सोच रहे हैं ये कितना गुस्सा करते हैं, तो वो आत्मिक प्यार तो नहीं हुआ, फिर भी अंदर गुस्सा ही हुआ। तो आत्मिक प्यार से और शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर ले इसकी छुट्टी चाहिए। परमात्मा को बच्चे कहते हैं ठीक है मैं बहुत ज्यादा नहीं गुस्सा करूं, थोड़ा थोड़ा, यू नो, कई बार मदर्स कहती हैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को ठीक करने के लिए। छुट्टी है नहीं लेकिन आप अपने को छुट्टी दे देते हो। परमात्मा कहते हैं मैंने छुट्टी नहीं दी। जो सुप्रीम टीचर है वो कहता है मैंने स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं दी, लेकिन स्टूडेंट्स खुद ही अपने आप को छुट्टी दे देते हैं। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध एक बड़ा रूप हो गया, यू नो एंगर, लेकिन क्रोध के बाल बच्चे जो हमने पहले भी देखा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, तो हम नॉर्मली फिर अपने आप को सर्टिफिकेट देते मैं गुस्सा नहीं करता, अब ना जो मेरा गुस्सा है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन बाबा ने कहा जो बाल बच्चे है उसके सारा दिन चिड़चिड़ापन जो थोड़ा थोड़ा अंदर आता है उसको फिनिश किया। क्रोध महाभूत को तो भगाया है लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत रखी है अभी। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के भी छोटे छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण व्रत। आपने व्रत अगर लिया तो फिर ये नहीं कर सकते कि मैं क्रोध नहीं कर रहा लेकिन चिड़चिड़ापन कर सकता हूँ। व्रत अर्थात संपूर्ण व्रत,
1: एब्सेंटिज्म जो है ना, कंप्लीट एब्सेंटिज्म,
0: फिनिश्ड। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करूं मैं, यू नो, अगेन द सेम बिलीफ सिस्टम कि गुस्सा मैं नहीं करता, गुस्सा तो मुझे और लोग दिलाते हैं। मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। तो बाबा ने कहा बहुत मजे की बातें करते हैं, कहते हैं परमात्मा को, बच्चे उस परमात्मा शिव बाबा को कहते हैं आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। मतलब दैट इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिफिकेशन कि मैं,
1: भगवान भी आ जाए तो उन्हें भी इस सिचुएशन में क्या करेंगे,
0: आपने किया ही ऐसा काम है। तो हम परमात्मा के सामने फिर जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अपनी गलती स्वीकार करने के लिए नहीं रेडी है, तो हम कहते हैं बाबा आपको क्या पता उसने क्या क्या किया या क्या बोला, अगर आप भी होते ना उस टाइम तो आपको भी गुस्सा आ जाता। इट्स लाइक सेइंग आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो आई वाज राइट इन व्हाट आई सेड। अब यही अगर हम सवेरे सुन ले और इसको ध्यान में रखे, क्रोध नहीं करना, लेकिन उसके जो छोटे छोटे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, इसको भी फिनिश करना, क्योंकि मैंने व्रत लिया है, मुझे क्रोध को और क्रोध के पूरे वंश को हटा देना, द होल फैमिली हैज टू गो। तो रोज जब हम इस तरह से महावाक्य सुनते हैं तो उस इमोशन की भी क्लैरिटी आने लगती है कि क्रोध है क्या। दूसरे नहीं दिलाते हैं, यू नो, चाहे मैं कुछ भी किसी ने कहा हो, सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। तो ये महावाक्य जब हम रोज सुनते जाते तो धीरे धीरे हमारे अपना सोचने का तरीका परिवर्तन हो जाता है।
1: बिल्कुल, शिवानी, इस पूरी अभी जो हमने मुरली सुनी है उसमें यही दिख रहा है कि हमने जो पिछले कई दिनों से हम एंगर को लेके बात करते रहे, तो एक ही खुलासा बिल्कुल हमारे सभी भाई बहनों के सामने, दर्शकों के सामने बिल्कुल क्लियर है कि ये ज्ञान वही है महावाक्य, वो परमात्मा के महावाक्य।
0: अब बाबा ने हमें कहा कि आत्मिक प्यार और आत्मिक शांति हमें हर एक को देनी है, तो जब मुझे अपने आप को क्रोध से बचाना है तो एंगर का एंटीडोट पीस था, तो मैं आज सारा दिन में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मुझे स्मृति में रखना। सभी बातों को हटाते हुए अपने आप को फिर से देखें। शाइनिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर में ही शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस कर्म क्षेत्र को छोड़कर अपने पिता के पास, परमात्मा शिव बाबा के पास, परम धाम में जाती हूँ। परम धाम मेरा घर, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। परमात्मा मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट, जिनके सम्मुख में आकर बैठ जाती हूँ। शांति के सागर है, मैं शांति के सागर के सम्मुख बैठी हूँ। शांति की लहरें मुझे आत्मा में पड़ती जा रही है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा फिर अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाती हूँ। आज सारा दिन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मेरे सामने आए, मुझे सिर्फ यही याद रखना, मैं शांति के सागर का बच्चा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति,
1: शांति। ससा शिवानी, आज हमने उन महावाक्यों को, परमात्मा के कहे हुए उन महावाक्यों को, उस मुरली को सीधा दर्शकों के साथ सुना। इस पूरी बातचीत के लिए और बाबा का ये आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों के लिए भी आप लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज एक बार फिर ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि जो भी हम बातें करते आ रहे हैं, जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, उम्र से कोई लेना देना नहीं, वो बातें सीधा परमात्मा की हैं, वो महावाक्य हैं। हम भी जब उन्हें सुनना शुरू करेंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से करेंगे, तो ये ज्ञान हमारे जीवन को भी बेहतर कर सकता है। आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। क्रोध की बात की, लेकिन उससे जुड़े कई और भी मुद्दे अभी बाकी हैं। हमारे जीवन में इतना स्ट्रेस है, टेंशन में हम में से हर कोई रहता है। क्यों है स्ट्रेस या टेंशन, इसको जानने की कोशिश करेंगे, एक नए अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। मैं आरजे शांतनु आपका स्वागत करता हूं, और ज्यादा विलंब नहीं करते क्योंकि कहानी बीच में रुक गई थी, और मैं जानता हूं आप सब दिलचस्पी से इंतजार कर रहे होंगे कप्तान योगेंद्र सिंह यादव जी से सुनने के लिए उनके कारगिल टाइगर हिल की विजय की कहानी। कप्तान योगेंद्र सिंह यादव भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा है। आज भी वो सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं दोस्तों, लेकिन देश के अंदर युवाओं के साथ वो काफी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत करते हैं उनकी अधूरी कहानी से। स्वागत करते हैं सबसे पहले योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी, आपका स्टूडियो में दोबारा बहुत बहुत स्वागत है।
4: तो देखिए, जब मैं अपने साथियों के पास वापस जब लौटा तो लगा मन में कि यार इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई जिंदा होगा। तो आखिर एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सब निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे, चारों तरफ बॉडियां ही बॉडियां पड़ी थी। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस जिधर भी देखता था उधर बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बैठ करके रोया, और जब रोते हैं तो ये रोना भी एक थेरेपी है। ये कोई बोझदिली या उसको बोलते हैं कि वो तो कायर जो लोग रोते हैं या वो रोते हैं, लेकिन नहीं, ये एक थेरेपी है। जब हम रोते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं। अपने आप का मतलब कि हम ये बॉडी या शरीर तो नहीं है, हम तो एक सोल है, एक आत्मा है, और जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। तो मैं भी रोता हुआ कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ा, जब अपने आप से जुड़ा तो परमात्मा से जुड़ा, और परमात्मा से जुड़ा तो उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो बिना कुछ सोचे समझे फिर उस नाले में लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करता हुआ लुढ़कता हुआ नीचे आया। जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, पूरे कपड़े फट जाते हैं, सेम ऐसा हो रखा था कि पूरे कपड़े फटे हुए थे। तो जब मेरे नीचे ऐसे गड्ढा था, ऐसे पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तो मेरे साथी थे, उन्होंने एकदम से उनको मैंने आवाज दिया, वहां से उठा करके ऊपर लेकर के गए। फिर वो कोई नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था थोड़ी बहुत देर के बाद ये भी मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लो और साथियों को बचाओ। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पे। फिर कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, तो कमांडिंग ऑफिसर के पास मुझे पहुंचाया गया। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर काफी देर के बाद वो बोलते हैं, बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मतलब नहीं साहब, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मगर जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि अभी बारूद की वजह से जबान महकने लगी थी। बोला पानी नहीं मिलेगा, शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा। डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज पिलाई, उस ग्लूकोज पीने से थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। बोला कुछ बता सकता है बेटा? मैं कहा साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम ऊपर के जो इंफॉर्मेशन थी उनसे अवगत कराया, उनको बताया कि इस तरह की वहां पर डिप्लॉयमेंट है और यहां पर वो रह रहे हैं। मैं इतना बताते बताते तो लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर एज ए पेरेंट्स एज ए पिता होता है और माँ बाप हमेशा बच्चे से पहले खाने की बात करता है। तो मगर सर नहीं, खाने के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती, भूख ही नहीं लगती। ये पार्ले जी वाले बिस्किट का पैकेट, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। फिर उसके बाद नहीं पता सर मुझे कहाँ पे गए हूँ, डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन लगा दिया था। तो 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली किसी रात को दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज फायर हो गया। मैं भी दिल्ली रेफर हो गया था हॉस्पिटल में, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और फिर वहां से 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया। और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल की जीत का ये दिवस घोषित कर दिया गया और आज हम 2024 कारगिल की स्वर्णिम जीत का सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे हैं। 25 साल इसके हो गए हैं। आज जब मुड़कर के पीछे की तरफ देखता हूं तो 25 साल में बहुत कुछ बदल गया। आज जो सर मैं उन लोगों से मिलता हूं, उनके परिवारों से मिल रहा हूं, मेरा अभी एक मिशन है कि जो मैं पूरे देश के अंदर उन 527 परिवारों से मिल रहा हूं जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपने पति को, जिन्होंने अपने भाई को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। 25 साल बहुत लंबा समय होता है, 2 दशक से भी ज्यादा का समय जब बीत गया तो आज जब उनसे उनकी कहानी तो वो ये सिर्फ यही कहती है कि 26 जुलाई देश के लिए कारगिल का युद्ध समाप्त था और हमारी जिंदगी का वो युद्ध शुरू हुआ था। किसी के 1 महीने का गर्भ था, किसी के 4 महीने का गर्भ था, किसी का शहीद होने के 4 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है जिसने बाप की शक्ल को तक नहीं देखी, लेकिन उस वीरांगना ने 25 साल में अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज वो हमारे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जो आज का युवा इतना इमोशनली वीक हो चुका है, थोड़ा सा अगर उसको नंबर कम आ जाए, पेरेंट्स ने अगर कुछ कह दिया है तो उनकी ईगो हर्ट होती है, उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान सब खत्म हो गया और ये जिंदगी बेकार है और हम एक नकारात्मक भाव में जीना शुरू करते हैं, यहां तक कि अपनी जिंदगी को तुच्छ समझ करके इस जिंदगी को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं और कर भी देते हैं। बस उन युवाओं को बस अभी यही कह रहा हूं कि यार आप लोग सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आपका जो वो स्पेशल जो आप जो काम कर रहे हैं वो आपको लगता है कि ये जीवन का सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम ये है कि आप ये देखिए ये वीरांगना जो उस समय 21 साल की थी आज ये 45 साल की हो गई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया है। इससे बड़ी और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो सर ये मेरे 25 साल का अभी जो ये अनुभव चल रहा है ये एक बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है कि ऐसी वीरांगनाएं जो हिम्मत साहस और प्रेरणा से ओतप्रोत है। सर
3: जी आपकी कहानी के इस भाग से ये चीज जरूर समझ में आता है कि व्यक्ति को सामान्य होना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी बेकार की बातें दिमाग में भरी हुई हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता या रोना लड़कियों का काम है, ये जितनी भी मैं तो कहता हूँ ये सच में बेवकूफी वाली बातें हैं। और इनको जो कहता है सुनता है या जिन अगर कोई चुप होकर के भी संगठन में इस चीज को सुन रहा है तो वो इसका एक हिस्सा है और इन बातों को बिल्कुल भी हमारे रग रग से निकाल के फेंकने की जरूरत है। रोना एक थेरेपी है जो आपने कहा और आपने जो आंसू बहाए वो केवल उनके लिए नहीं बहाए जिन्होंने वहां शरीर त्यागा था, लेकिन मैं समझता हूँ उनके लिए एज अ परिवार जो नहीं जानते कि आज हमारे घर से एक बेटा जा चुका है या पति जा चुका है, उनके अगर वो होते तो क्या करते, तो एज अ परिवार आपने उनका साथ निभाया। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो आपने बताया कि जीवन का वास्तविक संघर्ष जो है वो इन छोटे छोटे चीजों में फंस के रहने से कभी भी आप नहीं जीत सकते, और जीवन का संघर्ष आपको वास्तव में बहुत शक्तिशाली बनाता है। एक सवाल जो मेरे मन में यहाँ उठता है वो ये कि आपको प्रिपेयर किया गया, जो आपका माइंडसेट है वो मिलिट्री में तैयार किया गया, आर्मी में तैयार किया गया, तो आप उस चीज को जी सके, लेकिन आज जैसे कि आपने कहा कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लोग बहुत ज्यादा चीजों में फंसे हुए हैं, और ऐसे में मन का ये ट्रेनिंग आपने थोड़ा शुरू में बताया कि अध्यात्म से होता है, लेकिन आज की डेट पे अगर कोई युवा या कोई भी व्यक्ति अपने को सशक्त बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग आप सजेस्ट करते हैं?
4: बिल्कुल, देखिए कि कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हैं, और हम किसी भी कार्य को वास्तविक रूप से करने से पहले अगर हम अपने मन के क्षेत्र में उस कार्य को कर लेते हैं, उसको जी लेते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जब किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि जब हम हमारी जो दिनचर्या है, सब सुबह का उठना, और उस समय हमें प्राणायाम योग और ध्यान नहीं करेंगे तो हम अपने मन को अपने मजबूत नहीं बना पाएंगे, उसको इतना सशक्त नहीं बना पाएंगे, उसके अंदर हम पॉजिटिव एनर्जी नहीं डाल पाएंगे। और जब तक हमारे मन के विचारों में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है तब तक हम किसी भी काम को ना तो बखूबी कर सकते हैं, ना उस काम के अंदर हम अपनी एनर्जी को डाल सकते हैं। ये सारा ब्रह्मांड तो एनर्जियों का ही तो भरा हुआ है, हमारे अंदर भी तो एनर्जी है, साइंस कहती है एनर्जी है, अध्यात्म कहता है आत्मा है, लेकिन आत्मा ये है तो कोई शक्ति है ना जो हमें इस शरीर को चला रही है, तो इस शक्ति के लिए अब को उसको जो है, जैसे हम गाड़ी है, गाड़ी की हर साल के बाद एक क्या करते हैं, ओवरहॉलिंग कराते हैं, उसको वर्कशॉप लेकर के जाते हैं, उसका ऑयल चेंज करते हैं ताकि वो गाड़ी बड़ी स्मूथ चले। तो इस शरीर को स्मूथ चलाने के लिए जरूरी है कि अपने अंदर जो हमारी शक्ति है उसके उससे रूबरू हो, उसके साथ उसको ओवरहॉलिंग करें। और ओवरहॉलिंग करने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी संप्रदाय से जुड़ते हैं, जिस भी संप्रदाय के साथ आपको अच्छा लगता है, तो आप जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो बहुत सारे मंत्र दिए हैं, आपने मंत्रों का उच्चारण करते करते आपने सांसों की आवागमन, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सांसों के आवागमन पर हमने जो है ना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, तो वो ध्यान ये सांस इस मन को कंट्रोल करती है, और मन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और बॉडी ही नहीं हमारे ये आज के जीवन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि मन के अंदर जिस तरह के विचार आएंगे वैसे ही हमारे इस माइंड से बॉडी के अंदर उसी प्रकार की एनर्जी रिलीज होगी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। तो आपने शुरुआत सुबह अपने भजन पूजन ज्ञान ध्यान संध्या जो हम करते हैं, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, और मन के अंदर एक नई तरंगे आपके अंदर आने लगेंगी। आप 90 दिन करके देख लीजिए, आपके जीवन में नए चमत्कार होने लगेंगे। कुछ आप लोग, हम जो हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, अचानक से वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है और फिर हम बड़े अचंभित होते हैं, यार ये तो था हमारे जैसा ही था, इसने ऐसे कैसे कर लिया, लेकिन हम उसके जीवन की जर्नी

0: तरह से उठा करके भाला भी फेंक दे तो वो मुड़ करके नहीं देखता और पहले से कह देता है गोल्ड मेरा है। ये आत्मविश्वास की ताकत है। तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? लगातार अभ्यास करने से, लगातार ट्रेनिंग करने से, लगातार आप प्रैक्टिस किसी भी चीज की कर रहे होते हो तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है और कॉन्फिडेंस व्यक्ति के व्यक्तित्व को चेंज कर देता है।
1: ये अभ्यास जो है ये कई बार लोगों को बोरिंग लगने लगता है, कितना करें, कब आएगा इसका रिजल्ट, तो पेशेंस नहीं रहता है। पेशेंस कैसे बढ़ाया जाए?
0: अगर मैं अपने बारे में अगर सोचूं कि अगर मैं उस समय जब इतनी जख्मी अवस्था में था और असहाय हो चुका था, चल नहीं सकता था, लेकिन उस समय भी हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि मैं उस कार्य को कर नहीं रहा था, उसको जी रहा था। आप कोई जो आपकी हैबिट होती है, कोई खेल खेल रहे हैं, आप पूरा दिन खेल सकते हैं और अगर आपको थकान नहीं होगी, आपको बोरिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि यार चलो ये कर लेते हैं, वो कह रहा है तब आप कर रहे हैं, सिर्फ वो कर रहे हैं। जब हम करने की बात में आते हैं तो कुछ देर के बाद बोरिंग शुरू हो जाता है। उसको जिस तरह से हम गेम खेल रहे हैं अपने मनपसंद का, उसी तरह की ये चीजें हैं कि इसमें भी आपको आनंद आने लगेगा। यार लोग तो जो है ना खुशियों के लिए जीते हो और खुशी का उल्टा दुख होता है। और ये आध्यात्मिक रास्ता ये एक ऐसा रास्ता है, यहां पर खुशी नहीं आनंद मिलता है और आनंद का उल्टा परमानंद ही होता है। तो हम परमानंद की तरफ क्यों नहीं जिए? या आपको भजन करते करते अगर बोरिंग लग रहा है तो उसी भजन को उठ करके बैठिए मत, ना उठिए, गाना बजाइए और नाचना शुरू कर दीजिए। जब आप नाचना शुरू करेंगे तो एनर्जी का ऑरा बढ़ता चला जाएगा। जब एनर्जी का ऑरा बढ़ेगा, जब आप फिर बैठोगे तो आपको ध्यान लगना लगेगा और आप ध्यान में डूबने लगेंगे। फिर ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम इस तरह से भी सरल तरीके से कर सकते हैं। किसी को अच्छा लग रहा है सर, गाना अच्छा लगता है, मैं तो कहता हूँ 1 घंटे तुम गाना गाओ ना, मन से गाना गाओ, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। आप जब कहीं कुछ बैठोगे कुछ भजन करने के लिए, आपका आत्मसात होने लगेगा उस चीज से, आप उसको जीने लगेंगे। आपको नाचना अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, 1 घंटा डांस करेंगे, एनर्जी का आरा बढ़ेगा। आप बैठोगे तो आपका ध्यान, क्योंकि मन के ये जब शरीर से वो पसीने की बूंदे नहीं निकलती है, हमारी नेगेटिव वो चीजें निकल जाती है बाहर पसीने के रूप में, कितना आनंद आता है फिर बैठ करके, सुकून मिलता है।
1: आनंद में जो चीजें आपको पसंद है उसको करते हुए अगर आपने श्रम भी किया है, मेहनत भी की है, तो ये सब विन विन सिचुएशन है। इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, मन भी क्लियर हो जाएगा और आप जो है उस चीज को करते हुए और बलशाली हो जाएंगे। जो धैर्य की बात आपने कही, जो उस 19 साल के लड़के ने दिखाया और जो पराक्रम दिखाया, जो अंदरूनी ताकत दिखाई, जो अंदर का शौर्य था जो वो निखर के आया, उसकी वजह से भारत सरकार ने आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया और आप भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा हैं। इस चीज का आपको कैसा फील होता है? कैसे आपको अनाउंसमेंट हुआ और पता चला? क्योंकि आप तो दोबारा फिर 16 महीने बाद आप फिर वापस आर्मी में ज्वाइन कर लिया आपने। कई लोग होते हैं जो एक युद्ध के बाद कहते हैं कि ठीक है, मैंने देश के लिए जितना करना था कि अब मैं थोड़ा कुछ और सोचता हूँ। आप वापस से आर्मी में चले गए, मतलब आर्मी ही आपका घर था और इसलिए आप वापस अपने घर में गए। तो इस बात से ये चीज तो साफ है कि आप किसी पुरस्कार के लिए इन चीजों को नहीं कर रहे थे। आपका वो जो प्यार है, जो प्रेम है इस सेवा से, इस प्रकार की सेवा से, ये एकदम जाहिर है। तो परमवीर चक्र की बात थोड़ी सी बताएं।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में ही था तो 14 अगस्त 1999 को एक न्यूज आया कि उसमें कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं। उस समय योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत था, लेकिन सुबह 5 बजे पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जनरल वीपी मलिक। वो 9 बजे के आसपास जब मेरे पास पहुंचे तो बोले बधाई हो कि आपको परमवीर चक्र दिया गया है। मैंने बोला सर मैं तो जिंदा हूँ मरणोपरांत। तो बोला कि हाँ ये कुछ एमओडी की तरफ में कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि रात को

0: तो कर दिया मरणोपरांत, रात भर डेड बॉडी को ढूंढते रहे कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, बंदा अगर मर गया तो। लेकिन रात को हमें 2:30-3 बजे पता चला कि मरा नहीं है, वो जिंदा है और वहां पर है, हॉस्पिटल में है। तो ये तो तेरी उम्र बढ़ गई है अभी। मैं कह सर, हाँ। तो इस तरह से सर मुझे वो जनरल वीपी मलिक ने आकर के हॉस्पिटल में चीज की बधाई दी। और ये एक एक सपने जैसा था, क्योंकि जो बचपन में किताबों में पढ़ करके बड़े हुए थे, अब्दुल हमीद की कहानी को, मेजर होशियार सिंह की कहानी को, तो ये सोचा करते थे वो व्यक्ति कैसा होता है, उसको एक बार देखना चाहेंगे। तो मेजर होशियार सिंह को मैं ट्रेनिंग के दौरान बहुत दूर से देखा था, 6-6.5 फुट के वो बंदे थे, तो उनको दूर से देख करके ही एक अलग तरह की एनर्जी आई थी। लेकिन और सच में ये सच है कि सैनिक कभी किसी अवार्ड के लिए युद्ध नहीं लड़ता, वो अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने जो कार्य मिला है उसको संपूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ तो ये मेरे जीवन का एक अद्भुत था। लेकिन आज एक ये एहसास होता है कि जो मुझे माँ भारती ने जिंदा इसलिए रखा था कि जो मेरे साथ के जो लोगों ने अपने प्राण नौछावर इस माँ भारती के दिए, तो ये परमवीर चक्र कोई चक्र नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ ये उन शहीदों के लहू का वो चिराग है जो ईश्वर ने शायद मेरे सीने पर लगाया कि इस चिराग से इस देश के नौजवानों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की वो चिंगारी पैदा कर, ताकि इस राष्ट्र के युवा राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जागृत हो सके। तो ये मैं उस तरह से उसको देखता हूँ, समझता हूँ। ये अकेला योगेंद्र यादव का नहीं, ये उन लोगों के लहू का चिराग है।
1: तो ये बात तो एकदम इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि सहज ही लोग समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जान को जोखिम किसी अवार्ड के लिए नहीं देता है। वो अपनी जान केवल उस चीज के लिए लगाने के लिए तैयार होता है जिस चीज से उसको बेइंतहा मोहब्बत होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। और जहाँ प्यार होता है वहां पर, जैसे आपने पहले भी शुरुआत में कहा था, एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए, वो इतना उस अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके वेलबींग के लिए वो इतनी न्योछावर बुद्धि होती है, इतना समर्पण बुद्धि होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा लक्ष्य जो है उससे मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक सैनिक के दिल में जो ये भाव होता है कि मुझे मेरे देश की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके वेलबींग के लिए, उसके उन्नति के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सबसे बड़ा बलिदान जो जीवन का बलिदान होता है चाहे वो भी देना पड़े, वो देने के लिए तैयार होता है। और इन बातों से ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है, चाहे आप फील्ड पे हो या फील्ड के बाहर हो। व्यक्ति का अंतर बाहर जब केवल प्यार से भरा होता है देश के लिए, तो वो जो भी करता है, चाहे वो फील्ड पे खड़ा जवान हो या फील्ड से रिटायर्ड जवान हो, चाहे वो देश में बैठा एक डॉक्टर हो या फील्ड पे काम कर रहा है एक डॉक्टर हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि केवल देश और देश की उन्नति उनके लिए मायने रखती है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदया जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो दे रही थी, और उनमें से एक डॉक्टर जो वीरगति को प्राप्त हुए उनको पुरस्कार दिया जा रहा था, और वो डॉक्टर जो है वो सेना के लिए तैनात डॉक्टर थे। उनको इसलिए पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने न केवल कई दवाइयां बचाई जो कि ऐसे दुर्गम स्थानों पर पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन कई सैनिकों की जान भी बचाई। तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर, अगर यही डॉक्टर देश के अंदर होता तो भी वो यही करता, लोगों की जान बचाता। और जब वो सेना के लिए समर्पित था तब भी वो वही किया। तो काम चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, लेकिन अगर भावना देश के प्रति सुदृढ़ है तो उसका जीवन यथार्थ हो जाता है, उसका जीवन चरितार्थ हो जाता है, वो उदाहरण बन जाता है। जैसे कि योगेंद्र सिंह जी, आप हम सबके लिए उदाहरण बन गए हैं। मुझे जानने में ये उत्सुकता होती है कि आपके पिताजी, आपके भाई दोनों ही फौज में थे, उनका आपके प्रति अभी कैसा रवैया है, और आपके परिवार वालों का आपके प्रति कैसा रवैया है?
0: देखिए, माँ बाप के लिए तो बच्चा उनका वो बच्चा ही होता है, और ये एक माता पिता के लिए उससे बड़ा उनके जीवन का कोई सुख नहीं हो सकता है कि जब बेटे के नाम से माँ बाप को जाने, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखिए ये परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के फादर जा रहे हैं। आज तक हम उनके नाम से जाने जाते थे कि रामकरण सिंह का बेटा जा रहा है, लेकिन आज बेटे के नाम से, तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे इस चीज के लिए। माँ तो एक अद्भुत उनका दुलार होता है, माँ जैसा तो दुनिया में कोई नहीं होता। और भाई है, दो भाई हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और बच्चों के लिए तो एक पिता ही है। उनके लिए परमवीर चक्र नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। पत्नी के लिए उनका पति है और बाकी भाइयों के लिए भाई। तो ये जो चीजें होती हैं ये एक भाव रूप में ही आती हैं। और कहते हैं ना कि जब फलदार वृक्ष होता है उसमें ऐसे डालियां झुकती हैं, वो इसलिए नहीं झुकती हैं कि उसमें फलों का वजन है, वो इसलिए कि फल लगे हैं तो लोग इसको तोड़ सकते हैं। उसमें नम्रता, विनम्रता और सरलता आ जाती है। जो व्यक्ति जिसके पास उपलब्धियां हैं, जिसमें नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता अगर आ गई है, तो वो जो उपलब्धि है वो बहुत ऊपर चली जाती है। और जिसमें ये चीजें आने के बाद उसमें फिर भी अहंकार से वो ओतप्रोत भरा हुआ है कि ये मैंने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और ना ही है कि वह मनुष्य इस धरा पर अपनी मर्जी से एक कदम तक रख नहीं सकता है, तो कर्म तो क्या कर सकता है। सब ईश्वर ने किया है, उसकी मर्जी से हुआ है, हम एक माध्यम बने। ये शरीर माध्यम बना है, बाकी ईश्वर की शक्ति उसी से हुआ है। तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि ईश्वर ने ही जो कुछ किया है ईश्वर ही कर रहा है, हमें सिर्फ एक माध्यम बना रहा है। और मैं बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और हम हर एक मनुष्य को करना चाहिए कि हम बहुत गौरवान्वित हैं कि ईश्वर हमसे ये चीज करा रहा है, हम माध्यम बन पा रहे हैं
1: जी।
0: हम बाकी अगर मैं अहंकार है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सर मैं परिवार के लिए तो मैं उनका एक साधारण सा पिता हूँ, बच्चों के लिए और उनके भाइयों के लिए भाई हूँ, माँ और पिता के लिए एक बेटा था, अभी दोनों दुनिया में नहीं
1: है। ओ, ये जानकर के थोड़ा दुख हुआ कि वो अभी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ वो थे तब तक जब तक आपको ओके। लेकिन देश के लिए आप एक बहुत बड़े शिक्षक हैं, क्योंकि आप देश के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, उन्हें कई सारी बातें सिखाते हैं। एक चीज ये जानना था कि आप जब देश का ऐसा कोना कोना आप भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत विविधताओं का सामना होता है, बहुत सारी विविध चीजें देखने को मिलती है, नाना प्रकार के वेशभूषा, पोशाक, संस्कृति, संस्कार, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपने कोई एक चीज ऐसी पाई है जो पूरे भारत को जोड़ती है? समानता क्या चीज आपने देखी है?
0: सर ये वैसे पूरे विश्व का एक अनौकिक राष्ट्र है, ये धारा बिल्कुल अनौकिक है। हम कहते हैं ना, कोस कोस पर वाणी बदले चार कोस पर वाणी है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। तो इस देश के अंदर अनेकों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कलाकृति है, संस्कार हैं, अलग अलग तरह की, भिन्न भिन्न तरह के इस देश के अंदर वो संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं। और इन सबके बीच जो एक भाव है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो हमें एक साथ जोड़ता है। और ये एक ऐसा हिंदुस्तान, एक गुलस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग तरह के जो है भाव है। और लेकिन सभी में मैंने ये चीज देखी है कि राष्ट्र के प्रति सब एकजुट हैं। और जब राष्ट्र की बात आती है तो हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र पर कुर्बान होने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जिस युद्ध को मैंने लड़ा और जिस युद्ध का मैं हिस्सा बना, वो युद्ध उन सैनिकों ने ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र ने लड़ा था। पूरा राष्ट्र भावनात्मक तौर के ऊपर हर सैनिक के साथ एक ताकत बनकर के उनके पीछे खड़ा था। तो ये एक राष्ट्र की ताकत है हमारी कि हम अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के होने के बावजूद भी अपनी भारत माँ को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये ताकत मैंने बहुत जगह देखी, पूरे राष्ट्र का अभी कोना कोना, मैंने कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर मैं नहीं गया हूं, और ये चीजें मुझे वहां देखने को मिली हैं।
1: एक और बात इसमें ये सामने आती है, जैसे देश के अंदर लोग बार बार ना चाहते हुए भी ये मुद्दा उठ करके आता है कि भाई बहुत ही भेदभाव होता है, चाहे धार्मिक भेदभाव हो, चाहे नस्लों का भेदभाव हो, या कहें कई प्रकार के भेदभाव हैं जिसमें लोग उलझे हुए रहते हैं। लेकिन सेना एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे लगता है भेदभाव बिल्कुल भी खत्म कर दिया जाता है, अंदर से भी, मन से भी, और काम में भी वो दिखता नहीं है। थोड़ा इस पे आपका अनुभव क्या रहा है सेना में?
0: ये मैंने अभी 2 साल 2 ढाई साल मुझे जब सेना से वापस आए हुए हो गया है, तो मैं जब देश के अंदर चारों तरफ घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल जो एक फिलॉसफी बन गई है, पॉलिटिकल लीडर अपनी वोट के लिए, सत्ता के लिए लोगों के अंदर वो भेदभाव पैदा करते हैं। जबकि अगर हम सही रूप से अगर इस चीज को हम देखें तो सेना के अंदर सर सेना के अंदर वही धर्म वही धर्म वही वर्ण वही नस्लें हैं, बट वहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, और एक ही प्रांगण में है, तो वहां सर्वधर्म स्थल के नाम से जाना जाता है, और हम सभी एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। वहां न जाति का न धर्म का कोई भेदभाव होता ही नहीं। न जाने क्यों लोग इस जाति और धर्म के भेदभाव की लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं भरते हैं कि वो फूट डालने की कोशिश करते हैं। ये राष्ट्र यह एक सर इतना सुंदर राष्ट्र है, और यहाँ 47 से नहीं बल्कि महाभारत काल से लेकर के आज तक जब देश पर मर मिटने की बात आती है, तो सर हर एक धर्म के लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, और वो कभी नहीं सोचते कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ये मुस्लिमों का राष्ट्र है। नहीं, ये भारत माँ है और ये हमारी माँ है, और माँ का कोई धर्म नहीं होता है। माँ के अंदर सिर्फ प्रेम होती है, करुणा होती है, और माँ की करुणा और प्रेम की खातिर हर बच्चा अपनी माँ के आंचल को अपने लहू से पावन करता चला जाता है। तो ये चीज थोड़ी समझ में आई कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने फायदे के लिए लोगों के अंदर इस तरह की भावनाओं को जागृत करते हैं, और ये चीजें ठीक नहीं है। ये हमारे समाज और राष्ट्र में इन चीजों का बंदिशें होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जब होती हैं तो कमजोर होते हैं, ये मुट्ठी जब बंध जाती है तो ताकतवर हो जाती है, और ऐसे खुली होती है तो एक एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। तो हमें मुट्ठी बंद करके रखनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम उस राष्ट्र में राज करने की सोच रहे हैं जहां पर हर तरह के जो लोग हैं इस राष्ट्र से वो जुड़े हुए हैं। अरे अब पेड़ हैं, अब ये राष्ट्र एक पेड़ की तरह है, और पेड़ के अंदर असंख्य जड़ें होती हैं, असंख्य जड़ें होती हैं। अगर एक जड़ को भी आप काटते हो तो पेड़ के ऊपर असर पड़ना दिखना शुरू होता है। जब हम 7 करोड़ नाड़ियों से ये शरीर बना हुआ है, और ये 7 करोड़ नाड़ियां अपना काम सुचारू रूप से इस शरीर में पानी ले जाना, लहू ले जाना, पूरा जो है एनर्जी को ऊपर से सर से लेकर के पैर तक निरंतर अपना काम करते हैं, तो ये धर्म भी कहीं ना कहीं, जो जातियां भी, ये जब अपना जो अपने अपने तरीके से जब काम कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्र बढ़ रहा होता है। तो ये चीजें कहीं इस तरह से पॉलिटिकल लोग इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें तो ये राष्ट्र और बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा, और ये राष्ट्र बहुत मजबूत बनेगा।
1: तो इस राष्ट्र को, भारत को यशस्वी बनाने में सबसे बड़ा योगदान किस बात का है आपके हिसाब से?
0: जब लोगों के अंदर प्रेम होगा, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम की भावना कार्यों में भी दिखने लगेगी, क्योंकि जो प्रेम से किया हुआ कार्य है तो वो एक अलग दिखाई देगा। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वो प्रेम काम का भी है, राष्ट्र का भी है, धरती का भी प्रेम है। तो वो प्रेम जब चारों तरफ फूलता फलता है तो प्रेम सुगंध पैदा करता है, तो फिर हमारी जो जो स्वार्थ वाली भावनाएं हैं वो खत्म होने लगती है प्रेम से। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, और जब हम कोई कर्म भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितनी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एक एक व्यक्ति अपने प्रेम से, राष्ट्रभक्ति के काम से, और जब जुड़ता हुआ जाएगा, सब कंधे से कंधा मिलाते हुए चलेंगे, तो एक ताकत बनेगी, और ये ताकत ही राष्ट्र की ताकत है, और राष्ट्र की ताकत विश्व की ताकत बन सकती है। तो हमें मैं तो ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति हर समुदाय के अंदर प्रेम हो, खुल मिलकर के रहें और राष्ट्र एक मुट्ठी की तरह बनता हुआ चला जाए और फिर हम अपने राष्ट्र को जो बनाना चाह रहे हैं, जो हम विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो विकसित राष्ट्र की कल्पना बिना लोगों के जुड़े, बिना लोगों के प्रेम के, बिना लोगों की सोसाइटी का जो एक संगठन है, जब तक वो राष्ट्र एक संगठन है, संघ है, लोगों का समुदाय है, ये कोई जो मानचित्र पर कागज पर खींची हुई रेखाएं से देश नहीं बनता, वो तो सिर्फ देश की आकृति बनती है, देश लोगों से बनता है। जिस तरह से आप जो आपका घर है सिर्फ ईंटों से दीवार खड़ी हो सकती है, वो एक बन सकता, लेकिन घर कौन सा होता है? घर वो होता है जिसमें लोग आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, वो घर होता है। तो राष्ट्र भी वो होता है कि राष्ट्रवासी आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस राष्ट्र को बुलंदियों तक लेकर के जाएं, तो ये एक राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र में हर व्यक्ति की भागीदारी है राष्ट्र निर्माण के अंदर। तो हम चाहे हम रेडियो पे बैठे हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम किसान हो, चाहे हम मजदूर हो, चाहे हम इंजीनियर हो, चाहे हम आईएएस ऑफिसर हो, चाहे हम पीसीएस ऑफिसर हो, चाहे हम शिक्षक हो, हम हर तरह के हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों से प्रेम करें, कंधे से कंधा मिलाकर के चलें और अपने अपने क्षेत्र को सशक्त करें, और अपना अपना क्षेत्र जब सशक्त होगा तो ये राष्ट्र सशक्त हो, ये तो एक इकाई है।
1: ये जो आपने बात कही कि अपने अपने क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो तो अपने आप ही पूरा राष्ट्र सशक्त हो जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग जब अपने क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वो इतने कठोर हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा हम ओपन भी रहें, सिर्फ मेरा मेरा मेरा वाला भाव आ जाता है। तो अपने क्षेत्र की उन्नति के साथ साथ दूसरे के उन्नति में भी कैसे सहभागिता निभाया जा सके, थोड़ा सा वो खुलापन कैसा हो विचारों में, ये कैसे आप सजेस्ट करेंगे उनको?
0: ये सर, जैसे अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों में अलग अलग अपना अपना टैलेंट है और परमात्मा ने इस धरती पर हर व्यक्ति को एक गुण देकर के भेजा है और उसी गुण के आधार के ऊपर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। हमारे 100 गुण हो गए तो हम जब तक अपने किसी भी काम को जो जिस क्षेत्र में हम हैं टीम के रूप में नहीं करेंगे, फौज टीम के रूप में काम करती है और जब टीम के रूप में काम करती है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। टीम को यहाँ के लिए टीम नहीं है। अगर मैं अपने गांव की बात करता हूँ, अगर मैं गांव में काम कर रहा हूँ तो वो गांव का काम नहीं हो रहा, वो मेरे ब्लॉक का काम हो रहा है, वो ब्लॉक का काम ब्लॉक के लिए नहीं हो रहा, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट का काम, क्योंकि जब एक गांव की टीम ब्लॉक की टीम से जुड़ेगी तो बड़ी टीम होगी, ब्लॉक की टीम जब डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी तो ये और बड़ी हो जाएगी, डिस्ट्रिक्टों की कमिश्नरी की टीम बन जाएगी, क्योंकि हमने उसको एक टीम जो बनी है उसको छोड़ना नहीं है, उस टीम से फिर आगे की तरफ जाना है। अगर मुझे लिखना आता है तो किसी को गाना भी आता हो, किसी को गाना आता है तो किसी को नाचना भी आता हो, अगर मुझे नाचना आता है तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे को नहीं सिखाऊंगा, मुझे दूसरे को सिखाना है, मुझे अपनी टीम तैयार करनी है, गाने वाले को अपनी टीम तैयार करनी है, लिखने वाले को अपनी टीम तैयार करनी है। तो जब इस तरह की जो है प्रतिस्पर्धा होगी तो टीमों का विस्तार होगा, लोग और ज्यादा लोग जुड़ने लगेंगे और वो फिर टीम नहीं रहेगी, वो एक इकाई बन जाएगी और इकाई ही राष्ट्र की एक पहचान। तो हमें इस तरह से जो सोचना,
1: बहुत सुंदर बात कही कि कैसे एक एक इकाई जो है वो मिल करके, जैसे एक ईंट से आप पूरा महल नहीं खड़ा कर सकते, ईंटों का एक झुंड होता है जो कि फाउंडेशन बनता है, आधार बनता है, फिर दूसरे ईंटों का झुंड होता है जो कि पिलर्स बनते हैं, तो अलग अलग झुंड मिलकर के एक मकान तैयार करते हैं, वैसे ही अलग अलग इकाई मिलकर के देश को तैयार करते हैं। अचानक से मुझे ख्याल आया जब आप बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आपके घर में आरती या कुछ पूजा चल रहा है, उसका साउंड आया, तो मुझे एक चीज जानना था कि आप फौज में हैं और क्या आप शाकाहारी हैं?
0: मैं शाकाहारी।
1: तो कई बार ऐसा माना जाता है, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि फौज में जाना चाहते थे कभी, लेकिन उनके परिवार वाले शाकाहारी, वो भी शाकाहारी थे, लेकिन उनको कहा गया था कि नहीं, अगर तुम फौज में जाओगे तो तुम्हें शाकाहार से अलग भोजन करना पड़ेगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते, कुछ ऐसी ऐसी बातें थी। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं, और क्योंकि एक लोगों ने अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि फौजी है तो शराब भी पीता है, शराब पीने
1: बिल्कुल
0: जरूर,
1: बिल्कुल, उनको ये बताया गया कि वहां
0: और
1: शराब पीना
0: नॉनवेज।
1: जरूरी है, नॉनवेज खाना
0: हाँ
1: जरूरी है, नहीं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो तुम फायरिंग नहीं कर पाओगे, फिर तुम बहुत ठंडे हो जाओगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताए।
0: ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं, और ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन लोगों के बीच में है। फौज के अंदर 50% लोग हैं जो शाकाहारी हैं और जो दारू नहीं पीते हैं। मैं इवन जो है मैं हूँ, मैं हमारे घर तो पहले शाकाहारी था और आज भी शाकाहारी हूँ, फौज में नहीं जाकर खाया। हाँ कि लेकिन हाँ, एक कट्टरता लाने के लिए अभी खाया नहीं हमने कभी। अगर बकरे को काटना पड़ता है तो बोला काटना है, वहां काट देंगे लेकिन खाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सर आपको वो कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। आपके लिए अलग से शुद्ध वेजिटेरियन बनेगा और एक तरफ नॉनवेज होगा, तो आपको जो पसंद है, जो चीजें हैं वो आप खा सकते हो। आप दारू नहीं पीते हो तो मत पीजिए, कोई वहां पे कंपलसरी नहीं है कि आपको पीना ही पीना है। ये एक मन के भाव हो जाते हैं। लोगों को लगता है यार वहां सर्दी है तो पीना बहुत जरूरी है। भाई सर्दी किससे लग रही है? मन से लग रही है ना सर्दी, शरीर में तो सर्दी नहीं लगती है। अगर मैंने सोच लिया मैंने नहीं पीना यार, तो कैसे पी सकता है वो? पर मैं रह के आया हूँ सर, मैं रह के आया हूँ, सर्दी में रह के आया हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
1: जी जी बिल्कुल, ये सही बात है, ये मन की बातें होती हैं। मैं खुद बहुत सारे ठंड के देशों में रहा हूँ, माउंट आबू हमारा इतना ठंड का
0: हाँ
1: इलाका है,
0: बिल्कुल
1: हिमालयों पे कितने साधु संन्यासी रहते हैं, लेकिन ये शराब से ठंड जाती है, ये कुछ लोगों की मान्यताएं हैं। एक चीज मुझे यहाँ ये जानने का था कि जैसे कई लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नॉनवेज से जो है वो मांसपेशियां ज्यादा मजबूत बनती हैं, मसल गेन होता है, या व्यक्ति ज्यादा ताकतवर बनता है, फौजी से ज्यादा ताकतवर भला कौन होगा, और वो फौजी जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित है और वो शाकाहारी है, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में?
0: बिल्कुल। मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो नॉनवेज, मैं बोला कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप नॉनवेज खाते हैं, खाइए, आपका मन को वो तृप्ति मिल रही है, उसको खाने के बाद लगता है मेरे को प्रोटीन मिल रहे है, मेरे को मसल्स मिल रहे हैं। मैं कह यार ये बताइए आप बकरे का मीट खाते हैं? बोला हाँ खाते हैं। बकरा क्या खाता है? घास खाता है। घास खा करके बकरे की हड्डियों में या बकरे के मांस के अंदर वो प्रोटीन आ गया है, तो तुम अगर डायरेक्ट घास खाओगे तुम्हारे नहीं आएगा। ये बेकूफ की बातें हैं कि जो है प्रोटीन उसी से आएगा। हमारे संस्कृति, जो राष्ट्र की हमारी संस्कृति रही वो वेजिटेरियन रही, वो शाकाहारी रही, और शाकाहारी के रहने से आप ये देखिए, भगवान ने हमारा जो इस धरती पर असंख्य प्राणी अलग अलग तरह के, और जो उसने मांसाहारी बनाए हैं उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग बनाया है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मांसाहारी नहीं बनाया। आप तो पढ़े लिखे सब कुछ है, उसमें देखा होगा कि दो दांते बाहर जिसके निकले होते कीले होते हैं, है ना, उनको वो घास वास नहीं, उनको मीट चाहिए, मांस चाहिए, वो मांसाहारी है और एक शाकाहारी है। तो यार ये बताओ कि हमारे तो दांत तो बाहर नहीं निकले हैं, हम तो हमारे तो एक साधारण से घास खाने वाले हैं। या इतनी प्रोटीन्स, जितनी प्रोटीन्स आपको मांस में मिलती होगी उससे कई गुना ज्यादा आपको दूध, दही, छाछ, आपको ये जो बहुत सारी वेजिटेरियन सब्जियां हैं, इतनी प्रोटीन, इतने जो है आपके शरीर को भी, पाचन क्रिया को भी इतना स्वस्थ रखता है ये वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन जो खाते हैं। आपने देखा होगा सर, मैं उन नॉनवेज वाले व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ कि आप मांस खाते हो, रात को खाते हो, सुबह आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपका पाचन तंत्र उस मांस को पचाने के लिए बना ही नहीं। उसको पचाने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे चाहिए। आपका पेट साफ नहीं हुआ पूरा दिन, आप जो है गैस्ट्रिक के एक तो मरीज हो गए, पेट साफ नहीं है, उबासी आएंगी पूरा दिन में, आपके जो ना आलस छाए रहेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी। अगर आप रात को हल्का भोजन वेजिटेरियन खाके, सब्जियां खा करके सोओगे, सुबह तक पाचन, पेट सुबह क्लियर, आपके अंदर एक ताजगी आएगी, और ताजगी आएगी तो आप जो है हर काम को करने के लिए प्रेरित रहोगे, हर काम को करने की उत्सुकता आएगी आपके अंदर, इच्छा संग्रहित जागृत, एक नई एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती है। तो जब हमारा भोजन पचता है, भोजन पचेगा नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। अब भोजन तो ये पच नहीं रहा आपका, और पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा जो पेट का सिस्टम है वो तो वेजिटेरियन बनाया हुआ है, और आप जबरदस्ती उसमें कुछ डाल रहे हो तो सर फिर तो जो है हमारा खुद का अंदर का स्ट्रक्चर ही खराब कर रहे हो आप। तो फिर वही बात है कि जो आपको सर सर दर्द है, पैरासिटामोल लेनी चाहिए। आप ले कुछ और रहे हो तो फिर आपको तो रिएक्शन होना ही है बॉडी के अंदर।
1: ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक फौजी के जबान से उसकी कहानी सुनते हैं, और केवल एक कोई मामूली फौजी नहीं, कोई भी फौजी मामूली तो होता नहीं पहली बात, लेकिन ये एक वो फौजी है जो मौत के मुंह से वापस बाहर आया है और जिसने दुर्गम परिस्थितियों में देश को एक बड़ी सफलता दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया है, एक पावरफुल व्यक्तित्व है। इस फौजी के मुख से जब हम इन बातों को सुनते हैं तो जरूर हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि जो हम बाकी चीजें सोचते हैं या समझते हैं वो कहाँ तक उचित हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी कि ये थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक पे आपने हमको शेयर किया।
0: सर ये बिल्कुल सत्य है, जैसे देखिए हमारे शास्त्रों में और जो हमारे बुजुर्ग भी कहते आए थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी
1: वैसी होगी
0: वाणी। तो हमें अगर वाणी में सरलता और सहजता अगर लेकर के आनी है, क्योंकि ये वाणी ही एक ईश्वर ने इस तरह का हमारे पास खजाना दिया है कि इसी वाणी से हम लोगों में मित्रता और प्रेम बांट सकते हैं, और इसी वाणी से हम जो है लोगों के अंदर घृणा और द्वेष बांट सकते हैं। तो जैसा आपने जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी। तो हमारी वाणी सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, तरल होनी चाहिए और सबको मंत्रमुग्ध करने वाली होनी चाहिए। तो उस दिन का हम तो यहाँ पर धरती पर उस दिन के लिए खेल खेलने आए हैं, उस दिन खेल खेल करके चले जाएंगे यार। खेल में मित्रता होनी चाहिए, और जितने मित्रों से खेल खेलते जाएंगे और ज्यादा हमें सुकून मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो मुझे यहाँ ये जानना था कि आपका फेवरेट भोजन क्या है, व्यंजन क्या है, क्या या अगर आप खुद पकाना पसंद करेंगे तो क्या पकाना पसंद करेंगे?
0: तो ये लौकी चने की दाल।
1: क्या बात है, मैं सोचा कि जनरली लोग होते हैं वो पनीर आदि आदि यहाँ चले जाते हैं, लौकी और चने की दाल बिल्कुल हेल्दी, और ये भी बहुत सरल पाचन के लिए है, और चने की दाल प्रोटीन में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपने बहुत अच्छा चूज किया। आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
0: चिट्ठी आई है ये।
1: बिल्कुल, यहाँ तक कि बॉर्डर फिल्म जो है वो और कई ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर टाइगर हिल की कहानी जो है वो दर्शाई जाती है, मनोज वाजपेयी जी ने आपका किरदार निभाया हुआ है, और जब ऐसे व्यक्तित्व आपका किरदार निभा रहे होते हैं और जब वो आकर के आपसे पूछते हैं कि कैसे मैं इस चीज को एनेक्ट करूं या मैं क्या फील करूं, तो आप उनको क्या राय देते हैं, क्या बातचीत करते हैं आप उनके साथ?
0: नहीं, इनसे एक्टर से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस जेपी दत्ता से थोड़ा बात वार्तालाप हुआ था। तो बस यही कहा था कि जो यथार्थ है उसी को दर्शाना, बाकी को नहीं, क्योंकि हम इस चीज को दर्शाना चाहते हैं कि देश का युवा एक सैनिक बनता है तो वो राष्ट्र के लिए किस हद तक जा सकता है। बस वो चीज जब तक दुनिया में पहुंचेगी तो ये लोगों को लगेगा कि भारत नशेड़ियों का देश नहीं है, भारत शौर्य वीरता और पराक्रम का देश है, जहां 16 साल का लड़का जो 7 चक्रव्यूह को तोड़ देता है, तो ये वो देश है।
1: बहुत सुंदर। तो यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आप फायरिंग बड़ा अच्छा करते हैं, मैं इतना अच्छा फायरिंग सवालों का नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जरूर उम्मीद है कि आप फिर भी इस पे उत्तीर्ण होंगे। तो एक शब्द में या आधे वाक्य में इसका जवाब देना होगा आपको। शुरुआत तो मैं कर ही चुका हूँ आपकी फेवरेट सब्जी से और फेवरेट गाने से। फेवरेट कवि या काव्य जिससे आपको बहुत उमंग बल और या आप ऐसे समय पे पढ़ना पसंद करते हैं जिससे आप उभर के आ सके?
0: मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास।
1: और कौन सी एक?
0: गोदान है गबन है।
1: बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रेम क्या है?
0: प्रेम इस धरती का शाश्वत है।
1: शांति क्या है?
0: जहाँ प्रेम है वहां शांति है।
1: धर्म क्या है?
0: जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारा धर्म।
1: कर्तव्य क्या है?
0: जो दिया हुआ कोई भी कार्य वो उसको मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य है।
1: सेवा क्या है?
0: सेवा एक भाव है जो समर्पण भाव।
1: समर्पणता किसे कहेंगे?
0: समर्पणता, जहां आपका प्रेम होगा वहीं समर्पण होगा, वहीं सेवा होगी।
1: सरलता आप किसे कहेंगे?
0: सरलता जो बिल्कुल सहज लगने वाला।
1: नम्रता क्या है?
0: नम्रता एक विनय भाव, कि हम कुछ भी हो जिसमें गुस्सा ना हो वो विनम्र।
1: ईश्वर आपके लिए क्या है?
0: ईश्वर मेरे लिए सब कुछ है।
1: बहुत सुंदर। देश क्या है?
0: देश लोगों का वो समूह है जिसमें हम सब साथ रहते हैं।
1: भारत क्या है?
0: भारत एक माँ है।
1: योगेंद्र सिंह यादव कौन है?
0: योगेंद्र सिंह यादव परमात्मा का एक अंश है।
1: आपने शुरुआत भी यहीं से किया था और आज कार्यक्रम का आप एंडिंग भी यहीं से कर रहे हैं, कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि भारत माँ है और हम सब परमात्मा के अंश हैं। हम सब परमात्मा के वो संतान हैं जिनके द्वारा परमात्मा कुछ ना कुछ कार्य करा रहा है, और उस कार्य को जब हम उसकी याद में करते हैं तो वो कार्य निखरता है और वो कार्य जो है सामने वाले तक सहजता से, सरलता से शक्ति पहुंचाता है, जिससे सामने वाले का जीवन सुघड़ हो जाए। योगेंद्र सिंह यादव जी, आपसे बात करते हुए हमने सुना बालक योगेंद्र की कहानी, जो धीरे धीरे धीरे धीरे तरुणावस्था में पहुंच करके परमवीर चक्र से सम्मानित देश का सबसे नौजवान योद्धा बनता है, और फिर आज भी वो देश के भीतर अराजकता को मिटाने के लिए, नाना प्रकार की गलत भ्रांतियों को हटाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के नौजवानों को देश से जोड़ता है। ऐसे परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी, आपसे बात करते हुए न केवल मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं ने बहुत कुछ आज पाया है। हमने कारगिल के युद्ध में खुद को खड़ा महसूस किया है। आप बहुत अच्छे कहानी को सुनाने वाले एक बहुत प्रेरक वक्ता हैं, क्योंकि आपकी कहानी में सच्चाई इतनी है कि हम खुद को उस समय पे, उस मोमेंट में देख लेते हैं। और आपसे बात करते हुए ज्यादा सवाल मैंने इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि सवाल शायद इस कहानी के लिए उपयुक्त नहीं थे या जरूरी नहीं थे, क्योंकि ये कहानी अपने आप में संपूर्ण है। आपने हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिजी रहते हैं फिर भी रेडियो मधुबन के श्रोताओं के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि कभी आप माउंट आबू जरूर आए और रूबरू हमारे रेडियो मधुबन के परिवार से मिले। माउंट आबू एक बहुत सुंदर सी जगह है, यहाँ पर हमारा आर्मी कैंप है, बेस है, एयर बेस कैंप भी है, और साथ ही साथ बहुत सारा परिवार जो है, जो कि न केवल ब्रह्मा कुमारियों का परिवार है लेकिन जो सामुदायिक रेडियो है, तो समुदाय का जो परिवार है वो आपसे मिलकर के बहुत खुश होगा, रूबरू मिलकर के बड़ा खुश होगा। इसलिए इस नियोते को जरूर स्वीकार कीजिएगा और दोबारा कभी रेडियो मधुबन से जरूर जुड़िएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जब दीदियों की जो है आज्ञा होगी तो मैं जरूर वहां पर पधारूंगा और आप लोगों के बीच आऊंगा। ये मेरे जीवन का बड़ा स्वर्णिम पल होगा जब मैं दीदियों के बीच में होगा।
1: तो उम्मीद करते हैं दोबारा किसी एक और एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे और जानेंगे कुछ और नई बातें, क्योंकि फौज के अलावा भी आप जीवन को प्रेरित करने के लिए कई सारे विषयों पर बहुत अच्छा दखल रखते हैं। इसलिए आपसे बातचीत करेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए और खजाने आपसे निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, यशस्वी भारत कार्यक्रम को यशस्वी बनाने में आपका जो योगदान रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 107.8 FM रेडियो मधुबन के आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के आज के हमारे अतिथि हैं देश के सबसे युवा परमवीर चक्र से सम्मानित सबसे कम उम्र के सैनिक कप्तान योगेंद्र सिंह यादव जी। दोस्तों, कितना ही अनोखा होता होगा वो जीवन जिस जीवन में हम कुछ ऐसा कर पाते हैं जो केवल हमारे लिए नहीं लेकिन तमाम देश के लिए यादगार बन जाता है, इतिहास में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, भविष्य में शिक्षा बन जाता है। टाइगर हिल के विजय पताका की कहानी, टाइगर हिल पर फहराए गए तिरंगे की वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाकर के खत्म होती है, और कब तक ये कहानी देश के युवाओं में, देश के अंदर प्राण फूकती रहेगी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसी कहानी अमर होती है। ऐसी अमर कहानी को लिखने का भाग्य प्राप्त करना बहुत कम लोगों के पास होता है। और ऐसे ही भाग्यवान हमारे कप्तान परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी से आज हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने केवल अपनी कहानी नहीं सुनाई लेकिन साथ साथ हमें जीवन को जीने के कई सारे महत्वपूर्ण रास्ते बताए। सेना से निवृत्त होने के बाद आज परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी देश का चक्कर लगाते हुए देश के नौजवानों को हिम्मत न हारने का, देश के लिए कुछ करने का, अपने जीवन को अमूल्य समझ करके उसको जीने का प्रेरणा भर रहे हैं। योगेंद्र सिंह यादव जी की कहानी केवल एक योगेंद्र की कहानी नहीं, 256 उन योगेंद्रों की कहानी है जिन्होंने अपना जान कारगिल के लड़ाई में गवाया, देश के लिए खुद को न्योछावर किया। आज हम उन तमाम सैनिकों को दिल से धन्यवाद कहते हैं, उनके परिवारों को दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने घर से न केवल एक सदस्य को खोया लेकिन अपने दिल के एक टुकड़े को खोया है। हमारे दिल की दुआएं, हमारे दिल के उद्गार उम्मीद करते हैं कि उस दिल को सशक्त बना पाएंगे। दिल से दोस्तों आज केवल इतना करिए जो कि योगेंद्र सिंह जी ने किया, दिल से जय भारत जय हिंद बोलिए। दिल से जो भी आप करते हैं, चाहे आप एक चिकित्सक हैं, चाहे आप एक कृषक हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक गृहिणी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनको दिल से निभाइए। और दिल माँ भारती को दिया हुआ अगर है तो आपका दिल से किया हुआ कर्तव्य माँ भारती को सशक्त बनाएगा, यशस्वी बनाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे एक और एपिसोड में आपके बीच में एक और ऐसे ही चमकते हुए सितारे को लेकर के आएंगे हम। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी हाँ दोस्तों, दिल से माँ भारती के लिए दिल का प्यार बांटते रहिए। जय हिंद जय भारत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन में। चलिए आज हम एक नए विषय पर चिंतन करते हैं। मित्रों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने आखिरी बार मौन को कब महसूस किया था? सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की शांति वाला मौन। आज हमारा जीवन शब्दों, आवाजों और सूचनाओं से भरा हुआ है। मोबाइल की घंटी, संदेशों की बीप, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया का शोर, लगता है जैसे मौन हमारे जीवन से गायब ही हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ शांत होता है तभी तो हम खुद से मिलते हैं? आज का विषय है मौन का महत्व, शब्दों से परे की अनुभूति। मित्रों, मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां मन शांत हो, विचार धीमे पड़ जाए और आत्मा बोलने लगे। भारतीय संस्कृति में मौन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ऋषियों ने ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन के माध्यम से पाया। कई बार गुरु ने शिष्य को उपदेश नहीं दिया बल्कि बस मौन में बैठा दिया और वही मौन जीवन बदलने वाला बन गया। क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से अनुभूति शुरू होती है। मित्रों, हम दिन भर बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन क्या हम सुनते भी हैं? दूसरों को सुनना तो दूर, हम खुद को सुनना भी भूल गए हैं। मौन हमें सुनना सिखाता है, अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपनी अंतरात्मा को। आपने अनुभव किया होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो शब्द आग बन जाते हैं, एक वाक्य रिश्तों में दरार डाल देता है। लेकिन यदि उसी क्षण हम मौन चुन लें तो वही मौन रिश्तों को बचा लेता है। कई बार एक क्षण का मौन हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या बाहर का शोर नहीं है बल्कि सबसे बड़ी समस्या है भीतर का शोर। चिंताएं, तुलना, भय, अपेक्षाएं, ये सब मन को थका देती हैं। मौन उस भीतरी शोर पर धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। इसलिए कहा गया है मौन सबसे सरल ध्यान है। आपको घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है। दिन में केवल 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सचेत मौन में रहिए। ना मोबाइल, ना बातचीत, ना विचारों से लड़ाई, बस श्वास को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और जीवन में संतुलन आ रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी का साप्ताहिक मौन केवल प्रयोग नहीं था, वह आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति का माध्यम था। आज हमें भी मौन को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। मौन हमें सिखाता है हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं। तो आइए आज से हम मौन से डरना बंद करें, मौन को खालीपन नहीं पूर्णता के रूप में देखें। क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, मौन आत्मा की उपस्थिति है। इन्हीं विचारों के साथ मुझे अनुमति दीजिए। आप सुन रहे थे ज्ञान चिंतन, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक शांत रहें, सचेत रहें और जीवन में कभी कभी मौन को भी स्थान दें। सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें।
3: दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
4: अश्विनी ये ना, ये ना।
3: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
5: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
3: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
6: साधी भोळी माझी आई, सुखाची कुसावली।
3: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नीतू जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूं जिसका नाम है शिक्षक दिवस। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि एक अच्छे शिक्षक का योगदान समाज और देश के भविष्य को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षक हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसे कक्षा के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। जब भी शिक्षक उसे कुछ बोलने के लिए कहते, वह घबरा जाता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उसकी परेशानी समझी। उन्होंने उसे डांटने की बजाय प्यार से कहा, आरव, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। शिक्षिका ने उसे रोज थोड़ा थोड़ा बोलने का अवसर दिया। जब आरव से कोई गलती होती तो वे उसे डांटने की बजाय समझाती और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती। कुछ महीनों बाद आरव का डर दूर हो गया। एक दिन उसने अपने स्कूल के मंच पर सैकड़ों बच्चों के सामने भाषण किया। सभी ने तालियां बजाई। बड़े होकर आरव एक सफल व्यक्ति बना। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो

उसने कहा, मेरी शिक्षिका ने मुझे केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि खुद पर विश्वास करना सिखाया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि शिक्षक केवल हमें पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण भी करते हैं। शिक्षक दिवस का महत्व यही है कि इस दिन हम अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षक हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं। वे हमें अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत, दया और अच्छे संस्कार सिखाते हैं। इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को याद करना, उन्हें धन्यवाद देना है। शिक्षक एक ऐसे दीपक की तरह हैं जो स्वयं प्रकाश देकर दूसरों का जीवन रोशन करते हैं। वे हमारी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं और असफल होने पर हमें फिर से प्रयास करने की हिम्मत देते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। गुरु वह है जो ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। मेरे सभी आदरणीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहे, खुशियां बांटें।

0: आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिस एम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। भाव एंड भावना मीन्स इंटेंशन एंड फीलिंग। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरे थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और पांचवी इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल, मतलब जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका मूल फाउंडेशन प्रीत की बजाय विपरीत भावना ही होती है। सही नहीं भी लग रहा लेकिन पुरुषार्थ करके भी, मेहनत करके भी उस आत्मा के लिए प्यार की वाइब्रेशन क्रिएट करें। अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी क्या सदा स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचरा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित नहीं रह सकता। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हम परफेक्ट हैं, ठीक है, हम परफेक्ट हैं, हमारा चित क्लीन है, साइलेंट है, और फिर हमें सिर्फ किसी और की कमजोरी दिख जाती है, और फिर किसी और की कमजोरी दिखकर उसको हम यहां रखते हैं, अब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, अब हम बोलना शुरू करते हैं, तो हम परफेक्ट थे लेकिन अब हम परफेक्ट से हटकर डिफेक्टेड हो चुके हैं। ये हो गया, सारा डिफेक्ट्स आ गए हमारे अंदर, क्योंकि अब हमारी वाणी में नेगेटिविटी आ गई, हमारे चित्त पर नेगेटिविटी आ गई। हम पहले प्रसन्न थे लेकिन अब हम प्रश्न चित्त बन चुके हैं, ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको थोड़ा तो समझना चाहिए था, ऐसे तो करना चाहिए था। अब हमारा चित्त भी प्रसन्नता से फिर हट चुका है आगे।
1: हमने तो मेरे सामने गाड़ी के खड्डा आता और मैं पीछे तरफ हिलता हूँ तो मैं उसको गाली देता हूँ, बिल्डर को, वो कंस्ट्रक्शन किसने किया, गवर्नमेंट किसकी है, कितना खराब पैसे, कितनी बुरी तरीके की उसकी कमाई है, उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं तो उसके पूरी हिस्ट्री पढ़ देता हूँ एक खड्डे से।
2: तो फिर उतने में क्या हो जाता है हमारे चित्त को, हमारी चित्त,
1: मेरा चित्त हल्का हो जाता है।
2: चित्त हल्का कभी नहीं होगा नेगेटिव सोचने के बाद।
1: क्यों?
2: एक ये भी बहुत बड़ा भ्रम, इल्यूजन कहें, जो बहुतों में है, ये कि जब मैं ये सब बोल देता हूँ ना, जब मेरे को जो कहना है वो मैं कह देता हूँ ना, जो मुझे सोचना है वो मैं सोच लेता हूँ ना, उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ। अशांत थॉट्स क्रिएट करने के बाद मन शांत कभी नहीं हो सकता है। ये कोई भी कर ले उस टाइम, अपना पल्स चेक कर ले उस टाइम, अपना बीपी चेक कर ले, हर चीज परफेक्ट से हट चुकी है उस टाइम के लिए। अशांत थॉट्स क्रिएट की, कैसे चित उसके बाद शांत होगा? इतने प्रश्न किए, जैसे आपने कहा ये ये ये ये, मैं इतना कुछ सोच लेता हूं, तो यहां क्या हो गई? हलचल हो गई। यहां हलचल हुई उसके बाद कहा मैं शांत हो जाता हूं? हाउ इज इट पॉसिबल?
1: रोड पे खड्डा आया है, हमारे से टैक्सेस भी लेते हैं और कैसे कैसे आदमी को कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें से भी पैसे खाते हैं।
2: ऐसे मन बुद्धि थक जाएगी इतना तो सोच सोच के, तो वो तो है, फिर मन बुद्धि थक जाएगी तो शांत कैसे बोलेंगे उसको? वो पीसफुल और पावरफुल कैसी होगी? और इतना सोच सोच के आत्मा की शक्ति फिर, और फिर वो करने का संस्कार बनेगा।
1: नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है।
2: सपोज नेक्स्ट अब आप जब कार में जाएंगे, आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है जाने से पहले,
1: कितने अच्छे खड्डे हैं, कितने अच्छे लोग हैं।
2: जो गलत है वो गलत है, समझ लिया,
1: लेकिन
2: ये खड्डा नहीं होना चाहिए था, फिनिश्ड। ये खड्डा था, हमें संभाल के चलना है, फिनिश्ड। लेकिन उनकी बुराई को, उनकी गलती को अपनी बुद्धि में और चित्त पर धारण किया और फिर अपनी वाणी में भी लेकर आए। सपोज आप ऐसे हैं और गाड़ी में आपके साथ कोई और है, तो फिर तो बात वाणी पर भी आ जाएगी, बोल में भी आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, क्या आपकी वाणी और चित्त शुद्ध रहा?
1: नहीं।
2: ये अटेंशन, दूसरों की गलतियां देखते देखते देखते, बुराई करते करते हमारी और वाणी और चित्त का क्या हाल हो जाता है, दिस वी हैव टू टेक केयर। तो इसलिए कहा, अब आप भी परफेक्ट नहीं, डिफेक्ट वाले हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। ये अंडरलाइन है। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो फिर हम किसी की बुराई को अपने चित्त पर नहीं रख सकते।
1: इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा,
2: इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा।
1: And this is the homework.
2: This is the homework because this is the foundation for me to be happy in life. I cannot be happy. Prasanna chit nahi reh sakte kyunki chit par daag aa gaya. Jaise chit par daag aaya to perfect se defect ki taraf shift ho gaye. To uska chit sada prasanna chit nahi reh sakta aur chit par dharan ki hui baatein vaani mein zarur aayengi. ये भी अंडरलाइन है। चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी,
1: आज नहीं तो कल आएगी।
2: चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, ये भी होता ही है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जो मन में बैठी है बात, जो बुद्धि में धारण करके रखी है, वो बात कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने वाणी में जरूर आएगी। लेकिन कर्मों की गति के गुह्य रहस्य को सदा सामने रखो, कार्मिक फिलोसफी को सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे गुंबज में आवाज करता है।
1: एको।
2: ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल कर अपने पास आता है।
1: एको।
2: एको। अगर हमने किसी की बुराई, एक तो हमने देखा जो चित्त पर है वो रेडिएट कर रहा है, हमें भी मिल रहा है, दूसरे को जा रहा है, औरों तक फैल रहा है, लेकिन अगर वो बात चित्त से वाणी में आ गई
1: जी,
2: तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल के अपने पास आ जाता है। मतलब अगर किसी की बुराई वाणी में आ गई, शब्दों में आ गई, तब अब वो एको करके कई गुना बढ़कर हमारे पास ही वापस आने वाली है। गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज किसी की ग्लानी की और कल आपकी दुगनी ग्लानी होनी ही है।
1: होनी ही है,
2: कर्मों की फिलॉसफी है।
1: गुंबज
2: है, गुंबज है,
1: एको,
2: एको, लाउड एंड मेनी टाइम्स। एको कैसे आता है वापस?
1: वो सीड वाली बात होगी उस दिन,
2: एक बीच से कितने बीच, ये गुंबस ही सच ए डीप थिंग टू रिमेम्बर। एक हमने किसी की ग्लानी की वो गुंबज की तरह वापस आएगी। विच मीन्स जो हमने ग्लानी की एक लाइन की भी अगर, तो एको एक लाइन और उस वॉल्यूम पे वापस नहीं आता है, एको का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एको में नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज सेड वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलते हैं जैसे विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी से फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानी की वहां तक पहुंचते जरूर है। इम्पोर्टेंट, अगर हमने किसी की ग्लानी की तो परमात्मा कहते हैं वो विशेष बीमारी के जर्म्स की तरह है, जिसके बारे में हमने कुछ कहा वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट स्पीड पर उस आत्मा तक पहुंचेगा ही। और ये हमेशा होता है, आप किसी के बारे में थोड़ा सा बोल दो, कभी ना कभी वो चीज उस आत्मा तक पहुंचनी ही है। तो रिजल्ट क्या हुई, आपने एक ग्लानी की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानी करेंगे। सपोज मुझे पता चले किसी से कि आपने कुछ मेरे बारे में कहा, और जो आपने किसी को कहा फिर वो करते करते करते मेरे तक पहुंचा। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा कोई सुनाएगा, इफ आई एम नॉट कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड, तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना उस टाइम कि मेरे बारे में ऐसा कहा, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा,
1: तो ऐसा करता है उसके 10
2: ये, तो एक का 10 हो गया, इसीलिए गुंबज है ना, इसीलिए
1: डिवोर्स केस में अक्सर देखा जाता है।
2: हाँ।
1: वाइफ अगर हस्बैंड के खिलाफ एक डिवोर्स फाइल करे कि ये ऐसा करता है, वो 50 निकाल के लाता।
2: अपना केस स्ट्रांग करना होता है ना, अपना केस स्ट्रांग करने के लिए अहंकार मींस आई एम बेटर देन यू।
1: वो कहते हैं इंग्लिश में व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मल्टीफोल्ड।
2: इसीलिए गुंबज वर्ड बहुत अच्छा है, एको एको होके मतलब लाउडर भी आएगा और मल्टीप्लाई होकर भी आएगा। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत भाव शुभ भावना के स्वरूप में उस आत्मा को या जो भी उनके निमित्त है उनको बता सकते हो। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला कुछ नहीं। मतलब कोई गलत किसी के बारे में कह भी रहा है, उसमें भी हाँ में हाँ अगर हमने मिला दी, हमने कुछ कहा नहीं सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी।
1: हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, even I think so.
2: हाँ,
1: she or he is capable of doing that. जो आप कह रहे हैं शायद सही है।
2: तो हम उस कार्मिक पैटर्न के अंदर क्या हो गया,
1: पार्ट,
2: हम भी जुड़ गए। तो बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा या उसमें साथ दिया, तो वो भी तो पाप है ना।
1: ये कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स में ब्रेकफास्ट देते गरीब लोगों को और कुछ बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज होम टाइप का।
2: हाँ।
1: कुछ पता नहीं है वहाँ।
2: हाँ।
1: तो एक दिन मेरे घर पे मैं किचन दिया हुआ हूँ कि आके बना के ले जाओ, तो वो बोलती है कि इन्होंने तो फिश की डिमांड की है ओल्ड एज होम वाले ने। तो बोले यहाँ तो इस घर में तो होगा नहीं, आपको इतना ही है तो मार्केट से ले दो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे के हाथों से पका के खिलाते हैं। तो मैंने बोला आप इतने अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं और किसी की जान लेके आप दे रहे। तो बोलती है नहीं मैंने थोड़ा कुछ करना है, उन्होंने मांगा हम तो उनको दे रहे हैं।
2: Yeah.
1: मैंने नहीं, मैंने बोला यू आर अ पार्ट,
2: यू आर अ पार्ट,
1: मेरा किचन बिल्कुल नहीं और मैं भी पार्ट।
2: हाँ, मैं भी पार्ट,
1: और ना उसमें मेरा पैसा जाएगा, सॉरी
2: मैं भी पार्ट बन जाऊंगा उसका।
1: हाँ। हाँ। तो लोग बोलते उन्होंने मांगा और हमने उनसे उनको खिला दिया।
2: तो कार्मिक पैटर्न में कितना ध्यान से चलना है,
1: तो कितना क्लियर हो गया ये।
2: बिल्कुल, जैसे आपने कहा उन्होंने फिश मांगी, नॉनवेज मांगा, और ये जो बना रहे हैं ये खुद नहीं खाते, लेकिन अब इन्होंने सोचा उन्होंने मांगा तो हमने दिया, उन्होंने मांगा हमने दिया, हम देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने मांगा, तो हमारा रोल सिर्फ था यहाँ से लिया वहां दिया। तो बी थिंक कि इसमें हमारा कोई कर्म नहीं बना, लेकिन हम अगर देते ना तो वो लेते कहां से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्यों गलत चीज देने के निमित्त बने अगर हमें लगता है कि वो चीज सही नहीं है? तो जो चीज हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हम नहीं सोचते, हम नहीं बोलते, तो वो दूसरे कर रहे हैं, तो उसमें भी हाँ में हाँ किया, तो उनके ही कार्मिक अकाउंट के बीच में उस पैटर्न में हम भी फंस गए। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा, बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो भी तो पाप है ना। दुनिया में भी देखो ना, कहीं कुछ होता है, कहीं कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो सारे कौन से लोग पकड़े जाते हैं? जिन्होंने उस अटैक को मटेरियलाइज करने में साथ भी तो दिया ना, इन्होंने सपोर्ट किया है उस कर्म को, तो उसको भी तो सारे सारे फंसेंगे उसके अंदर साथ।
1: अभी एक जज की जजमेंट बहुत सुंदर थी, उसने क्या किया, एक आदमी रिश्वत में और बहुत पैसा कमाया ऐसे रिश्वत से और ब्राइबरी ले लेके, तो वो पकड़ा गया, तो उसने उसकी वाइफ को और बच्चों को भी जेल में डाला।
2: जज
1: ने बोला क्यों? क्योंकि आपने साथ दिया, इतने साल उस पैसों का आपने खाया, उसका यूज किया, यू आर पार्ट ऑफ इट। अब भले आगे हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में बात,
2: बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट एंड विच इज ट्रू। तो अब हमें भी देखना है, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की ग्लानी कर रहा है, तो मुरली कहती है हाँ में हाँ भी मिलाया तो वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। हमारा रोल क्या है कि जो किसी की ग्लानी कर रहा है, हम धीरे धीरे उसको भी उस दर्द से बाहर निकालें कि हाँ कोई बात नहीं ऐसा है, लेकिन अब हमें क्या करना है इसके साथ? ठीक है वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आपको अपने को कैसे संभालना है? उनको बाहर उससे निकालने की बजाय अगर हम हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो हमारा पाप क्या बनता है? ये देखो कितना सूक्ष्म पाप है कि सामने वाला गड्ढे में गिर रहा था, है ना, हमने कहा वो तो गिर ही रहे थे, हमने आकर क्या किया?
1: ओके वेरी गुड बोला खाली,
2: हमने सिर्फ वेरी गुड नहीं बोला, हमने एक छोटा सा पुश और दे दिया,
1: हेल्प भी की,
2: क्योंकि हमने हेल्प नहीं की, हेल्प की होती तो हम क्या करते,
1: बाहर निकालते,
2: हम बाहर निकालते, लेकिन हमने सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी। जैसे ही हाँ में हाँ मिला दी, हमने सामने वाले की सोच को और वो जो वर्णन कर रहे हैं उसको हमने इंडोर्स कर दिया ना, हाँ सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो सामने वाला तो ऑलरेडी ऐसे हो रहा था, डिसएम्पावर हो रहा है, हमने उसको हाँ कह दिया, हाँ कहते ही हमने उसको और नीचे गिरा दिया, ये हमारा पाप नहीं बना, वो ग्लानी कर रहे थे वो उनका पाप बना, हमने गिरते हुए को हाँ में हाँ मिलाकर उनको गिरा दिया, ये हमारा पाप बना। कर्मों की गति को अगर हम कभी ऐसे बैठकर खोले ना सारा दिन के अपने कर्मे के खाते को, हमें पता, हम अवेयर ही नहीं है कितने छोटे छोटे छोटे छोटे सूक्ष्म में हम कहाँ पाप करते जा रहे हैं, और फिर हमें पता नहीं चलता कि सोल पावर कहाँ डिप्लीट हो रही है, फिर हमें ये नहीं पता चलता मेरे सामने ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आ रही है, क्यों मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, क्यों मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे ही बोए हुए बीज का रिजल्ट मेरे सामने आता है। जो हर थॉट प्योर करेगा, औरों को भी दर्द से बाहर निकालेगा, उसका कर्मों का खाता कैसा होगा? क्लीन, प्योर एंड पावरफुल। तो परमात्मा कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। कितना अटेंशन हमें रखने की जरूरत है कि ये सब जब हम करते हैं तो हम किस कार्य को सहयोग दे रहे हैं? आत्मा के अंदर ताकत है कि एनर्जीज को या तो वो इस डायरेक्शन में ले जाए या उस डायरेक्शन में ले जाए। हम एक सुंदर दुनिया बनाने के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, हम अपने अपने जीवन और अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाने के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, तो हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो हम उसके ऑपोजिट के डायरेक्शन में चले जाए, उसका रेपरकशन लॉन्ग टर्म चलेगा। अब देखो, अगर इफ आई कम एंड क्रिटिसाइज समवन टू यू और आपने हाँ में हाँ मिला दी, तो फिर उसके बाद माय क्रिटिसिज्म विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम ना। मुझे आपने बाहर नहीं निकाला तो मैंने कुछ कई समय तक और उनको क्रिटिसाइज करते रहना है, फिर और चार लोगों के सामने भी करना है, तो जिन जिन सामने मैं करूंगी क्रिटिसाइज, उनका भी मन थोड़ा थोड़ा हलचल में आएगा, सारी वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये सारी चीजें आप उस दिन रोक सकते थे, आपका एक कर्म, एक बोल ये सारी नेगेटिव एनर्जी को उस दिन रोक सकता था, लेकिन आपका एक हाँ, सिर्फ हाँ में हाँ करना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज उसके बाद क्रिएट हुई। कर्मों का खाता क्या कहेगा, बहुत सूक्ष्म है कि हमारी, इसीलिए नहीं हमारी संकल्प से सृष्टि ऐसे ही नहीं बन जाती, ये लिटरली बन रही है हमारे संकल्प से सृष्टि। तो हमें अपने हर संकल्प में, ये जो बहुत कैजुअली हम बैठे बैठे फ्रेंड्स के बीच, ऐसे ही सोशल गैदरिंग, यहाँ तक कि यू नो ट्रैवल कंपेनियन आपके साथ जो बैठा है, जानते नहीं पहचानते नहीं, इधर की उधर की किसी की भी बुराई कर लेते हैं, दूसरा हाँ हाँ, मतलब हमें लगता है हमें कुछ तो बात करनी है ना बैठ के सामने वाले के साथ, और कुछ नहीं तो किसी पब्लिक फिगर की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी पॉलिटिशियन की, दुनिया में जो हो रहा है, सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, हमने हाँ में हाँ मिलाकर उसके क्रिटिसिज्म को और उस नेगेटिव एनर्जी को हम किस लेवल पर लेकर जाते हैं। आज अगर हम देखें, जब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी, जब से ये व्हाट्सएप और सब कुछ आया हमारे फोन पर, एक आत्मा कहीं बैठकर किसी के बारे में ग्लानी लिखती है, एक मजाक बनाती है, एक जोक बनाती है, किसी की निंदा कर रही है, लिखता एक जना है सिर्फ। अगर वो एक किसी और को भेजे वो, और उसके बाद वो सामने वाला किसी और को ना भेजे, वो वहीं रुक जाती चीज, लेकिन एक ने जिसने लिखा वो, उसने तो अपना कर्म बनाया कि ये लिखा, फिर उसने सिर्फ पांच लोगों को भेजने की जरूरत है, वो पांच लोगों ने अगर उसको आगे भेज दिया, वेरी सून द होल मैसेज इज ऑल ओवर द कंट्री, वेरी सून ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन निमित्त बना ये करने के,
1: सभी बने जिन जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया,
2: जिन जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। ये लगती कितनी छोटी बात है, हमें लगता है मेरे पास यहाँ से आया मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ से आया मैंने फॉरवर्ड किया, जिनको मैंने फॉरवर्ड किया पहले उनके मन में वो बीज डाला नेगेटिविटी का, फिर उन्होंने और 10 लोगों को फॉरवर्ड किया। दिस इज लाइक दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि एक जो करेगा उसकी डाउनलाइन में जो जो जो करेगा वो, उसका खाता मेरे कर्मों के खाते में जमा होगा। और यही किसी ने अगर पॉजिटिव प्योर मैसेज भेजा, वो हमने अनेकों के साथ शेयर किया, तो एक ने बनाया, उसने पांच को भेजा, पांच ने 5 लाख तक उसको पहुंचा दिया, तो वो एक का भी खाते में जमा होगा, और जो जो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा उसके भी खाते में जमा हो जाएगा। एट एवरी स्टेप वी हैव अ चॉइस, हाँ में हाँ किसके साथ मिलानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपने आप को कहकर ऐसी छुट्टी नहीं देनी, क्या करो अभी सब बैठे थे ना, तो करना ही था, बात करनी ही पड़ती है।
1: और फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है और बच्चे देख रहे हैं कि डैडी खामखा झूठ के लिए भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उन्हें भी इन चीजों की आदत पड़ सकती है, वो भी प्रभावित होते हैं, कल को वो भी करते हैं, और कितना लंबा असर जाता है,
2: कितना लंबा
1: असर, कर्म सिर्फ यहाँ नहीं बांधा, उसको भी मैंने खराब किया, फर्दर वो करेगा,
2: बिकॉज वो उसको जीवन जीने का तरीका समझ के सीख रहा है ना, दिस इज द राइट वे, एंड कल वो जो करेगा वो आगे उसका बच्चा देखेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सबसे डीप इनहेरिटेंस हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं, हमारे सोच और संकल्प संस्कार,
1: सोच संकल्प
2: इससे पावरफुल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम अपनी फैमिली को देकर जाते हैं, हम अपने बच्चों को देकर जाते हैं।
1: बदल नहीं सकते हम लोग, जीते जी जो
2: हम बदलते हैं ना,
1: विल बदल देते हैं।
2: हाँ,
1: तो वैसे अगर सोच और संस्कार कुछ अपने पुराने अच्छे नहीं थे, तो आज मैं बदल नहीं सकता हूँ अपने बच्चों के लिए,
2: अपने बच्चों के अंदर नहीं बदल सकते ना, अब कैसे बदलेंगे,
1: मैं बदलूं तो फिर देखते हैं ना वो लोग।
2: उसकी मेहनत उनको थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। शुरू में
1: एक
2: छोटा बच्चा क्या करता है, एक छोटा बच्चा जल्दी इजीली कैच कर लेता है और उसको करना शुरू कर देता है। अब करते करते वो उसका जीवन जीने का तरीका बन गया है. नाउ दैट चाइल्ड हैज टू चॉइसेस, के पास दो चॉइसेस हैं. आप पेरेंट हैं, अगर आप एज अ पेरेंट अपने संस्कार को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं कि आपके परिवर्तन को देख वो इंस्पायर हो, वो भी अपने आप को चेंज करते हैं. दूसरा है कि उसका संस्कार बहुत कड़क है, वो उस पर वर्क नहीं करते, तो वो अपने पुराने नेगेटिव संस्कार के साथ जो आपको देखकर क्रिएट किया उसी के साथ चलते हैं. कई केसेस में ऐसा भी होगा कि पेरेंट अपने संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बच्चा ही रियलाइज कर लेगा कि ये संस्कार मेरे लिए अनकंफर्टेबल है और वो देखकर उसको चेंज कर सकता है. हर एक का कर्म लॉन्ग टर्म बहुत खाते में जाने वाला है. जैसे आपने कहा, मैंने किया, मुझे देख बच्चे ने किया, बच्चे को देख कल उनके बच्चे करेंगे, तो ये सारा किसके खाते में जाके जमा हो जाएगा?
1: मेरे.
2: ऐसे ही तो सृष्टि बनती है.
1: और मुझे अपने बच्चे में वो देखकर मुझे भी बुरा लगता है. हाँ. कि ऐसे क्यों कर रहा है. फिर बाद में याद होता है, ये तो मैं करता था पहले.
2: करता था. सी, जब अपने अंदर हम खुद कर रहे थे तब हमें गलत नहीं लग रहा था ना, उसको करते हुए देखकर हमें कितना बुरा लगता है. ये हमारे संकल्प का फल है, हमारे कर्म का फल सामने आता है. ये उसी का कर्म का फल आ गया ना सामने. तो अब हम पास्ट को नहीं लेकिन प्रेजेंट में वर्क करके अब हम ये अटेंशन रखें कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना. गलत कुछ दिखाई दे रहा है, गलत है, लेकिन बुराई को चित पर नहीं रखना, वाणी में नहीं लेकर आना. वो गुंबज की तरह वापस आएगी. हम एक उनकी ग्लानी करेंगे, वो हमारे को सिद्ध गलत करने के लिए 10 करेंगे. और परमात्मा कहते इस प्रोसेस में जो हाँ में हाँ मिलाएंगे वो भी पाप के खाते में जमा हो जाएंगे.
1: सो नाइस, सो नाइस. थैंक यू सो मच सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति. ओम शांति.
3: When we observe a weakness or a wrong act of another person, we start churning on it. It stays on our mind for a long time and soon becomes a part of our memory. Then their negativity becomes a part of our mind and intellect. When we keep others' negativity on our mind, then we can never become perfect and cannot be happy. So, we need to practice that even while witnessing a negative sanskar or a wrong karma, we should not absorb it on our mind. When we absorb someone's weakness in our thoughts, it will definitely come into words someday. Speaking ill about someone will return like an echo, louder and more in magnitude. They will criticize and speak ill about us more than we did about them. If others are speaking ill about another person, even silently supporting them, endorsing what they are saying, we become a part of their karmic pattern. We need to take care that we do not support another's negative karma, because it then becomes a part of our karma.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं लौकिक ज्ञान विस्फोट के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज जो है संसार में अनेकानेक नए जो है नामों से नई विद्याओं के बारे में हम सुनते हैं, और पहले जो ज्ञान शाखाएं भी थी उनमें से भी हर एक का इतना विस्तार हो गया है कि अब वे स्वतंत्र रूप से तथा अलग अलग नाम से पढ़े जाने वाले ज्ञान अथवा विज्ञान हो गए हैं, और उनका जो है घेरा इतना बढ़ गया है कि उनका पूरी तरह अध्ययन करने के लिए मनुष्य को उन विषयों का विशेष बोध प्राप्त करना पड़ता है। अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं, हाँ, तो देखते हैं कि आज हर एक विषय पर कई संस्थानों में एक ही समय पर शोध कार्य हो रहा है। कितने ही लोग नए नए विषयों पर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। हर विषय पर इतनी पुस्तकें लिखी हुई है कि उनकी सूचियां बनाने पर भी काम नहीं चलता। ज्ञान के विश्वकोश डायरेक्टरिया जो है, लेखकों की नामावलियां इत्यादि तैयार की गई है, परंतु वे छपते छपते ही पुरानी हो जाती है, और इसी बीच नए आश्चर्यजनक आविष्कार अथवा दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी इतनी संख्या में छपते हैं कि जिसकी पहले कल्पना भी नहीं हो सकती थी। विश्व में शीघ्र ही एक के बाद दूसरे युग का पदार्पण हुआ। पहले आविष्कार युग, फिर मशीनी युग, फिर उसके बाद विज्ञान युग और तकनीकी युग, फिर अणु युग आया, और अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार आज ज्ञान विज्ञान ऐसी स्थिति को पहुंच चुके हैं जिसे विश्व में आप देखो तो विज्ञ लोग जो हैं ज्ञान विज्ञान विस्फोट की स्थिति कहते हैं। औषधि विज्ञान को ही आप ले लीजिए, एक ही बीमारी की जांच करने के लिए खून, मल, थूक, फेफड़े इत्यादि की जांच करने वाले अलग अलग विशेषज्ञों के पास जाना पड़ता है। नित्य प्रति इतनी नई दवाइयां निकल जाती है कि एक सामान्य डॉक्टर के लिए क्या होता है उनके बारे में तुरंत जान पाना भी कठिन है। आंकड़े और ब्यौरे इतने दिए जाते हैं कि मनुष्य का दिमाग चक्कर खा जाता है। इतनी सूचनाएं कठिन हो जाती है कि इतनी सूचनाएं आती है कि इसकी इकट्ठी हो जाती है इतनी सूचनाएं कि आज कंप्यूटरों के बिना आज काम चलना कठिन हो गया है। छोटी कक्षा के बच्चों को लोहे के पेटी भरकर स्कूल में ले जानी पड़ती है, और उसे वे जो है अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, कोमल हाथों से उठाते हैं। कभी एक हाथ में उठाते हैं, कभी दूसरे हाथ में। आप ही बताइए कि क्या अभी भी आणविक विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण विस्फोट और भ्रष्टाचार विस्फोट की तरह ज्ञान विज्ञान के विस्फोट की स्थिति नहीं आ पहुंची है क्या? इस पे हम विचार करते हैं और अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा होती है ना, तो यदि इस गति से अनुसंधान होते रहे तो विज्ञान जो है विज्ञान को इतना मतलब इतना हो जाएगा कि मनुष्य बचपन से लेकर और कुछ ना करके 30-40 वर्षों तक स्कूल कॉलेज में विद्या ही पढ़ता रहे तो उसका पाठ्यक्रम शायद ही पूरा होगा और शायद ही वह वैज्ञानिक कहलाने के का जो है वो अधिकारी हो सकेगा। नित्य नए गणित के तरीकों को कौन सीख सकेगा? इतिहास का जो ज्ञान है इतना अधिक हो जाएगा कि या तो पुराना इतिहास पढ़ाना बंद करना पड़ेगा और या केवल इतिहास ही का एकमात्र विषय पढ़ाया जा सकेगा। आखिर मनुष्य को स्मरण शक्ति जो है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा है। अतः जो लोग कहते हैं कि कलयुग अभी दूध मुहा बच्चा है और कि अभी यह 4,27,000 वर्ष और चलेगा, उनसे कोई पूछे कि क्या मनुष्य ईंटों की बजाय किताबों के घर फर्श और छत बनाकर रहेगा और क्या इससे पहले ही वह बावरा नहीं हो जाएगा? तो आप सोचो कि आज मनुष्य की जो स्थिति है वो क्या है। एक होता है प्रवेशार्थी विस्फोट, देखने के योग्य। एक बात यह भी है कि आप देखो तो इसका योग्य जो एक इसकी बात जो है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ विद्यार्थियों की जो है संख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। एक दो पीढ़ी पहले इतनी संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर कार कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान विस्फोट के साथ साथ आज जो है प्रवेशार्थी विस्फोट की भी स्थिति आ पहुंची है। द्वितीय महायुद्ध के पहले कोई बुल्ला ही व्यक्ति स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत से लोग स्कूल के बाद ही शिक्षा समाप्त कर देते थे, परंतु अब तो ऐसे लोग की संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है जो विज्ञान तकनीक औषधि तथा अन्य प्रकार की स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब सोचने की बात है कि हर वर्ष तीव्र गति से बढ़ती हुई प्रवेशार्थी संख्या को प्रवेश कैसे मिल सकेगा? इतने अधिक तकनीकी या औषधि विज्ञान संबंधी कॉलेज इत्यादि कैसे खोले जा सकेंगे और पढ़ने के बाद उन लोगों को रोजगार कैसे मिल सकेगा? इसका भी विस्फोट होगा। इसका जो है इसका और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम हर वर्ष देखते हैं कि प्रवेशार्थियों की जो लाइन बढ़ती ही जाती है और कितने ही जो है कितनों को ही प्रवेश तथा रोजगार न मिलने से युवा असंतोष, तोड़फोड़, अनुशासनहीनता, मादक पदार्थों का प्रयोग तथा अपराध इत्यादि बढ़ते ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय, तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के जो परिणाम है उसे हम क्या करते हैं। पहले कहा जाता था कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे समाज की जो समस्याएं हैं उसकी भी हल होगी, और मनुष्य को जो है मनुष्य का दूसरों से व्यवहार सुधरेगा तथा उसमें नम्रता, संतोष और सद्गुण आएंगे। लड़ाई झगड़ों तथा बुराइयों का अंत होगा। इसके ज्ञान को प्रकाश, सद्गुण, नैतिक, प्राकृतिक, मानसिक तथा सृजनात्मक शक्ति देने वाला माना जाता था, परंतु आज हम जो देख रहे हैं वह इसके विपरीत हो रहे हैं। आज मनुष्य में इच्छाएं, असंतोष, अशांति, अधैर्य, असहनशीलता और अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जाती है, उद्दंडता भी बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी और उद्दंडता के साथ लड़ाई ये सब भी बढ़े हैं ही हैं। बल्कि विज्ञान तथा तकनीक ने तो लड़ाई के ऐसे नए अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार किया है जिससे वह स्वयं के अस्तित्व का भी मूल्यांकन कर देगा। आज सभी लोग कहने लगे हैं कि इस ज्ञान से संसार में उथल पुथल बढ़ी ही है, जीवन में कृत्रिमता जो है आई है और मनुष्य और अधिक कुटिल तथा दम्भी बना है, और प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करके मनुष्य ने सारे संतुलन को बिगाड़ दिया है। उसने वायु, जल, खाने पीने की चीजें और जो भी है सभी को दूषित और जहरीला बना दिया है, और ये नई समस्याओं तथा मानसिक व्याधियों को जन्म दिया है। एक तरफ हम देखते हैं दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदने वाला है वो स्वयं खाई में गिरता है। इस ज्ञान द्वारा यद्यपि मनुष्य ने एक कंप्यूटर की तरह कुछ तथ्य बुद्धि में धारण कर लिए हैं या विश्वकोश में ये जो एक दो खंड हैं, एक दो खंडों में जितनी सामग्री खोपड़ी में फूसती है, तथापि उसके लिए जीवन में वह भद्रता, स्नेह, शील, शांति की स्थापना नहीं हुई है, न ही उसने सही मूल्य तथा दृष्टिकोण अपनाए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान स्वयं अपने लिए तथा जो है उपजाने वाले के लिए अभिशाप ही सिद्ध होगा। जिस ज्ञान से मनुष्य के आवेगों का जो संतुलन तथा शुद्धिकरण नहीं हुआ और जिससे मनुष्य की उलझने बढ़ी है और उसमें निराशा, अतृप्ति, वासना तथा भोग विपासा में वृद्धि हुई है, वह ज्ञान उसे अवश्य ले डूबेगा। आज जिस ज्ञान के आधार पर मनुष्य अपनी पंडिताई तथा तार्किकता का अभिमान करके अपने जीवन से विश्वास, ईश्वर निष्ठा, नैतिकता इत्यादि को खो बैठा है, वह ज्ञान उसे एक बारूद की ढेरों पर ले जाकर बिठाएगा, जहां से उसका अस्तित्व सुरक्षित रहना संभव नहीं होगा। सच जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं खाई में गिरता है। जो दूसरों के लिए एटम बम बनाता है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान ने भगवान से मुख मोड़ना सिखाकर पति पत्नी को तलाक देना, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना सिखाया, जिस विज्ञान ने ईश्वरीय प्रकाश के प्रति आंखें मूंदकर एटम के प्रकाश
का साक्षात्कार कराया, जिस सभ्यता ने पारंपरिक आनंद को हम दिला चुने, देकर अफीम शराब तंबाकू तथा सेक्स की ओर मनुष्य का मुख मोड़ दिया, वह ज्ञान विज्ञान रूपी बम निश्चय ही फट पड़ेगा और अपने कर्ता के कर्मों का महाविषम फल भी उसे देगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज हम देखते हैं एक ईश्वरीय ज्ञान का जो है अनोखी जो संधि का समय है ये। दूसरी ओर हमें यह भी समझना चाहिए कि आज जब भौतिक ज्ञान तथा विज्ञान अपनी अंतिम सीमा तक जा पहुंचा है, तब आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा तथा योग विज्ञान का सूर्य भी पूर्ण प्रकाशमान हो चुका है। असत्य की तुलना में ही सत्य और अधर्म की तुलना में ही धर्म को समझा जा सकता है। अतः आज जबकि भौतिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य देह अभिमान तथा नैतिक रात्रि में प्रवेश कर चुका है, जो उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो है घटा टोप रात्रि के बाद ही दिन की प्रकाश रश्मियां उजाले और जागृति का सवेरा लेकर प्रवेश शुरू करती है। यह बात हम अपने अनुभव के आधार पर संसार को बता रहे हैं कि एक ओर कलयुग के अंत के लिए विज्ञान अपने जो है वो विध्वंसक जो है आणविक अस्त्रों शस्त्रों के लिए को लिए वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ईश्वरीय ज्ञान आत्मिक परामात्मिक और उजाला लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है पदार्पण कर चुका है। दोनों की यह अनोखी संधि का समय है। एक का जो है पटाक्षेप और दूसरे के पट के अनावरण की एक जो है यह शुभ बेला है। हम जैसा कि हम देखते हैं अभी समाज की जो स्थिति है, तो आप थोड़ा सोचिए कि यदि हम इस बात पर अगर विचार ना करें तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो इस ज्ञान को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम ईश्वरीय ज्ञान को लेना हमारे जीवन में एक उजाले की तरह है, तो इसे हम अवश्य धारण करें अपने जीवन में और अपने जीवन का जो है भाग्य को जो है यहाँ से भाग्य का उदय होगा। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हम तब तक के लिए गाते रहिए, हंसते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।
1: प्यारे बाबा, जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ख्वाबों के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और मेरे साथ हम सफर विभाजी हैं, जिनसे हम लोग काफी एपिसोड में उन्होंने जो है नए नए कलेक्शंस आप सभी लोगों को 60s एंड 50s के ओल्ड मेलोडीज लेकर आती हैं और सुनाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में भी विभाजी हमारे साथ है इस सफर को सुहाना बनाने के लिए। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ अक्षर ओ वाले, हाँ ओ वाले अक्षर से गाने सुनेंगे। बहुत कम इसके कलेक्शंस है, लेकिन फिर भी इनके पास एक दो एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि गाने इन्होंने कलेक्ट किए हैं। आइए आप देखते हैं कि कितने गाने हम लोग आपको ओ अक्षर वाले, ओ भी 50s एंड 60s के सुना पाते हैं आज के इस एपिसोड में। तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, सबसे पहले नमस्कार आपको और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, आज मैं लेके आई हूँ ओ अक्षर के गाने।
1: जी जी।
2: पहला गाना मेरे पास है ओ आसमां।

जमाने के हमारे जो न्यू जनरेशन वाले भी हैं उनको भी कभी कभी पुराने गीत सुनने का इस एपिसोड के माध्यम से, ख्वाबों के सफर के माध्यम से सुनने का मौका मिलता है। तो उनके भी मैसेजेस आते हैं कि ओल्ड मेलोडीज में अभी भी वो जान बाकी है, अभी भी वो जिंदा दिली है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुदिंग लगता है। कहते हैं रूठी जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, मिले जो गम वो भी सह लेंगे हम, बस आप रहना हमेशा साथ हमारे, तो निकलते हुए आंसुओं में भी मुस्कुरा लेंगे हम। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए साथियों आगे बढ़ते हुए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी जो विभा जी ने याद कराया, ये फिल्म अनारकली से है, 1953 में रिलीज हुई थी। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सी रामचंद्रन

0: का संगीत से सजा वो आसमान वाले शिकवा है। जी हाँ, अनारकली फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं एक अलग कशिश इस गाने में थी, जिस तरह से विभा जी ने इसको शुरुआत में ही बताया इस गाने के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और विभा जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। और अगर आपको याद होगा, अनारकली के सारे गाने सुपरहिट थे, बहुत जी, अच्छी जी, फिल्म थी। और में से ओ अक्षर से क्योंकि मुझे चुनना था इसलिए ये वाला गाना चुना। इसके सारे गाने ही बहुत ही सुपरहिट रहे हैं।
0: और ये फिल्म की जो फिल्म भी थोड़ी सी पॉपुलर रही, किसी एक कहानी जो है कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ, ऐसा सुना था मैंने।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। आगे कौन सा गाना है आपके पास?
1: वो बालम, तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे।
0: क्या बात,
1: ये प्रेम गीत है। इसमें मुमताज और दिलीप कुमार दो प्रेमी प्यार में एक दूसरे की तारीफ करते हुए अपनी ही मस्ती में गुनगुना रहे हैं। खेतों का एटमोस्फेयर है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और बिल्कुल वादियों में एकदम से झूमते हुए गाते हुए ये जा रहे हैं। प्रीतम तूने प्रीत जगा दी, छेड़ के मनवीना।
0: चलिए, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया। राम और श्याम इस एल्बम से ये गाना है। और ये फिल्म भी अपने आप में कमाल के रहे उस समय की, 1970s या 60 के बीच में, जिसके कलाकार थे दिलीप कुमार, वैला रेमन, मुमताज और प्राण। तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गाना है, शकील बदई साहब का लिखा, आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा, राम और श्याम इस एल्बम का अगला गाना आपके लिए खास। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं, अगर हो वक्त तो मुलाकात कीजिए, दिल कुछ कहना चाहे कुछ बात कीजिए। यूं तो मुश्किल है हमसे दूर रहना, पर एक लम्हा मिले तो हमें याद कीजिए।
1: वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत।
0: विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना है ये, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रुको कोई। ये पहाड़ों पे दर्शाया गया ये गाना, बहुत खूबसूरती से इसको पिक्चराइज किया गया है। और इसमें राज कपूर आई थिंक पद्मा है जो इसमें उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया है। दो प्रेमियों के बिछड़ने की एक तड़प की कहानी है इसमें। बन के पत्थर हम पड़े थे सोनी सोनी राहों में, जी उठे हम जब से तेरी बाहों आई बाहों में, छीन कर नैनों से काजल, ना जा रे ना जा। इसमें एक प्यार की कशिश के साथ प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है और कह रही है, याद कर तूने कहा था प्यार से प्यार है, प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी, ये तेरी ही हार।
0: जी विभा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जिस देश में गंगा बहती है, इस एल्बम से ये गाना है। और इस फिल्म के कलाकार थे राज कपूर, पद्मिनी, प्राण और ललिता पवार। ये फिल्म भी 1960 में रिलीज हुई थी और उस समय बहुत ही पॉपुलर थी। जिस नाम से ये फिल्म बना था, ये नाम अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना लोगों के लिए। और इसमें एक जो है विशेष डाकुओं का और पुलिस लोगों का जो मतभेद है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी। और एक काबिला जो है, एक समूह होता है जो लोग देश परदेश घूमते रहते हैं, तो उनका एक काफिला इसमें दिखाया गया है। तो आइए इस खूबसूरत गाने का आनंद उठाते हैं। अभी आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खाबों का सफर। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।

0: यशस्वी के सामने तुम्हें अपना पद माना है राजू।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर इस कार्यक्रम में। जिस देश में गंगा बहती है, इस खूबसूरत एल्बम से ये गाना आपने सुना और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने, लता मंगेशकर ने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना आपने अभी सुना, वो बसंती पावन पागल। जी विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास है, इसमें है तो आंसुओं वाला गाना, लेकिन इसके बोल आंसुओं वाले हैं, लेकिन उसको वहीदा रहमान ने बड़े प्यार से हंसते उसको निभाया है। बड़ा ही सुंदर गाना है, ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार। इसमें ये नेचर के बहुत करीब रह के इसको गा रही हैं और इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है और खुशी से लहराते हुए गा रही हैं और कहें रहे सदा जो मेरा वही मेरी जिंदगी, है रोज अंधेरा और चार दिन की चांदनी, मुझे चांदनी न दे मुझे रोशनी न दे।
1: विभा जी बहुत ही अच्छा, जो एक फिल्म आई थी 1964 में कोरा, इस एल्बम से ये गाना है और इसमें जैसे वहीदा रहमान, विश्वजीत चटर्जी, ललिता पवार, मदन पुरी ने काम किया है और जैसे आपने कहा कि इस गीत में कहीं ना कहीं एक जो है गम है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी ढंग से प्रेजेंट किया है और यहाँ पर एक लाइफ स्टोरी है इस फिल्म में जो इस गाने के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सीधे हमारे सभी श्रोताओं को गाने की तरफ ले चलता हूँ। ये गाना जो है कैफी आजमी ने लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था और हेमंत दान ने इसे संगीत से संवारा था। कोरा इस एल्बम का ये अगला गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया विभा जी। एंड कहते हैं तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लो, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में सवार लो, मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह मेरी, सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार लो। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। फिल्म कोरा का आपने गीत सुना, अब अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास बहुत ही खूबसूरत गाना है, ओ चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसे हैं कहां है वो हर रात खबर लाना। इसमें मीना कुमारी चांद को राजकपूर के पीछे लगाए हुए हैं।
1: अरे बाप,
2: और वो अपने प्रीतम के दूर जाने पर मीना कुमारी चांद से बातें कर रही हैं और कह रही हैं, चांद तुम मेरे प्रीतम के साथ साथ ही रहना और उनकी हर खबर मुझे देते रहना। और बहुत प्यार के साथ, बेइंतहा प्यार के साथ संदेश भी दे रही हैं, ऐ चांद कसम मेरी कुछ और ना तू कहना, कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है रहना।
1: जी जी जी जी। यहाँ एक जो है इस फिल्म की जो बात अगर करें तो शारदा 1957 में आई थी और इसमें का ये गाना आपने याद कराया है, और ये फिल्म की कहानी थोड़ा सा बहुत ही अलग यूनिक डाल दिया था इसमें। मीना कुमारी, राज कपूर और राज मेहरा और श्यामा ने इस फिल्म में काम किया है, तो कहानी इस तरह से एक अलग मोड़ बताती है। और इसमें चिरंजीव नाम का किरदार जो है राज कपूर साहब निभाते हैं और शारदा जो है मीना कुमारी इस रोल को अदा करती हैं। हालांकि यहाँ चीजें जो है ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि चिरंजीव को कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो वो जब लौट के आता है तो शारदा की शादी जो है उसके पिताजी से हो चुकी होती है, तो यहाँ पर ये जो है क्लाइमेक्स दिखाया गया है। तो चलिए इस गाने को हम लोग सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना इसमें आपने जो बताया, वो चांद जहां वो गए हो जाए, वो चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना, ये गाना जो है आपने याद किया। तो आइए, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, आशा भोसले और लता मंगेशकर का गाया, सी रामचंद्रन का संगीत से सजा शारदा इस एल्बम का ये अगला गाना आप सबके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो,
2: खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, ओ अक्षर वाले। आशा करता हूँ आपको यूनिक गाने आज शायद सुनने को मिल रहा है। कभी कभी आपने सुना होगा या समझा होगा कि इस तरह के गीत भी होते हैं। और ये जो गीत हैं, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है विभा जी के पास, ओ अक्षर वाले। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो है फील है, मोहब्बत है, प्यार है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
2: सनी, मेरे पास अगला गाना है, ये थोड़ा उदासी भरा गाना है पर बहुत ही पॉपुलर गाना है और हर किसी ने अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। अगर खुद नहीं सुना तो अपने पेरेंट्स और दादा दादी से जरूर सुना होगा, क्योंकि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। बहुत ही खूबसूरत इसे फिल्माया गया ये गाना है, निम्मी और दिलीप कुमार का।
1: जी।
2: ये उदासी भरा गाना है, प्रीतम से बिछड़ने का गम है और अपने साथ ले जाने के लिए कह रही प्रेमिका अपने प्रेमी को और गा रही है, सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, हमको भी साथ ले ले, हमको हम रह गए अकेले।
1: तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। ये फिल्म आई थी 1955 में, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रही ये, उड़न खटोला करके नाम से फिल्म आई थी। और इस फिल्म का ये गीत जो आपने याद कराया, दिलीप कुमार, निम्मी, टुनटुन और टंगू टूरी सूर्य कुमारी नाम की एक फीमेल आर्टिस्ट है उस समय की, बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट रही, वो भी इसमें काम किया। तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें एक बहुत ही यूनिक स्टोरी जैसे कि उड़न खटोला का भी रहा है। ये एक ऐसे नगर की बात करते हैं जहाँ पर सिर्फ महिलाएं शासन करती हैं उस नगर में। वहाँ पर फिर अचानक एक विमान की दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ की एक महिला जो है उस शख्सियत को बचाती है, और फिर जिसको बचाती है वहाँ की जो शासन करने वाली रानी होती है, वो रानी भी उसी से प्यार। तो यहाँ पर इस तरह का ये क्लाइमैक्स बताया गया है। अब फिल्म पूरी देखने से शायद स्टोरी जो है और अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन चलिए अब ये जो गाना है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, ये बहुत ही खूबसूरत आवाज मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शकील बदाई साहब का लिखा है, नौशाद साहब का संगीत से सजा। ये उस समय मुझे लगता है कि मैंने कभी इसको रेडियो पे सुना था और बहुत ही अच्छा सुदिंग गाना है। कहीं ना कहीं इसमें भी एक जो है वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, तो कहीं ना कहीं एक जो है हम सभी को ये गाना जो है आकर्षित करता है, एक आंतरिक आवाज लगती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको सुनते रह जाएंगे,
2: महसूस करते हैं, महसूस करते हैं।
1: जी। वो एक जो है आकर्षण है, खिंचाव इस गाने का, जो आप गाना सुनेंगे तो पता चल ही जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर इस गाने में कहीं ना कहीं एक अलौकिक, जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा हटके, सांसारिक बातों से अलग कुछ है इसमें, वो पता चलेगा आपको। तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: चले आज तुम

0: ले ले
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर इस एल्बम में। इस एपिसोड में और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति की अपनी कहानी जो है, यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर व्यक्ति इन चीजों को फील करता है। तो आइए कहते हैं, मेरे अश्क तेरी बेरुखी का एहसास है, मेरे अश्क तेरी बेरुखी का एहसास है, तेरी याद में ये फिर बेगाने हो चले हैं, तेरी याद में ये फिर बेगाने हो चले हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास?
2: अगले गाने में भारत भूषण अपने पूरे जोर के साथ भगवान को झिझोड़ने में लगे हैं और गा रहे हैं, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले।
1: अच्छा,
2: आस निरास के दो रंगों से दुनिया तुमने बनाई, बहुत खूबसूरत गाना है। इसमें भारत भूषण अपने बहते आंसुओं के साथ अपने दर्द भरे जख्म देखने को कह रहे हैं।
1: जी जी जी।
2: आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, गीत में बहुत दुख है, पीड़ा का एहसास होता है। और कह रहे हैं, चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढू उस प्रीतम को, हो ना सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, बैजू बावरा इस एल्बम से है। और ये फिल्म जो है खास 1952 की है, इसमें मीना कुमारी, भरत भूषण, कुलदीप कौर और विपिन गुप्ता जी ने काम किया था। इनके साथ और भी बहुत सारे कलाकार थे। और फिल्म की स्टोरी मुझे याद है जितना कि बैजू बावरा ये रोल है भरत भूषण का, और एक जो है लोकल आर्टिस्ट का इन्होंने काम किया है, यानी एक गायक का। और उनकी जो है कंपटीशन होती है राजा महाराजा के दरबार में, तानसेन जो गाना गाते हैं उनके साथ की ये छोटी सी जो है नोकझोंक की बात है, और उनके साथ कंपटीशन बताया गया है। फिल्म में क्लाइमेक्स इसी तरह का है कि एक राजा के दरबार में गाने वाला व्यक्ति का एक साधारण गांव के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब गाना गाता है, तो दोनों की कंपटीशन की अगर बात करें तो जमीन और आसमान की बात हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है बैजू बावरा इस एल्बम में। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये गाना बहुत ही पसंद आएगा, और शायद इन्होंने बहुत बार सुना भी होगा। तो आइए इस बहुत ही खूबसूरत नगमा को हम लोग सुनेंगे अभी, ओ दुनिया के रखवाले सन दर्द भरे मेरे न्याले। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो,
2: खुशियां बांटो।

0: मालूम होता है,
1: नागालैंड नहीं मालूम जहाँ का।
0: अरे कि लोग कौन थे?

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने दर्द भरा सुना। जी हाँ, शकील बदायूं साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, नौशाद का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत बैजू बावरा इस एल्बम से आपने सुना। आइए अब हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं, जब जब तुमसे मिलने की उम्मीद नजर आई, तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई। निकल पड़े इन आंखों से हजारों आंसू, हर आंसू में आपकी तस्वीर नजर आई। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विवा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े अच्छे गाने सुन रही हूँ। आज हमने बहुत से मिक्सर गाने सुने हैं, जिसमें अर्ज भी थी, विनती भी थी, प्यार भी था, शिकायतें भी थी। और लास्ट गाना मैं मेरे पास है, इसमें म्यूजिक है और बहुत खुशी वाला एटमोसफेयर है, और जिसमें हेमा मालिनी काली घटाओं से बात कर रही हैं और कह रही हैं, ओ घटा सांवरी, थोड़ी थोड़ी भावरी, हो गई है बरसात क्या, ये बारिश के मौसम में भीगती हुई और उछल कूद करती हुई एंजॉय कर रही हैं, कि जैसे वो इन बातों, इन बूंदों से ही बातें कर रही हूँ और
0: जी,
1: पूछ रही हूँ अब के बरस क्या खास बात है।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आखिरी गाना मजेदार आपने याद किया है, अभिनेत्री, एक फिल्म आई थी जो 1970 में रिलीज हुई थी, ये अच्छी फिल्म थी। इसमें शशि कपूर, हेमा मालिनी, निरुपमा रॉय और देव मुखर्जी ने काम किया था। फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी यूनिक रही इसलिए क्योंकि एक वैज्ञानिक को बताया गया है और उसके अपोजिट में हीरोइन को एक डांसर बताया गया है। और दोनों का जो है शादी हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और लेकिन बाद में क्या होता है कि नर्तकी यानी डांसर जो है वो अपने परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी आती हैं, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो एक क्लाइमेक्स आ जाता है इन कॉम्प्लेक्स की, कि इनके चाहने वाले बहुत, इनके चाहने वाले कम। लोग घर पे आते तो पहले डांसर से मिलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें जो है खिटपिट लगती हैं। और फिर वो दूर जाने के लिए सोच ही रहे होते हैं तो उस समय उनकी माँ की एंट्री हो जाती है, और फिर जैसे माँ घर पे आ जाती हैं तो फिर वापस सारी चीजें संभल जाती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें फिल्म डिजाइन किया है, और इस फिल्म के खास डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी। और तो वही, आगे बढ़ते हुए मैं ले चलता हूँ इस गीत की तरफ, और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें अब कहना पड़ेगा अलविदा। विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर आपने काफी अच्छे गाने हमें सुनाए, और ये आखिरी वाला गाना तो बहुत ही लाजवाब है जो हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही खुशी देगा। थैंक यू आपको।
1: थैंक यू सनी, आपका भी और सुनने वालों का भी, और मैं इन गानों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और आपकी कंपनी भी। और मुझे पूरा यकीन है कि श्रोताओं को ये गाने बहुत पसंद आएंगे।
0: जी,
1: बहुत
0: जी,
1: पुराने गाने होने के साथ साथ इसमें मिक्सचर गाने हैं, नए बहुत फेमस गाने भी हैं और ऐसे गाने भी हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। आई होप एवरीबॉडी एंजॉयड।
0: जी जी जी, तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नए गाने लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: अच्छा भूना, मैं जा रहा हूँ, बाय।
1: कहाँ जा रहे हो भैया?
0: मैं स्कूल जा रहा हूँ।
1: स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गए, अब फिर भी स्कूल जा रहे?
0: क्या बात कर रहे हो, छुट्टियाँ हैं?
1: हाँ।
0: अरे मैं तो भूल ही गया, हमारे स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ गई।
2: लगता है पंकज अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहा है, क्यों पंकज?
0: हाँ दीदी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ।
2: और स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम सभी बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं ना?
3: हाँ दीदी।
2: तो सबसे ज्यादा स्कूल को कौन मिस कर रहा है?
4: मैं।
0: मुझे लगता मैं मिस कर रहा हूँ।
4: नहीं मैं।
2: मुझे लगता है तुम सबके सब स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो।
4: हाँ दीदी।
2: तो भुवना, मिस कर रही हो तुम स्कूल को?
1: क्योंकि हम बहुत मजे करती थी स्कूल पे, अब तो बहुत छुट्टियाँ, हम घर पे रहे, रोज स्कूल जाके फ्रेंड से बात करना, एंजॉय करना, पर घर पे कुछ भी नहीं दीदी, नो मस्ती।
2: नो मस्ती, नो फ्रेंड्स, है
1: ना?
2: और सैंडी तुम?
5: हाँ, मुझे भी स्कूल की बहुत याद आ रही है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, दोस्तों से बातें करना, सबकी याद आ रही है बहुत।
2: खेलना कूदना घर में नहीं हो पाता ना, जैसे स्कूल में होता है।
5: टीवी देखो फिर घर पे बोर पूरे दिन।
2: और पंकज, तुम स्कूल को क्यों मिस कर रहे हो?
0: मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ हमेशा मस्ती किया करता था, लेकिन घर पे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ।
2: हाँ, जब सुबह से शाम तक हम स्कूल में होते हैं तो इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होते हैं, छुट्टियों में वो सब बहुत याद आते हैं ना?
0: हाँ दीदी।
2: किसी को पढ़ाई की याद आती है क्या?
1: मुझे
4: नहीं।
1: हम ना क्लास में पढ़ाई के साथ मस्ती, टीचर्स के साथ इतना एंजॉयमेंट, हम जब पढ़ रहे हैं ना, वो एक नया सा हम कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।
2: अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ भुवना, तुम्हारे स्कूल की सबसे अच्छी चीज क्या है?
1: अच्छी चीज मतलब हमारी क्लास।
2: तुम्हारी क्लास?
1: हाँ।
2: अच्छा, मतलब और क्लास के टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे फिर तो?
1: हाँ।
2: तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है?
1: मेरी साइंस टीचर।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों है?
1: क्योंकि वो इतनी अच्छे से समझाती है और हमारे साथ जोक्स बोलती है, एंजॉय करती है, सब कुछ करती है, जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड हो।
2: अरे वाह, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करती है और एंजॉय भी करती है, इसीलिए बच्चों की वो फेवरेट टीचर है।
1: हाँ।
2: अरे वाह। और सैंडी, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है अब तक?
5: अब तक तो फिफ्थ तक एक मैम थी, मंजू मैम, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों थी?
5: क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और मस्ती मजाक स्टोरी सुनाती थी हमें।
2: स्टोरीज भी सुनाती थी? हाँ। और बच्चों को तो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा बहुत लगता है ना? तो क्या कभी उनसे डांट पड़ी है?
5: मार भी खाई है मैंने तो।
2: मार भी खाई? हाँ। है क्यों?
5: क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है ना।
2: अच्छा, मंजू मैम इंग्लिश पढ़ाती थी?
5: हाँ।
2: क्यों, आप इंग्लिश का होमवर्क नहीं करते थे क्या?
5: करता था, पर उतना नहीं जितना करना चाहिए,
0: हमेशा गलतियाँ।
2: हमेशा गलतियाँ। और पंकज की फेवरेट टीचर कौन है?
0: एक्चुअली मेरी फेवरेट टीचर कोई नहीं है।
2: फेवरेट टीचर कोई नहीं है? इतने साल स्कूल गए और एक भी फेवरेट टीचर नहीं है?
0: सब फेवरेट है,
2: मतलब सारे टीचर्स अच्छे होते हैं।
0: हाँ।
2: क्योंकि हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है।
5: हाँ दीदी।
2: कम ज्यादा या सब्जेक्ट की नॉलेज तो हमें वही दे पाते हैं, है कि नहीं?
0: हाँ दीदी।
2: ठीक है, ये तो हुई टीचर्स की बात, अब मुझे बताओ तुम लोग के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं स्कूल में?
5: मेरे अकाउंट।
2: अच्छा, सैंडी को तो अकाउंट्स पसंद है।
0: और मुझे बायो पसंद है।
2: बायो पसंद है। और भुवना को?
1: सोशल।
2: सोशल साइंस। अच्छा सैंडी, तुम्हें अकाउंट्स क्यों पसंद है?
5: इजी लगता मुझे अकाउंट ऐसे,
2: मतलब तुम्हें कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
5: बीएसटी।
2: बीएसटी?
5: हां, बिजनेस स्टडी।
2: बिजनेस स्टडीज, क्यों? उसमें बहुत थ्योरी होती है।
5: हाँ, सारे टॉपिक जैसे, तो बोरिंग बोरिंग लगता।
2: पर सबसे मजा आता है कैलकुलेशंस करने में सैंडी में।
5: हाँ।
2: तो ठीक है, चलो अब कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी किसी को तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सैंडी की।
0: मेरी।
2: ठीक है, और पंकज तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो।
2: बायो? बायो में क्या अच्छा लगता है?
0: बायो में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है।
2: सब कुछ?
0: मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है।
2: क्या उसमें डायग्राम्स होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में या फिर और क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी लगती है बायो में?
0: बायो में तो सब कुछ होता है, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो सारी चीजें ही पसंद है मुझे।
2: मतलब तुम्हें उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता
0: है? मुझे जीवों के बारे में जानना बहुत पसंद है। किसी
2: जीवों के बारे में? अच्छा, मतलब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें जानना बहुत अच्छा लगता है।
0: जी दीदी।
2: और भुवना, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: सोशल साइंस।
2: वो सब्जेक्ट तुम्हें क्यों अच्छा लगता है?
1: क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
2: बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है हमें भी तो बताओ।
1: वो हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं हम कहीं खो जाते हैं।
2: अच्छा, हिस्ट्री पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: और सिविक्स भी।
2: और सिविक्स भी, मतलब जानकारियाँ मिलती हैं कि हमारे देश में और दुनिया में पहले क्या क्या हुआ है, तो वो सब जानकारियाँ इकट्ठा करना आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, हमारा प्रेजेंट स्टेट कैसा है, हमारा पास्ट स्टेट कैसा है, और ये मुझे मेरी एम के लिए भी बहुत सहायता करेगी कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
2: जब हम छोटे से ही हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तैयार करें।
0: क्या बात है, भुवना को हिस्ट्री इतनी पसंद है कि वो उसमें खो जाती है, और हम जब पढ़ते थे तो सो जाते थे।
2: हिस्ट्री पढ़ते हुए सो जाते थे।
5: पंकज ने मार भी खाई है इसके लिए।
2: अच्छा, क्यों, क्या हुआ था संडे?
5: क्योंकि हम क्लास में बैठे थे, मैं पंकज पास में, सर हमें पढ़ा रहे थे, सब साइंस में हिस्ट्री था। पंकज सो गया बुक्स रख के, मुंडी नीचे करके सो गया, और सर पढ़ा रहे हैं। सर ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मुझसे पूछा, तो मैं खड़ा के आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं तेरे पास वाले को खड़ा कर, तो पंकज तो सो रहा है। फिर सर ने आके एक थप्पड़ मारा पंकज का।
2: तो मतलब पंकज को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी कि उसको नींद आ जाती थी।
0: हाँ दीदी,
5: मुझे बोरिंग।
2: आपको भी बोरिंग लगती थी?
5: पर मुझे जगना पड़ता था इसके लिए।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब दोस्ती के लिए पढ़ाई।
1: मुझे तो ज्योग्राफी में सोना था।
2: क्यों, ज्योग्राफी में नींद क्यों आती
1: है? ना बोरिंग दीदी, कि ये नेचर वो सब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी सोशल टीचर इतनी स्लो समझाती है ना, किसी को भी ऐसा लगता है रात हो गई चलो सोते हैं, दादी माँ की कहानियाँ सॉन्ग्स ऐसी सुनाती है क्लास।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग का एक एक इंटरेस्ट होता है, और जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है वो पढ़ने में तो मजा आता है, पर स्कूल में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
5: हाँ दीदी,
2: है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो सब में जगाना चाहिए।
1: हाँ दीदी,
2: ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और बाद में जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसे परस्यू करें।
0: हाँ दीदी,
2: है ना।
1: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है या और कुछ भी होता है?
1: स्पोर्ट्स
2: और
0: मस्तियाँ
2: और कल्चरल एक्टिविटीज।
1: हाँ, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे,
2: स्पोर्ट्स डे, इतनी सारी चीजें होती है ना स्कूल में।
0: पिकनिक भी होती है दीदी।
2: पिकनिक और मस्ती तो सबको याद आती है, पहले मुझे ये बताओ स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है यहाँ पे?
1: मैं
0: भी।
2: सब लोग खेलते हैं। भुवना, तुम कौन सा गेम खेलती हो?
1: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
2: बास्केटबॉल, अच्छा आपको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है?
1: हाँ।
2: अरे वाह, और सैंडी?
5: क्रिकेट।
2: क्रिकेट, तो मतलब तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में हो क्या?
5: ऐसे गए नहीं कभी, पर खेले हुए।
2: खेले हो, अरे वाह,
5: हमसे अच्छे से खिलाड़ी है स्कूल में।
2: अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अपने में एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, और उसमें मजा भी तो आता है।
5: हाँ।
2: और पंकज?
0: मुझे भी क्रिकेट पसंद है।
2: और भुवना को कोई और गेम भी अच्छा लगता है क्या?
1: मैं खो खो खेलती हूँ, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
2: गोल्ड मेडल, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था या नहीं?
1: हाँ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब भुवना बहुत तेज भागती है।
0: तेज तो मैं भी भागता हूँ, मुझे रिले रेस में सेकंड प्राइज मिला।
2: अरे वाह, और सैंडी?
5: मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जिमनास्टिक में खेला हुआ।
2: अच्छा। हाँ। उसमें क्या करते हो?
5: उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है,
0: योगास,
5: हैंड स्टैंड, हाथ पे खड़े होना, फिर
0: गार्ड व्हील,
5: फिर उल्टी डाई, बिग बोर्ड।
2: और ये सब आपको कौन सिखाता है?
5: ये टीचर,
0: पीटीआई टीचर।
2: पीटीआई टीचर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। भुवना, आपने भी ये सब सीखा है क्या?
1: मैंने तो हुला हुप सीखी, जो रिंग है, रिंग
0: अपने वेस्ट के ऊपर घुमाना।
1: मैंने रिंग सीखी है, वो मैं घुमाती हूँ एटलीस्ट 2 मिनट्स तक।
2: 2 मिनट्स तक आप उस रिंग को घुमाते हो?
1: हाँ, ये तो मिनिमम है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
1: हाँ।
2: इसको तो आपको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। बच्चों, स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, अगर आप आगे खेलते हैं स्पोर्ट्स में तो फिर उसके थ्रू आपके एडमिशन्स में भी आपको मदद मिलती है, और वो सर्टिफिकेट्स आगे भी काम में आते हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए।
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ।
5: मेरी क्लास में एक फ्रेंड है नितेश मेरा, जो मेरे साथ बैठता है, अच्छा फ्रेंड है, जो हमेशा मेरे साथ देता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं
2: क्लास में। अच्छा एक बात, कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपकी पूरी क्लास ने इकट्ठा होकर साथ में मस्ती की हो?
5: हाँ, हमने होली खेली थी।
2: होली?
5: हाँ, हमारे स्कूल में से होली अलाउ नहीं है खेलने का, पर हमारी क्लास, कॉमर्स क्लास ने शुरुआत तो मैंने करी थी, एंड पूरी पूरी क्लास ने करी। उसके लिए मुझे पनिश भी किया गया था मैम ने।
2: पनिशमेंट मिला था? क्या पनिशमेंट मिला था आंटी को?
5: जो हम लोगों ने कचरा करा था उससे मुझे झाड़ू निकालना पड़ा था।
2: मतलब झाड़ू से पूरी सफाई की?
5: हाँ, सफाई करनी पड़ी मुझे।
2: बात तो सही है, जब गंदा किया है तो साफ तो करना पड़ेगा।
5: पर मैंने ज्यादा नहीं खेला था, थोड़ा सही बस एक को लगाया था।
0: शुरुआत तो तुमने की?
5: शुरुआत तो मैंने कर दी थी।
2: और पंकज, तुम्हें ऐसा कुछ याद है?
0: हाँ।
2: क्या?
0: एक बार हमारे क्लास में टीचर्स नहीं थे तो मैं और मेरे सारे क्लासमेट्स क्लास में मस्तियाँ कर रहे थे, और हमारे स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन हम फ़ोन लेके जाते थे और क्लास में गाने सुनते थे। तो गाने सुन रहे थे और प्लास्टिक की बॉल से कैच कैच खेल रहे थे। इतने में हमारे एक टीचर हैं, बायो के टीचर, वो क्लास में एंटर कर गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सब अपनी जगह पर बैठ के भाग के और बॉल क्लास में ही छोड़ गए। मैंने देखा कि बॉल अभी बाहर पड़ी है और सर अभी एंटर ही करने वाले थे, जैसे ही मैंने बॉल उठा के अपने पास रख लिया। लेकिन मैं जब बैठने गया अपनी प्लेस पे तो सर ने मुझे देख लिया जाते हुए, तो उन्हें लगा कि मैं क्लास में मस्तियाँ कर रहा था और उन्होंने बॉल की आवाज़ सुन ली थी बाहर से। तो वो मेरे पास आए और कहा कि तुम बॉल से खेल रहे थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो सब चेकिंग करवाओ अपनी बैग। तो इतने में मैंने कह दिया हाँ मैं ही खेल रहा था बॉल से। तो मेरे सारे दूसरे फ्रेंड्स तो बच गए लेकिन मैं फंस गया, और एक लड़का और था जो फ़ोन में गाने चला रहा था, उसने गाना बंद नहीं किया था तो उसका फ़ोन पकड़ लिया था सर ने।
2: क्योंकि कभी कभी जब टीचर्स अचानक से आते हैं तो हम डर जाते हैं।
5: हाँ।
1: होली से याद आया दीदी कि जब मैं होली होती है ना, जब मैं बस में चुपचाप बैठ जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, एक लड़का ने स्टार्ट किया दीदी इस होली पे, फुल बॉटल टू बॉटल पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। इतना बुरा लगा, मैं उनको जाकर क्या करूँ दीदी, और सारे शुरू हो गए, यहाँ पानी वहाँ पानी, फिर सीट पे भी पानी, और मेरे साइड जो बैठ रहा था ना वो भी पानी। इतना पानी ना देकर मुझे ना इरिटेशन आ गया, तो मैं नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं गई, इतना बुरा लगा मुझे। तो छोड़ दो ये तो एक, और सारे जगह पानी पानी इतना दीदी, मैं गीला गीला कर गई। मेरी मम्मी पूछ रही थी तू क्या नहा के आई, ऐसी पूछ रही, मैं क्या बोलूं दीदी, फुल टोटल बस बस ऐसा हो रहा था लाइक समुद्र जैसा बन गया आप। और वो ना कल वो बच्चा बोल रहा होली तो है एंजॉय करो, बस भी कोई एंजॉय करता है दीदी, क्या इतना पानी।
2: एक्चुअली स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना।
5: हाँ दीदी।
2: तो किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को नहीं आता।
1: दीदी आपने कभी खेला आपके बचपन में?
2: मैंने तो बहुत होली खेली है।
5: आपको होली पसंद है दीदी?
2: हाँ मुझे होली बहुत पसंद है।
5: मुझे भी।
2: स्कूल में तो हमें परमिशन नहीं थी होली खेलने की उस टाइम।
1: दीदी आप सोच रहे थे हमारे स्कूल में परमिशन थी क्या? किसी भी स्कूल में परमिशन नहीं होती दीदी, ऐसे ही खेलते स्टूडेंट्स तो।
2: हाँ मुझे भी याद है, एक बार हमारा 10th का बोर्ड का एग्जाम था और हम लोग दूर थोड़ा सा जाते थे, बस को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो वहाँ से लौटते समय हमारी बस में होली शुरू हुई थी। और फिर एक गर्ल्स की बस थी एक बॉयज की बस थी, दोनों बसेस में जो होली शुरू हुई थी कि 15 किलोमीटर तक वो होली चलती रही थी।
5: मजा आ गया होगा फिर तो।
2: फेस्टिवल्स में भी स्कूल में मजा आता है ना।
1: हाँ,
2: और कोई ना कोई प्रोग्राम भी तुम लोग के स्कूल्स में जरूर होते होंगे?
1: हमारे में आर्ट के प्रोग्राम, साइंस फेयर्स होते हैं। मैंने एक बार साइंस फेयर में पार्ट ली तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने एक सर्क्यूट बनाई जिसमें एक हट होती है, और मैंने एक सर्क्यूट बनाई उसमें एक बच्चा रहता है लेकिन उसको लाइट नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला यूज करके सर्क्यूट बनाई ताकि उसको लाइट आए अंदर।
2: अच्छा आपने बनाया?
1: हाँ।
2: अरे वाह, तो इसके लिए तो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा।
1: हाँ, जो भी वहाँ आता है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हमारे चीफ गेस्ट एक आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम के कुछ हेड थे, तो वो आए तो मुझको बोला वेरी गुड, मुझे बहुत वो कॉम्प्लीमेंट बहुत खुश लगी।
5: साइंस फेयर
2: ये तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अगर साइंस पसंद है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कुछ नया नया निकल के आता है।
5: हाँ दीदी।
2: हाँ। है ना। और यहाँ पे डांस किसको पसंद है, डांस या सिंगिंग?
1: मुझे
0: मुझे
5: मुझे।
2: अरे वाह, सबको
5: आता
2: पसंद
5: नहीं डांस?
2: कोई नहीं, पसंद तो है ना।
5: हाँ, बहुत।
2: और डांस एंजॉय करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। भुवना ने डांस सीखा है क्या?
1: मैं डांस नहीं सीखती हूँ, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम की शिव तांडव की मैंने।
2: अच्छा आपने शिव तांडव किया?
1: हाँ।
2: कब?
1: हमारी स्कूल पे अम्मा आई थी जो स्कूल का हेड है, तो उन्होंने ये स्कूल बिल्ड किया, और उन्होंने जब आते हैं उनको हगिंग सेंट बुलाते हैं, तो सारे लोग हग करते हैं और चलते, ऐसा बोलते हैं कि जब उनको हग करते हैं ना कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, ऐसा बिलीफ है। तो वहाँ जो लोग बैठते हैं ना उनको एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो हम सब लोग अमृता स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्किट, ऐसे मैंने स्किट भी पार्ट ली स्किट में, और मैंने डांस की शिव तांडव।
2: शिव तांडव किया आपने, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
1: हाँ।
2: और लोगों ने भी पसंद किया होगा।
1: हाँ।
2: क्योंकि शिव तांडव करना तो बहुत डिफिकल्ट है।
1: हाँ,
2: है ना?
1: मैंने ना एक वीक टू वीक प्रैक्टिस की बैठ के।
2: उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं भुवना?
1: वो लाइक तब ना शिव की थर्ड आई ओपन होता है, तो बहुत एंगर ऐसा होना चाहिए
2: आपके डांस में, वो दिखना चाहिए और एक्सप्रेशन।
1: हाँ।
2: में भी है ना। अरे वाह। और सैंडी आपने कुछ किया है या कभी स्कूल में ऐसा परफॉर्मेंस?
5: नहीं, मैंने कभी नहीं किया।
2: सिंगिंग, डांसिंग, स्किट?
5: मुझे इंटरेस्ट नहीं।
2: इंटरेस्ट नहीं है। हीरो किसको बनना है यहाँ पे?
5: बनना तो मुझे भी है।
2: फिर डांसिंग और स्किट?
0: हीरो तो सिर्फ पंकज ही बनेगा।
5: नहीं, मैं बनूंगा।
2: अच्छा, पंकज ने तो जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। अभी हीरो बनना है पंकज को, तो कुछ तो किया होगा। पंकज बताओ।
0: हाँ, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था।
2: अच्छा, कब?
0: शांति उनमें ही किया था।
1: ग्रुप डांस था भैया?
0: ग्रुप डांस भी था और सिंग सोलो भी था।
1: ओ, आपने सोलो भी की?
2: कौन से सॉन्ग पे किया था?
0: ग्रुप डांस किया था बम बम बोले, जो तारे जमीन पे का सॉन्ग है उस पे किया था।
2: ठीक है, कोई नहीं। और बताओ, तुम लोग के स्कूल में और किस किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिनको तुम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो?
5: रिपब्लिक डे और
1: मैं स्पोर्ट्स डे को एंजॉय करती हूँ दीदी, क्योंकि सर मुझे हर बार कराटे को सेलेक्ट करते हैं और मैं ब्रिक्स को ब्रेक करती हूँ।
2: अच्छा, आप कराटे में ब्रिक्स को ब्रेक करते हो? कितने ब्रिक्स को ब्रेक करते हो आप?
1: एक साथ दो ब्रिक्स को ब्रेक कर सकती हूँ।
2: अरे वाह,
1: क्योंकि ग्रीन बेल्ट है ना।
2: ग्रीन बेल्ट कराटे?
5: अच्छा,
2: में
5: तुम जूडो खेली हुई हो?
2: कराटे?
5: कराटे, हाँ, सॉरी, कराटे।
2: वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कराटे, जूडो, ऐसा कुछ तो हम सबको।
1: और पिरामिड्स भी बनाते हैं हम।
2: पिरामिड बनाते हो?
5: तो भुवना से डर के रहना पड़ेगा।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है?
1: हाँ।
2: कराटे की क्लास होती है डेली?
1: हाँ, होती है, एवरी फ्राइडे होती
2: है। एवरी फ्राइडे? अरे वाह। और पंकज और सैंडी?
5: हाँ दीदी।
2: आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इन प्रोग्राम्स में?
5: मुझे, हमें तो क्रिकेट ही बहुत पसंद है।
2: जैसे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम होता है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता
0: sports
2: है?
0: स्पोर्ट्स
2: डे। स्पोर्ट्स डे अच्छा लगता है?
0: हाँ दीदी,
2: क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग खेलते हैं गेम्स।
0: हाँ, स्पोर्ट्स में सब कुछ आता, मस्तियाँ करते।
2: अच्छा, लेकिन मैंने सुना सिंगिंग तो यहाँ पे सबको पसंद है।
0: सिंगिंग?
2: तो फिर कभी स्कूल में गाना नहीं गाया?
1: दीदी, मैं स्कूल में क्वायर ग्रुप में हूँ, तो मैं रोज गाना, प्रेयर्स, वो सब में ही गाती हूँ।
2: अच्छा, आप रोज गाना गाते हो?
1: नहीं, प्रेयर्स होते हैं ना रोज स्कूल को स्टार्ट करने से, नेशनल एंथम में, और मेरी फ्रेंड रोज क्वायर ग्रुप में गाते हैं।
2: अरे वाह। और आप लोग की मॉर्निंग प्रेयर्स में आप लोग कुछ नहीं करते?
0: मैंने,
5: हम पीछे खड़े रहते हैं।
0: मैंने अपनी 4th to 6th क्लास में मैंने प्रेयर्स की है।
2: प्रेयर्स की है? क्योंकि वो प्रेयर्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं?
0: हाँ,
2: स्टेज पे आके।
0: हाँ, मैंने एक बार रिपब्लिक डे पे सिंगिंग भी की थी।
2: अच्छा, उसके बाद बंद क्यों कर दिया तुम लोगों ने?
5: नहीं, मुझे तो
2: कोई तो रीजन होगा, सोच के बताओ।
5: अब अच्छा नहीं लगता, पहले थोड़ा है।
2: अच्छा नहीं लगता या कोई और वजह है?
1: स्टेज फियर
2: कि दोस्त क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, है ना?
0: हाँ, लेकिन जब छोटे थे तब तो ये सब समझ में नहीं आता था।
2: और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फियर्स हमारे अंदर आ जाते हैं।
0: हाँ दीदी,
2: लेकिन फियर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ?
5: नहीं पता, आप बताओ दीदी।
2: भुवना, आप बताओगे?
1: मुझे लगता है एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
2: फियर्स को फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जब आप फियर को फेस करने की बस हिम्मत दिखाते हो। ट्राई तो करो, एक बार आप फेस करोगे फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा।
1: नेवर लूज हो।
2: हाँ, और स्कूल तो बच्चों ऐसा टाइम होता है जब आपको ये सब मौके मिलते हैं।
0: हाँ दीदी।
5: हाँ दीदी।
2: और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब मौके हमें उतना नहीं मिल पाते, है ना? तो
1: हाँ,
2: इसीलिए अगर आपके अंदर कोई फियर हो, दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, गलती हो गई तो ये सब भूल के हमें ट्राई करना चाहिए, ताकि अपनी गलतियों से हम सीखें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
5: ओके दीदी।
2: ओके
5: ओके।
1: और दीदी, आपको पता है मैं स्कूल में टॉप भगवद गीता सिंगर हूँ।
2: अच्छा, आप भगवत गीता गाते हो?
1: हाँ।
2: पूरी?
1: पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स पता है मुझे।
2: तो आप हमें कुछ गा के सुनाओगे?
1: मैं एक श्लोका सुनाऊंगी 12th चैप्टर

0: अरे वाह
1: बहुत
0: बुना,
1: अच्छा था,
0: बहुत ही अच्छा था। इसके लिए तो जोरदार ताली
1: सुपर।
0: हो जानी चाहिए, है ना?
2: धन्यवाद।
0: तो मतलब स्कूल्स में हमारे ये सब टैलेंट भी बहुत विकसित होते हैं, है कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है?
3: हमारे हेडमास्टर।
0: सैंडी को हेडमास्टर से डर लगता है, और भुवना को?
2: मुझे तो मेरी इंग्लिश टीचर से।
0: इंग्लिश टीचर से डर लगता है?
2: हाँ।
0: क्यों?
2: डांटती रहती, इतनी बुरी मूढ़े में होती है दीदी। जब हमको रॉन्ग काउंटिंग की टेस्ट कॉपी में हम जाते, वो अच्छी मूड में है तो ठीक है मार्क्स डालती है, नहीं तो नहीं डालती है। और वो इतनी डांटती दीदी, ऐसी डांटती है, आर यू अ बालू, आर यू अ चिंपैंजी, ऐसा डांटती है। मुझे डर लगता है उनसे, उनको देख कर ही। क्लास में एंटर होते ही इतना बैड मूड देख के सबको सबको ऐसा लगता है कि आज का दिन गया यार। जब भी ना हमको मैम एब्सेंट होती है ना, इतनी खुशी होती है जी, हम बर्थडे भी मस्ती इतना नहीं कर सकते।
1: आर यू बालू?
0: एक्चुअली टीचर्स के पास, टीचर्स तो बड़े होते हैं तो उनके पास बहुत सारे अपने भी टेंशन्स होते हैं।
2: हाँ,
0: है
2: ये
0: ना?
2: तो करेक्ट।
0: और जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन टेंशन से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए कभी कभी टीचर अगर बैड मूड में हो या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो हमको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, है ना? क्योंकि टीचर है ना।
2: हाँ दीदी।
0: तो बस इसीलिए जैसे हमारे फ्रेंड्स अपने होते हैं वैसे हमारे टीचर्स भी अपने होते हैं, है ना? तो उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड हमेशा बनाए रखना चाहिए।
2: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ, स्कूल में तुम लोग को सबसे ज्यादा, क्योंकि स्कूल लाइफ जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो स्कूल में तुम्हें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसी मेमोरीज या कोई ऐसी बातें हैं जो तुम बहुत मिस करते हो?
3: हमारे क्लासरूम।
0: क्लासरूम। और पंकज?
1: अपने फ्रेंड्स को।
0: फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हो?
1: हाँ दीदी।
0: क्योंकि जब स्कूल खत्म हो जाता है तो याद तो आते
3: हैं। हाँ दीदी।
0: है ना? उसमें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसी बात जो आपको मेमोरीज के रूप में अब याद आती हो?
2: मुझे सबसे अच्छा मेमोरी तो चिल्ड्रंस डे, जब हम स्कूल में इतने अच्छे से मनाते हैं। क्या कि ना, हमने इस बार 3 डेज चिल्ड्रंस डे बनाई, मेरी प्रिंसिपल ने ऐसा बनाया कि हम 3 डेज एंजॉय स्कूल पे। तो हमने इतना खेला दीदी, मॉर्निंग टू इवनिंग इतना खेलते थे, और कलर ड्रेस पहन के आ सकते थे, और बहुत सारे गेस्ट होते थे वो आते थे, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन, इतना मज़ा आता था।
0: 3 दिन चिल्ड्रंस डे मनाया? अरे वाह, मतलब फुल मस्ती।
2: हाँ दीदी।
0: और सैंडी आपको कुछ याद है ऐसे?
3: हाँ, मुझे भी चिल्ड्रन डे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। और उस दिन
0: चिल्ड्रंस डे के दिन आपका बर्थडे होता है?
3: हाँ।
0: अच्छा, अरे मतलब डबल मस्ती,
1: डबल मजा,
3: डबल मजा।
0: और उस दिन कलर ड्रेस भी अलाउड होती है?
3: अलाउड होती है, पर मैं पहन के नहीं जाता, स्कूल में रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना।
0: नहीं बिल्कुल, रूल्स तो फॉलो करने भी चाहिए। और पंकज आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, खास मेमोरी जो आपको अब स्कूल के बाद याद आती हो?
1: हमारे क्लासरूम में तो हर दिन मस्ती होती थी, इसलिए हर दिन मुझे याद है। सारे दिन ऐसे हैं जो यादगार हैं।
0: एग्जाम टाइम किसको याद आता है?
2: मुझे मुझे एग्जाम से,
1: अभी एग्जाम खत्म हो गए और रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी तो हर दिन एग्जाम टाइम ही याद आता है।
2: मुझे एग्जाम्स बहुत पसंद है दीदी।
3: अरे
2: सबसे फेवरेट तो मेरी एग्जाम्स ही है, जो कि इतने अच्छे से लिख सकते
3: हैं। तुम इसी दुनिया के हो ना?
2: हाँ।
0: एग्जाम्स क्यों अच्छे लगते हैं भुवना तुम्हें?
2: क्योंकि सारे फ्रेंड्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम ज्ञान वो पेपर में लगाते हैं और इतना लिख सकते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं दीदी एग्जाम पे हम, और इतना मजा आता है। मुझे एग्जाम तो फेवरेट है सच में बोली।
1: आसपास से पूछ के लिखता हूँ मैं।
2: नहीं सच में, मैं कॉपी करना इतना पसंद नहीं।
0: बिल्कुल नहीं ना?
2: बिल्कुल नहीं।
1: थोड़ा बहुत तो होगा।
2: नहीं मैं कभी कॉपी नहीं करती हूँ।
3: अच्छा, मैं तो पूरी कॉपी
1: लिखता हूँ। हमारी तो स्टार्टिंग ही कॉपी करने से होती है।
0: अच्छा एग्जाम टाइम में डर लगता है क्या?
3: डर तो लगता है बहुत।
2: मुझे एक्साइटमेंट होती है।
1: मुझे भी।
0: अच्छा मतलब पढ़ाई लास्ट मोमेंट शुरू होती है लग रहा है।
3: हाँ, हम लोगों की लास्ट मोमेंट होती है।
0: अच्छा एग्जाम टाइम में 3 घंटे तो मिलते हैं सबको, तो एग्जाम पूरा हो जाता है ना?
3: हाँ, पेपर
1: पूरा हो जाता है।
0: तो फिर क्यों डर लगता है?
3: कंफ्यूजन रहता, क्वेश्चन गलत है कि सही है,
0: क्वेश्चन गलत है कि सही है,
2: पेपर,
3: सॉरी आंसर गलत है कि सही है।
2: पेपर मिलने से पहले थोड़ा डर दीदी, पेपर मिलेगा तो ना हाँ किया, इतना इजी पेपर ऐसा लगता है।
1: और जब हार्ड पेपर आ जाए तब?
2: तब तो क्या हमको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी देर उस पे टाइम लगाना है ताकि हम समझ सके और फिर पेपर लिखना है, इजी।
1: अच्छा तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा एग्जाम था जो तुम्हें टफ लगा?
2: लास्ट ईयर की मैथ्स एग्जाम।
1: तब कैसा फील हुआ था?
2: थोड़ा लाइक आई, मुझे सब कुछ नहीं आया, थोड़ी मैं छोड़ दी, फिर भी अच्छा लगा।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग को अगर अपना स्कूल अपने हिसाब से चलाने के लिए बोला जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो जिनका फ्यूचर भी तुम लोग को देखना हो, तुम लोगों पर डिपेंड करता हो, तो वो स्कूल कैसा होगा?
1: अच्छा, संडे टू मंडे स्कूल, बाकी छुट्टी।
4: बाकी दिन छुट्टी।
0: बाकी दिन छुट्टी, मतलब सिर्फ दो दिन स्कूल और बाकी दिन छुट्टी। और उसमें पढ़ाई क्या क्या करवाओगे? उनका फ्यूचर भी आप लोगों पे ही डिपेंड करता है, ये भी याद रखना साथ में।
1: ओके, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा।
0: क्या करोगे बताओ, क्या कोई नया तरीका है तुम लोगों के पास स्कूल में पढ़ाई करवाने का, या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है इससे और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं?
2: हाँ दीदी।
0: क्या?
2: जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तभी हम और पढ़ाई करेंगे ना, वो अच्छे से हम समझ जाएंगे। ऐसे तरीका, हाफ मस्ती हाफ पढ़ाई, ऐसा कुछ।
0: मतलब अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलें और फिर पढ़ाई करें तो और अच्छी होगी पढ़ाई, ये भुवना कहना चाहती है। और पंकज,
1: हमें हर क्लास के बाद एक एंटरटेनिंग पीरियड रखना चाहिए जिसमें बच्चे वापस एंटरटेन हुए और वापस उनका माइंड फ्रेश हो जाए और वो वापस अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे सके।
2: ऐसा हुआ तो 3:30 तक हम टाइमिंग्स भी बढ़ाना चाहिए ये सब का।
0: फिर तो हमारा स्कूल बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर क्लास के बाद एक एंटरटेनमेंट होगा।
2: तो 24 आवर स्कूल पे ही रहेंगे हम।
1: 20 मिनट्स के लिए तो होने चाहिए।
0: हाँ,
4: टीचर्स ऐसे होने जो फ्रेंडली, जो मिलजुल के रहें। जो कोई कोई टीचर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनका फ्री अटेंड करना डर लगता है, ऐसे टीचर होने चाहिए जो हमेशा हमारी बात को समझे, मिलजुल के रहें।
0: तो आज हमें स्कूल के बारे में बातें करके बहुत सारा मजा आया है ना बच्चों?
5: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार मिलेंगे और फिर खूब सारी बातें करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।
5: बाय बाय। स्कूल है, पढ़ाई है, फिर भी इतनी मस्ती। एग्जाम्स है, उसका फियर है, फिर भी इतनी मस्ती।
2: इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं
1: मस्ती करने,
5: एंजॉय करने
2: और बहुत कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, छुट्टियों के बाद

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: FM रेडियो मधुबन में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशेष कार्यक्रम यशस्वी भारत में। साथियों, जैसे हर बार हम आपके पास एक ऐसे हस्ती को लेकर के आते हैं जिसने भारत देश के यशोगान में एक सुर अपना भी लगाया है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं दो दो ऐसे सुर हैं जिन्होंने इस यशोगान को बहुत बहुत बहुत सुरीला बनाया है, या कहूँ ये एक ऐसा सुर है जो दोनों साथ में ही बजते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है नलिनी जी और कमलिनी जी, जो भारत देश के वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने एक बहुत प्राचीन प्रथा को इस समय इस दौरान युवाओं के बीच में भी प्रचलित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। आप सोचते होंगे कौन सी वो प्रथा है? कथक।
3: ये हुई चक्करदार तिहाई।
2: और इस तिहाई में और मजा आज श्रोता साथियों आपको तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये साधारण इंटरव्यू नहीं है, बट चार कथक प्रेमियों के बीच में बातचीत है। आप सोच रहे होंगे चौथा कौन? चौथा आपकी प्रिय दोस्त आरजे आरुषि। आरुषि बहन, आपका भी स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा बन पाऊंगी।
2: इंटरव्यू नहीं, डायलॉग
4: का हिस्सा बन पाऊंगी, माफ कीजिएगा मुझे। जी,
2: तो जैसे साथियों आपने सुना, शुरुआत ही एकदम जबरदस्त हुई है, और जिसका आगाज ही इतना अच्छा है उसका अंदाज, उसका अंत तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक जर्नी है जिस जर्नी पे हम सब आप चल रहे हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई नलिनी जी कमलिनी जी दोनों?
5: देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उस पात्र की पात्रता निभाने के लिए। कितनी अच्छी तरीके से हम उस पात्रता को निभाते हैं ये हमारे कर्म पे निर्धारित करता है, क्योंकि हमारा जन्म ही कर्म के लिए हम इस धरातल पे आए हैं, और कर्म से ही मोक्ष मिलता है, मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता। जो साधारणता लोग सोचते हैं ना, खुदकुशी कर ले, मर जाए, इससे दुखी हो गए तो उससे मोक्ष नहीं मिलता। जो कर्म आपको दिया गया है उसको सफलतापूर्वक आप करें, आप अपने से प्रसन्न हो तो दूसरा आपसे प्रसन्न होगा। और जो कलाकार है वो कभी भी कर्महीन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के बिना कला आती नहीं है। हर रोज आपको कुआं खोदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बने बनाए कुएं में आप बाल्टी डाले और निकाले, कुआं भी हर रोज खोदना पड़ेगा, उसमें पात्र भी हर रोज डाल के पानी को भी खींचना होगा और तभी प्यास बुझानी होगी। इस सोच से जिसे आप कहते हैं, जब कार्यरत होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो आपका जीवन आनंदित होता है, और अपनी जीवन में जो अपनी साधना से आप अर्जित करते हैं उसको दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा एक सानिध्य चाहिए होता है, गुरु का। हमारा सौभाग्य रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिसको गुरु मानते हैं, अगर आप चंद्रमा को, वो भी पूजनीय है, चंद्रमा को सूर्य समझ लें और उसे सोच के सोचे वो ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता।
3: तो सुपात्र
5: शीतलता ही देगा, देगा तो सही लेकिन शीतलता देगा। और क्या कहते हैं, सुपात्र गुरु मिल जाना आपको, और एक गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाना, ये भी संस्कार पर निर्धारित करता है
2: जी।
5: कहते हैं कि मन के सुप्त भाव जब जागृत हो, क्रियाशील होते हैं, तो वो मन की अंतरंगों को किसी ना किसी तरह से प्रेरित करते हैं। सुसंस्कृत संस्कार जिस माध्यम से प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उन्हें कला की संज्ञा दी गई है, और कलाकार भी जन्मता है संस्कारवश। एक अच्छे गुरु जी का मिल जाना उसके अपने पूर्व जन्म का ही एक निर्धारित कर्म का होता है। मैं कमाऊं, चेक आप काटे तो नहीं मिलेगा, मैं ही कमाऊं और मैं चेक काटूं तो वो ही हो पाएगा,
3: तो बाउंस हो जाएगा,
5: फिर तो बाउंस हो जाएगा। तो ये मेरे कर्म की संचित पूंजी है, तो मैंने चेक काटा, मुझे अच्छे गुरु मिल गए, कर्म का चेक। ऐसा नहीं मैंने चेक काट के मुझे गुरु मिल जाए, और उससे सबसे अच्छी चीज मिली, आपकी बात सुनती हूँ, अगर हम सफर सफर में अच्छा हो तो ईश्वर की कृपा देखिए कितनी अच्छी बहन दे दी। जब हम लोगों में कभी झगड़ा होता है ना, पता है किस बात का होता है?
2: झगड़ा होता भी है
5: किसी बात में नहीं लगता ना, किसी चीज को लेके जब होता है ना कि मान मोट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, तो मैं क्या बोलती हूँ, ईश्वर कितना अच्छा है, उसने एक साल पहले मेरे सानिध्य के लिए एक नौकर चाकर भेज दिया। ये कहती ना, ईश्वर मेरे लिए ज्यादा मेहरबान है, जब मैं एक साल की हो गई तो मेरे लिए भेजा। तो हमने कहा एक दूसरे की नौकरी ही कर लेते हैं। तो हमने कहा किसकी करे, तो ईश्वर ने एक ही कर्म दिया है, नृत्य, उसी की कर लेते हैं। जब उसके सामने आते हैं तो फिर हम एक दूसरे को भूल के हम उसी की चाकरी
6: नहीं। वो जैसे शांतनी जी आपने कहा ना, लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती हमारे मन में, परफेक्शन की एक जिसे कहते हैं, एक परफेक्शन और अच्छा हो उसके लिए हम लोगों की कसाई होती है, आपसी कसाई। We criticize ourselves so much that others don't have the chance to criticize us.
5: नहीं, पर एक और बात है, जैसे धनुष लिया है, अब वो धनुष बाण है या प्रेम बाण है, उसकी अभिव्यक्ति में फर्क हो जाता है। मैं थोड़ी लक्ष्मण बुद्धि की हूँ, एकदम नाराज हो जाती हूँ, ये मुझे शांत करती है, फिर वो जब ये कभी होते नाराज होती है तो मैं इन्हें शांत करती हूँ। मतलब
2: यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर,
6: ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता है।
5: अच्छा, नदी में बाण ना आए इसके लिए कई प्रबंध कर जाते हैं ना, तो कला वो है उस बाढ़ को रोक देती है। आप कुछ कह रहे थे,
2: मैं ये एक्चुअली बोल रहा था कि आपने ना, आप जब बोल रहे थे तो इतना सुंदर एक वाक्य आपने बोला कि कर्म से मोक्ष मिलता है, मृत्यु से नहीं। जनरली लोगों में कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष मतलब मोक्ष इज द प्लेस वेयर आई शुड बी एंड नॉट दिस, क्योंकि लोग एस्केपिज्म से ग्रसित हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी जो वर्तमान परिस्थिति वो नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए, और इस वजह से वो सोचते कि बस ये परिस्थिति खत्म हो तो एवरीथिंग इज बेटर।
5: शांतनु जी, क्या है, लोग सोचते हैं नृत्य केवल नृत्य है, ये आपको अपने आप को समझने की, अपने आंतरिक को समझने की कला है,
6: दर्पण है,
5: ये स्वयं को, आपके सामने दर्पण नहीं है, लेकिन आप अपने सामने एक दर्पण खड़ा करके अपने से साक्षात्कार करते हैं। और बहुत भ्रमित होते हैं लोग जिनको कोई समझाने वाला नहीं होता, और जो अपने आप को नहीं समझ सकते वो बड़े भ्रमित होते हैं। देखिए क्या है, कई बार हम निराश हो जाते हैं जीवन में, तो बहुत दिशाओं में जैसे थेरेप्यूटिकल वैल्यूज ऑफ डांस, रिलेशन ऑफ डांस विद योगा, और मैं आजकल की युवाओं को भी कई बात देखती, जब आप कभी अपने जीवन से निराश होते हैं, अपनी उपलब्धियों से निराश होते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं मिला, बिकम डिजर्विंग देन हैव ए डिजायर। आजकल लोग क्या करते हैं, पहले डिजायर रखते हैं फिर सोचते हैं उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ये तो देखो कि 24 घंटे की ड्यूटी है उस फूल की रखवाली करने के लिए जो दो दिन बाद झड़ जाएगा, लेकिन कांटा अपनी वो नहीं भूलता, वो वैसे ही रहता है, उसे कोई पूछता नहीं है, वो चुभने के लिए तैयार है, उसकी सुरक्षा के लिए, एक फूल के लिए, फूल खिलता है, सुगंध देता है। अपने जीवन में अगर वो तोड़ के किसी के सामने अर्पित किया जाता है तो उसका सौभाग्य बिखर जाता है, तो भी अपनी एक आभा को लेके बिखरता है, लेकिन जो कांटे के लिए ईश्वर ने उसकी ड्यूटी दी है उसको वो पूर्ण करता है हर तरीके से। तो आपको चाहे फूल का आनंद दिया जाए, कांटे का, ये देखिए कि आप दूसरों से जो जिन लोगों को वो उपलब्धि नहीं मिली उनसे कितने, आपको ईश्वर ने अच्छे हाथ पांव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे, दोनों आंखें दिख रही हैं उसमें भी, दोनों पुतलियां देखिए बराबर है, क्या अच्छी कंपोजिशन है ईश्वर की। थोड़ी सी नाक इधर हो जाए तो टेढ़ापन आ जाता है, थोड़ी सी आंख इधर हो जाए तो भेंग, उसमें भी आपको ज्योति दी है, उसमें भी आपको वाणी दी है, बोलने की क्षमता दी है, अच्छी चीज दी है, तो आप दूसरे लोगों जो इससे
6: वंचित हैं
5: उनसे आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। और मुझे एक चीज हमेशा बड़ी अखरती है, लोग ना ज्यादा जोड़ने में लगे रहते हैं, ईश्वर ने दो आंखें दी तीसरी देंगे तो आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे ना, दो पैर की जगह चार दे दें तो नहीं, जो दिया है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करती। बस ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आप आवश्यकता से ज्यादा, ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो कुछ फिल्ड अप लंग्स ईश्वर ने आपको दी जिसको आप ही को भरना है। आपको मस्तिष्क दिया है, इसमें बुद्धि का समावेश आपको खुद ही करना है, और वो भी कर्म के माध्यम से। दूसरे की बुद्धि आप नहीं चुरा सकते, दूसरे का मस्तक काट के आप अपने अंदर नहीं ला सकते, किसी तरीके से नहीं ला सकते, चाहे कितने भी साइंटिस्ट।
6: सेम बात कला में भी है,
5: सेम बात कला में भी है। आप मेरे किसी विद्वान के पड़ोस में बैठे रहिए और 24 घंटे उसकी चाकरी करिए, लेकिन विद्या का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीखने के बहुत सारे स्टेजेस हैं। एक अक्षर ज्ञान जिसके लिए दुनिया सोचती है कि फलानी यूनिवर्सिटी में चला जाए, उस स्कूल में चले जाए इधर से, क्योंकि वो जो सिखा रहा है उसने भी उस पुस्तक से लिया है, वो भी आपको उसको दे रहा है, आप भी उसी से ग्रहण करें, कल को दूसरा भी उसी से लेगा, आप एक ही माध्यम से सब चीज ले रहे हैं। वो एक ही ज्ञान रहेगा, हजारों बच्चे पढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान है और अक्षर ज्ञान में क्षमता नहीं है यहाँ से वहां जाने की जब तक उसको स्वर की क्षमता ना मिले। उसी चीज को आप गायन में ले लेंगे, उसी चीज को
6: आपको जब तक आपको एक साक्षात्कार मिलेगा,
5: एक स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो दूसरे तक नहीं पहुंच जाएगा, वो सिर्फ नेत्र और उस पुस्तक तक सीमित रहेगा। दूसरा है सानिध्य का, जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो उसका चाल चलन आपके व्यक्तित्व को बनाता है ज्ञान के अलावा। तीसरा है अनुभव का, सानिध्य से जब तक आप अनुभव में नहीं आएंगे आप सानिध्य तक रहेंगे, अक्षर से सानिध्य तक रहेंगे लेकिन अनुभव में नहीं आएंगे। और जब आपको अनुभव का ज्ञान मिल जाता है वो वहीं तक सीमित रहता है जब तक उसमें संघर्ष नहीं आता। तो अक्षर, सानिध्य, अनुभव और संघर्ष, इस सबसे जब तब के कोई छात्र निकलता है या कोई शिष्य निकलता है तो वो कुछ कुछ गुरु के रूप में अपने आप को समझता है। उसमें भी उसे गुरु बिंदु को सामने रखना पड़ता है, क्योंकि निराकार को आकार देकर साकार करने वाली विधा है कला, जिसको लोगों ने बहुत छोटा समझ लिया था। सुर, लय, ताल, भाव, विचार, अभिव्यक्ति, जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपके विचार होंगे, या जैसे आपके विचार हैं वैसे ही भाव होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है। भाव और विचार संसार में हर व्यक्ति के साथ हैं, जानवर में भी हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम सुचारू हो और सुरमय हो तो वो एक कला का रूप ले लेता है। तो यही बात जो है कलाकार के अंदर है। और सुर, लय, ताल, हर व्यक्ति के अंदर सुर है, लय है और ताल है। जब हम चलते हैं उसमें भी एक लय है, हमारा हृदय धड़कता है उसमें भी एक ताल है, जब वो हट जाती है तो हमें पता चलता है हम बोल रहे हैं। अगर ये लय और ताल हट जाएगी तो मैं हकलाने लगूंगी, लेकिन सुर, लय और ताल इसके साथ जब हम अभिव्यक्ति मिलके करते हैं, कला आपको संगठित होने की विद्या है। जब आप हजारों लोग भी एक सुर में गाते हैं, वैसे तो कोई नहीं मिल पाता, दो जनों के सुर नहीं मिलते, और शब्दों का और स्वर का कहाँ पे साहित्य से फर्क हो जाता है, मैं आपसे कहूँ तुम जाके तो देखो, शब्द वही, तुम जाके तो देखो, सुर बदला, शब्द वही है, अभिव्यक्ति बदल गई। और वो कहेगा अच्छा, तो कहाँ जीवन में अगर आप कला में थोड़े भी कलाकार नहीं भी बने, उसकी समझ रखें, तो संसार में जीवन
6: अवेयरनेस, अ स्मॉल अवेयरनेस ऑफ आर्ट कैन चेंज योर होल लाइफ, बिकॉज एज शी सेड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, तो हार्मोनाइज प्रेजेंटेशन, ऑल दोस थिंग्स आर देयर ना। तो एक कलाकार जैसे नलिनी जी ने बताया, उसकी जो अवेयरनेस है वही हम लोगों का ध्येय रहता है। हम लोग हमेशा इतने सारे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे विश्व में करते हैं, वो यही होते हैं कि कला किस तरह से आपको सशक्त, समृद्ध और व्यापक दृष्टिकोण देती है।
2: थोड़ी देर पहले नलिनी जी जब बोल रहे थे तब मैंने पिकअप किया था कि उन्होंने बोला कला की परिभाषा दी थी उन्होंने, संस्कृति और संस्कार उसकी अभिव्यक्ति कला है, और ये मुझे बहुत बात
5: सुसंस्कृत संस्कार,
2: सुसंस्कृत संस्कार, दैट इज कला एंड दैट अमेजिंग, बिकॉज़ ये डेफिनेशन मैंने तो पहले,
6: नलिनी जी जो है ना अपने परफेक्ट डिक्शन के लिए बहुत जानी जाती हैं, शी स्पीक्स वंडरफुल।
5: और नेत्र में अध्यात्म, ये हमारा, मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी, मैंने कहीं पढ़ा ओशो जी का लिखा हुआ, नृत्य में वो तुम्हारे साथ होता है, उसमें हम नृत्य कर रहे थे, आगास उसका नाम था, तो मैंने सोचा नृत्य में तो हमारे साथ जब ही होगा जब हम नृत्य करेंगे, है ना, तो मैंने उसमें कुछ लिखा है, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे, जीवन नृत्य है ना, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी, उसके आने से ही नृत्य होता है, वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे, जब वो नहीं रहेगा तुम नहीं रहोगे, जब तुम और वो एक हो जाओगे, तुम्हारे नृत्य तुम्हारी वाणी में तुम्हारी लेखनी में उसका आभास होगा और यही आगास हो।
2: क्या बात है मतलब ये था चक्रधर तिहाई, बहुत ब्यूटीफुल,
6: वेरी लिरिकल, एंड शी रिमेंबर्स एवरीथिंग, दैट इज वंडरफुल थिंग,
2: एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज कि इट वाज वेरी स्पिरिचुअल आल्सो,
6: या
2: क्योंकि परमात्मा हमेशा हमें यही याद दिलाते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तुम इतने खुश रहोगे कि ऐसा लगेगा जैसे तुम हमेशा डांस कर रहे हो,
6: हमने पा लिया,
2: यू आर ऑलवेज डांसिंग,
5: यही तो लोग सोचते नहीं। देखिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है वही तो मैं बोल रही हूँ, दो एक आंख को बचाने के लिए एक पलक दिए, उसके ऊपर आपको ये आई लैशेस दी है, उसके ऊपर भौं दी है, उसके ऊपर भी जैसे ही कुछ आघात होते एकदम झपक के बंद हो जाती है, उसने हर समय पे हमको वो चीजें दी है, जब हम अबोध है तो माँ को दूध के साथ हमारे साथ दिया है, जब हम उसके लायक हो जाते, हर चीज का इतना ख्याल रखा है, एक चीज और पूरी बॉडी में कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप मुंह में खाना तो डालिए, जहाँ जिसको इससे डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें हमें क्रिया सिखाती है, जो आपको मिल रहा है उसको आपको बांटना है, और कुछ वेस्ट में चला जाता है तो ये भी है कि अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से नहीं बांटेंगे तो वो वेस्ट में चला जाए। हर चीज की शिक्षा आपके शरीर से देती है, और जिस परमात्मा ने आपका इतना ख्याल रखा है तो उसके लिए मैं एक सच्ची बहुत बात बता रही हूँ, आप विश्वास करें ना कराएं, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन इस 50 साल में जब गुरुजी के सानिध्य में आई हूँ शायद ही कोई ऐसा दिन खाली गया है कि कोई एक कार्यक्रम हटता है तो दूसरे का अपने आप फोन आ जाता है। हमने उसके ऊपर पूरा अपने आप को छोड़ दिया, हमने कभी भी नहीं कहा कि ईश्वर ने हमारे साथ कुछ, उसने जो भी किया हमारे लिए उसी इसलिए किया जो अनुकूल होता है। अगर उसने क्या कहते हैं पेठा को पेड़ में नहीं टांगा तो इसलिए ही नहीं टांगा कि वो गिरेगा तो सर बहुत बुरी तरह से फूटेगा, ये सोच के ही
6: पहले बेल में छोड़ा है।
2: नहीं, आपने पहले भी बोला ना कि भाई try to become deserving before you start desiring, है ना? तो इसलिए आप deserving थे, इसलिए आपके पास सब अपने आप पहुंच रहा है।
5: अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं
2: है।
5: देखिए भाग्य और बुद्धि का बहुत बड़ा सामंजस्य है, जो आपके भाग्य जब में नहीं होगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। तो हम ईश्वर से जाती हूँ, कभी भी मैंने हर मंदिर में नृत्यांजलि ही दी है, कभी भी कुछ चढ़ाया नहीं है, ये कहती हूँ जब कभी भी विपता का समय हो ईश्वर हमारी बुद्धि सही रखना, कभी ऐसा ना हो जहाँ बुद्धि बिगड़ी नहीं विवेक बिगड़ा नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, उसमें और एक पागल कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। आप मुझे कितना भी अवार्ड दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जब बुद्धि बिगड़ेगी तो मुझ में और उस बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए ईश्वर से हमेशा मांगो कि मेरी बुद्धि को बनाए रखो, जब मैं विवेकशील हूँ और जब विवेकहीन होने लगूं तो भी वो आप ब्रेक ऐसे मानना जैसे गाड़ी का वो खराब हो जाता है ना तो पाओं का ब्रेक नहीं लगता तो हैंड ब्रेक लगाते थे जी,
6: या फिर एयर बैलून बाहर आ जाता
5: कमल नहीं जी मेरे लिए वो है जो मेरा फोन ब्रेक लगा।
6: क्या होता है ना, किसी को किसी का अखबारों में जरा सा निकल जाता है उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो ठीक से बात नहीं करते हैं
4: जी।
6: यहाँ पे अवार्ड्स के भंडार हैं, बताइए इसी साल हम लोगों को पद्मश्री दिया और सब लोगों ने कहा ये तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तो मैंने कहा ये तो देने की चीज है, लेने की चीज थोड़ी ना, जब मिला तो मिला। इतने सारे अवार्ड मिले और अखबारों में
5: सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए था जब नहीं भारत की अपनी देश की तो मिट्टी भी अगर आपको दी जाए तो वो भी सर आंखों में, और हमने तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया उस सब की मिट्टी लाके मैंने अपने इंस्टीट्यूशन की नींव में रखी। फिर 2003 में कैलाश मानसरोवर में 18,000 फीट पे नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस समय तो मेरा हीमोग्लोबिन भी 7.30 था, और वो सब बोलते थे कि आप गुरुजी और मैं तीनों गए थे, आप जाओगे तो दो लोग वापस लौटेंगे, लेकिन ईश्वर कृपा देखिए कुछ भी नहीं हुआ और इतने आनंद से गए। मैंने कोई पैंट शर्ट नहीं पहनी, वही साड़ी पहन के सात्विक भोजन, चिदानंद मुनि जी थे, वो ईश्वर रास्ते बना देता है, पता नहीं वो कैसे बनाता है, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो एक छोटे हम तुच्छ प्राणी के बारे में नहीं करेगा, और कितनी बड़ी गणित है उसकी, आप जीरो की भी वैल्यू रखी है उसमें सौ हजार की नहीं, हम जैसे जीरो की भी वैल्यू रखी
2: है। आप खुद को जीरो कहते हैं, ये आपकी नम्रता का परिचायक है।
6: जीरो की तो बहुत इंपॉर्टेंस है शांतनु जी,
2: और क्योंकि इंडिया से शुरू ही
5: मुझ जीरो की इंपॉर्टेंस है और किसी के लिए,
6: जहाँ जीरो लगा दिया वो बढ़ता चला जाएगा, एक के आगे तीन जीरो लगा लिए तो, चार लगा लिए तो संख्या बढ़ गई।
5: आज कमलिनी के आगे जीरो ही तो लगा है नलिनी,
2: नहीं और एक्चुअली आज इस सभा में एक जीरो और भी है, आरुषि बहन तो इस सभा का हमारा जो है आज के हमारे इंटरव्यू का,
5: अब ये मत कहिए आप तीनों को जीरो कह के आपको हम हीरो कहेंगे, ये मत
2: नहीं, मैंने तो बोला कि हम तीनों जीरो है और हमारे साथ चौथा जीरो आज आरुषि बहन बैठे हुए। आरुषि बहन अभी तक आप सुन रहे थे, आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो?
4: मैं सच बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है कि नलिनी जी कमलिनी जी जब बोल रहे हैं दुनिया में कोई हताश हो ही नहीं सकता अगर उनकी बातों को हम एक एक चीज को सुनने और समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं पूछना कुछ जरूर चाहती हूं, जैसा कि
5: मैं ड्राइविंग सीट में, स्टीयरिंग मेरे हाथ में, आप लोग सवारी हैं, जैसे कि हुक्म देंगे बस ये गाड़ी मोड़ लूं
4: नहीं गाड़ी जहां जा रही है हमें बड़ा आनंद आ रहा है।
2: हम एक ऐसे दौरे पे निकले जिसका हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं सिवाय इसके कि हम एंजॉय कर रहे हैं सफर, और मुझे लगता है हमारे श्रोता साथियों को भी आज बहुत मजा आने वाला है,
4: बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना जरूरी है चाहती हूँ कि हम अक्सर जब भी देश की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत युवा देश है और देश के निर्माण की, देश की पहचान क्या है आज ग्लोबली, नृत्य क्योंकि बिरजू महाराज जी को भी हमने कहते हुए सुना है कि नृत्य आपको सुंदर बनाता है, आपको खूबसूरत बनाता है, तो नृत्य कैसे चरित्र का निर्माण करता है, और क्या युवा जो नृत्य कर रहे हैं सिर्फ देखने से भी क्या वो निर्माण होता है?
5: देखिए जो आप बोल रहे हैं कि नृत्य चरित्र का निर्माण करता है, सिर्फ नृत्य ही नहीं, नृत्य इसलिए ज्यादा करता है क्योंकि उसमें संपूर्ण शरीर का समावेश रहता है,
6: और उसमें तीनों चीजें नृत्य वाद्य संगीत। जब हम कोई आर्ट प्रेजेंट करते हैं,
5: इट इज कंप्लीट,
6: इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट ऑफ ललित कला, है ना, तब वो
5: पूरी इंडियन थाली है जिसमें सूप भी है, सांभर भी है, दाल भी है, इसे कंप्लीट, आपको अलग से सर्विंग नहीं करनी, इसे कंप्लीट
7: एक्सरसाइज भी है,
5: सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है।
6: साहित्य संस्कृत साहित्य, सामाजिक पहलू, साहित्यिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू, तीनों से ओतप्रोत रहता है। तो उसके लिए जब हम अध्ययन करने चलेंगे किसी चीज को, तो आपको पता है जब आप जिन खो जाते पाइया, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आप गहराई में।
5: अरुषी अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगी प्लीज?
4: जी जरूर,
5: स्टीयरिंग इन्होंने पकड़ लिया था तो इसलिए जीपीआरएस मेरे माइंड का चेंज हो गया।
4: जी जी, एक्चुअली एक में दो सवाल थे।
5: हाँ,
4: एक तो नृत्य कैसे,
5: यहाँ पे भी एक में दो सवाल,
6: सुंदर बनाता है,
4: जी खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है, और दूसरा
5: आपके सवाल पे मुझे उत्तर मिल गया।
4: अच्छा,
5: जीवन एक प्रश्न है
4: जी,
5: मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है
4: जी,
5: फिर हर उत्तर एक प्रश्न बन जाता है और हम विचलित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, किससे हमको आनंद आएगा, क्योंकि जीवन में आप चाहे भोजन करिए चाहे कुछ करिए, उसका जो एक आप रिजल्ट चाहते हैं वो आनंद चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कंटेंटमेंट चाहते हैं। उस कंटेंटमेंट के लिए हम ही नहीं दुनिया भर एक से एक चीज जोड़ लेते हैं, बड़ा सा घर हो, नहीं नहीं ये खराब हुआ अगले साल फिर उसको रिनोवेट करा लिया, खूब बड़ी गाड़ी हो, नहीं एक से काम नहीं हुआ 10 हो गई, नौकर भी बढ़ा लिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई सब। अब एक समय आता है यू टर्न का, जब आप उस सबसे परेशान हो जाते, यू टर्न में भी आपने फिर जो है जोड़ लिया, क्यों आप अतृप्त रहते हैं? क्योंकि आप जोड़ते बाहर से हैं, खालीपन अंदर है, जो अंदर की सत्ता है वो जो भिखारी बैठा वो अभी भी मांग रहा है मुझे कुछ दे दो मैं भूखा हूँ। तो अंदर की सत्ता को भरने के लिए दो ही चीजें, एक अध्यात्म और एक कला, क्योंकि वो सब चीज बाहर से, सब चीज बाहर से अंदर आती है, ये अंदर से बाहर जाती है। इट इज अ डिस्कवरी टू डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप अपने आप में खोजने लगते हैं तो आपको पुस्तक की जरूरत नहीं है, आपको वातावरण की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से क्रिएट कर लेते हैं। और जितना आप अपने अंदर से, क्योंकि ईश्वर ने हमें शरीर में कितनी नाड़ी नसें क्या क्या चीजें नहीं दी, पूरा का पूरा एक पूरी पूरा संसार बसा दिया है। जब उस संसार को हम सुलझाते हैं, एक एक चीज को अपने को समझ लेते हैं, देखिए दुनिया में कितनी अजीब बात है, हम विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं परमानेंट एड्रेस के लिए, टेम्पररी लाइफ है, और एड्रेस ढूंढते हैं परमानेंट, सबसे पहले पूछते हैं परमानेंट एड्रेस। तो ये आध्यात्मिक सोच जब आपके अंदर उतर आती है, आप सबको जोड़ लेते, जब कला से आप अंदर से पूरे रिच हो जाते, जब अंदर, जब भोजन का स्वाद कब तक आता है, जब आप भूखे हो, भर पेट वाले को तो कुछ भी दे दीजिए तो उसे आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए जब अंदर की सत्ता संपूर्ण हो जाती है तो बाहर की चीज मायने नहीं रखती है, उसको अर्जित करने की चीजें नहीं, फिर आप किसी से खामखा का कंपटीशन नहीं करते, आप कंपटीशन करते हैं खुद से। मैं अपने आप को, कला नृत्य वाद संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्वयं को हर रोज नहलाते हैं अंदर से, अंदर से उसका टेम्परेचर भी देखते हैं, बच्चे का देखते हैं ना, उसको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसको खिलाते भी हैं, और इस समय सोचते हैं जब कोई डिस्टर्ब ना करे तो उसको मैं खिलाऊं, उससे आनंदित रहूं, या फिर ऐसी जगह संसार बसाऊं जहां पे मेरे माहौल के लोग हों। तो जब आप हर रोज ये वाला काम करते हैं, हर रोज सोचते हैं मैं सुंदर लगूं, सुंदर माने मेरी कला सुंदर लगे, मेरा स्वर सच्चा लगे, बेसुरा भी आपको पता चल जाता है, यू बेटर फाई योर सेल्फ। तो आप अपने आप को सुधारते, जीवन में और किस चीज की जरूरत है, क्यों सब लोग लगे हुए हैं सुधारने के लिए, तो लगे हुए हैं, अगर हर व्यक्ति स्वयं को सुधार ले,
6: प्रभुता और सुधारना,
5: अपनी अध्यात्म प्रभुता, अपनी आंतरिक ऊर्जा से स्वयं को सुधार ले, तो ये समाज में जो इतनी सारी वो है ना, जैसे क्लास में हर इंसान मॉनिटर हो जाए तो किसी दूसरे को कहेगा नहीं, तो सभी मॉनिटर हो गए ना
4: जी।
5: और हम अपने आप को पहचानते हैं हमने क्या गलती करी, आप कितनी वाहवाह कर लीजिए कि नल लीजिए आप बहुत अच्छा गा के उतरिए मंच से या बहुत अच्छा नृत्य करके, हमें पता है हमने कहाँ पे चूक गए हैं,
6: या थोड़ा सा काम करने में हल्का पड़ा, जो हम किस
5: वजह से नहीं हो पाया, दर्शक के वजह से नहीं हो पाया, मंच के वजह से नहीं हो पाया, माइक के वजह से नहीं हो पाया, तो हमें पता है हमने LOC क्रॉस करी है, LOC की इधर है, आपको नहीं पता, इसे फौजी को और क्या कहते हैं जो एंट्री ले रहा है उसको
6: Rangers.
5: पता है, रेंजर्स को पता है, बाकी कॉमन पीपल के लिए तो है कि ये इस बाउंड्री लाइन से सही सही जा रहा है, उसे पता नहीं
6: है। हर रोज हम चीजों को साधते हैं, अब देखिए हम लोग जो भी प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा बताया नलिनी जी आपने, जो कुछ भी हम प्रस्तुत करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इन्होंने पहले ही कहा शून्य में सर्जना करना,
5: निराकार को आकार देके साकार करना। निराकार है प्रभु,
6: इंडियन आर्ट
5: कला भी निराकार है।
6: इंडियन आर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो हम जो कुछ भी 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट जो भी प्रस्तुत करते हैं वो हम ना पर्चे में देखते हैं। अगर आप तबला बजाएंगे तो ना आप तबले के बोलों को देख देख के बजाएंगे, ना गाने वाला सामने पर्चा रखता है। ये हमारी भारतीय संगीत कला है।
5: लैपटॉप मोबाइल किसी के मोहताज नहीं,
6: किसी के भी जीपीएस सब हमारे दिमाग में है। और कौन सा राग गा रहे हैं यमन कल्याण में, आप कहाँ मध्यम लगा रहे हैं, कहाँ आप वर्जित कर रहे हैं, वो सब आपको पता है। और उसमें खेलना भी आपको पता है। हम लोग नृत्य में क्या कर रहे हैं, गुरु जी ने हमें छोटा सा एक सिखाया, तिग धा दिग दिग दिग थो दिग दिग तिग धा
5: तिग धा
6: दिग दिग दिग थो दिग दिग ता तिग धा दिग दिग दिग थो दिग दिग दिग ताई तिग धा दिग दिग थो दिग दिग ताई ताई कृतो थई ता थई ता थई कुदा ताई कृतो थई ताम थई ताई कृतो थई ताम थई। अगर ये करना है तो हम लोगों को पाओ को तिग धा दिग दिग दिग थो दिग दिग थई यहाँ से शुरू करके उसको जो बात 16 मात्रा में आती है उसको 8 में लाएंगे, फिर 4 में लाएंगे, फिर 2 में लाएंगे, फिर 1 में लाएंगे, मतलब 16 into 16 को अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 को भी हम लोग कर लें अंधरुत लय बना लेते हैं, ये इसकी मैथमेटिक्स है।
5: मतलब चरण से एक चरण चरण सीढ़ी चढ़ के
6: सीखते हैं। जैसे अगर गुरु जी ने हमें बताया, एक छोटा सा कवित बताया, लसत लसत प्रभु लसत कदम तरे, छोटी सी लकुटली ये बैन बजैया, चलत चलत चल चलत त्रिवंगी, झलक झलक कान कुंडल सोहिया, या छव देख ब्रग भावनी, गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बनैया, गंदनी गंदनी बजत मृदम, तब ताल देत राधिका और नाचत कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो
5: ये जो शक्ति ताल दे रही है और ब्रह्मा नाच,
6: तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कवित है, टुकड़े हैं, बोल है, परण है, ये सब चीजों को सीखते सीखते सीखते सीखते हम लोगों को उसे, जिसे एक रियाज भी कहते हैं, मांझना कहते हैं, मांझा कितना मांझा आपने,
5: जैसे तांबे के लोटे को हर रोज मांझने से चमक जाता है ना,
6: तो ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं। और जिस चीज में आप लगे रहते हैं, देखिए अगर गुरुजी ने हमें एक पद सिखाया,
5: हमारे गुरुजी का नाम मैं बताना आपको चाहूंगी, गुरु जितेंद्र महाराज और बनारस घराने,
6: और उन्होंने मंदिर नृत्य शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे हर चीज के साथ हुआ, संस्कृति सभ्यता में भी मुगल काल में प्रभाव पड़ा, फिर पाश्चात लोग ने इन्वेट किया तो उस पर असर पड़ा, तो जो कला है उस पर कई सारी परतें चलती चली गई। लेकिन हमारे गुरुजी ने, जितेंद्र महाराज जी ने इसको रिवाइवल ऑफ द प्री मुगल स्टाइल ऑफ डांसिंग किया है, तो इसमें वो सारी चीजें वो तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कृष्ण को साथ रखते हैं तो आप सोचिए उसका पूरा स्वरूप तभी तो प्रस्तुत कर पाएंगे जब आप बालकृष्ण के साथ हैं, या आप कुरुक्षेत्र में कृष्ण है उसके साथ हैं, या आप नटखट कृष्ण के साथ हैं, या आप बाल गोपाल वाले कृष्ण के साथ हैं, या आप माखन चोरी वाले कृष्ण के साथ हैं, या जिन्होंने द्रौपदी को चीर दी थी उस वाले कृष्ण के साथ हैं, तो जितनी देर आप कुछ भी प्रस्तुति करते हैं आप उसके साथ रहते हैं। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आप एक ट्रांस में होते हैं। व्हेन यू आर इन ट्रांस and present anything, then only the audience clap.
5: और एक और चीज है शांतनु जी, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। हम लोग सब जगह अपने स्थूल शरीर से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से जब उत्प्रोत होता है तो वो हमारे लिए बहुत कार्य करता है। स्थूल शरीर वहाँ नृत्य कर रहा है, नली नृत्य कर रही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसी समय पे ट्रेवल कर गया जब मैं चाह रही हूँ मैं कृष्ण बनूं। अभी हजारों की ऑडियंस है, मेरी एक साधना सबको ये रियलाइज कराए कि मैं कृष्ण हूँ, तो वो सूक्ष्म शरीर ने मैंने जहाँ कृष्ण के जहाँ दर्शन किए या उस समय जब मैं चाहती हूँ उसको मैं वो सूक्ष्म शरीर अपने अंदर उतार के मेरे अंदर उतारता है। इसलिए मंच में एक कलाकार कुछ प्रदर्शन कर रहा है और हजारों से प्रभावित होके और
7: एनर्जी उन तक।
2: जी बहुत सुंदर बताया नलिनी जी, कमलिनी जी आपने, की कैसे हम हमारे अंतरात्मा का जो स्वरूप है उसको भी बदल सकते हैं जब हम दिल से शिद्दत से किसी भी कला का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको हम दिन बर दिन अपने अंदर ढालने लगते हैं, तो कला न केवल देखने वालों को एक उत्कर्ष अनुभूति कराती है लेकिन हमें भी एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत ऊंचा स्वरूप में ले जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे और भी कई सारी बातों पे हम गौर करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपको आपकी कला के द्वारा वो अनुभूतियां हो रही हैं जिससे आप आज भी इस कला के उत्थान के लिए, कथक के उत्थान के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको अपना अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कि आज आपने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोता साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और मैं समझता हूँ बहुत बेशकीमती बातचीत का वो हिस्सा बने। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
2: अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया, उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़ कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुक कर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस, आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रॉन्ग वर्जन्स गुस्से के, जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है समवेयर, इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे हैं। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। So that's a very big different perspective. एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी,
0: मुझे दवाई मिल गई है, you know?
1: हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, I'm very frustrated. Frustrated मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है, I'm trying to do something and it's just not happening. So it could be trying to change people, trying to control people, trying to control situations and it's not happening. मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और situations अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूँ, गाइड दूँ, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूँ। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो I'm not to get frustrated. कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है वो इतना ज़्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज़ मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूँ। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली।
0: अच्छा, और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है। वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है, हम ये कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? सी, हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से लेकिन उन्होंने गलत इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को अपने लिए। इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीज़ें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते हैं, सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है,
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूँ मैं, you know?
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग के इट वाज राइट और व्हाटएवर, लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है, और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट देयर. यू नो मैनी कपल्स जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई है सिचुएशन क्रॉस हो गई. सी दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, वट एवर, सिचुएशन इज गॉन, वो परिस्थिति खत्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है.
0: जी, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने ये रियलाइज किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए, कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कुछ कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपेंड, That doesn't work.
1: और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना. यू नो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट्स जो हम कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम उनसे जो गलती हुई मैं बात करूं फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है,
0: हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे
1: कि उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं मैं सही हूं, विद दिस इंटेंशन नो डायलॉग विल टेक प्लेस.
0: बट विल ही एवर ही और शी एवर अंडरस्टैंड?
1: सी दिस इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक ऑफ, उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या गलती की, दिस इज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, एंड हम अपना रोल और अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं
0: उनको
1: समझाना कि उन्होंने क्या गलती की, विद द वेरी होप कि अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो मेरे साथ फिर से
0: ऐसा नहीं
1: वो गलती नहीं करेंगे.
0: नहीं तो फिर क्या करें?
1: तो वो सारी लर्निंग किसके लिए हो रही है, ये पूरा रिविजन पास्ट इंसिडेंट का, ये किसके लिए हो रहा है, उनको समझाने के लिए. आर दे इन माई कंट्रोल?
0: नो, बट देन इट मींस, सी I cross one situation.
1: लेकिन I am having to cross lot of situations. See, हमारा focus
0: again because of somebody else, the situation has come. Suppose let's take a situation, you know, let's take okay, business dealing. You know, we were going fine. I was telling my husband only or partner that don't go into this thing. This will not work very well because I can see it. He didn't understand and he went into this business. Whole of our you know family things were dependent on them, on the whole thing. Jaise bhi wo karega, jaise jayega, and he went, unhone kiya aur wo major disaster hua. Theek hai, he created that situation without even taking my opinion. Ab agar hum baithte hain samajhne ke liye ki what went wrong, Is it not right?
1: It is very right. लेकिन किस एनर्जी और इंटेंशन के साथ बैठते हैं? आप ये देखो, हम जब भी बैठते हैं ना बात करने के लिए, subconsciously हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ये है कि मैं दूसरे को समझा दूं कि तुम गलत है.
0: See, उनका decision तो गलत ही हुआ था ना.
1: It's okay, उन्होंने गलत समझ के नहीं किया था, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उस टाइम राइट ही लिया था. हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग, यू नो, नॉट दैट यू वर रॉन्ग, यू डिडंट आस्क मी, आई वुड हैव गिवन यू द राइट एडवाइस. एक सिचुएशन है ना, एक डिसीशन गलत हुआ, व्यक्ति गलत नहीं है. हम जो एनर्जी भेजते थे ना, आप गलत थे, ये एनर्जी हम लोगों के, परिस्थिति तो छोटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज थी, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप में एक वो लेकर आता है. जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें, बच्चे ने मार्क्स ज्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस, नाउ इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे, या मैं सही था, दैट्स नॉट ट्रू. वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन. यू नो, हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव, पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है, दे नो व्हाट दे हैव डन. वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए, हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे, ताकि वो उस गिल्ट से, उस पेन से बाहर निकल आए. लेकिन हम तो और भी ज्यादा उसको रब इन करते
0: हैं, हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना.
1: फ्रॉम इट मींस
0: समवेयर उनको कुछ भी हील करने से पहले I have to be healed.
1: कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी.
0: यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है.
1: पर लेकिन वो एक बहुत पर्सनल एजेंडा बन जाता है घर में, एंड वो कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं. और स्पेशली अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और सामने वाला कुछ बोले, तो हम उसको उसकी सारी गलतियां पहले याद दिलाते रहते हैं. दिस इज वेयर आई सेड इट बिकम्स लाइक अ कंपटीशन, कि किसने ज्यादा गलतियां की हैं, किसकी गलतियां ज्यादा बड़ी. यू नो, इफ आई से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो,
0: आपको कहने का क्या हक है, आपको अपने आप को देखा है कि आपने क्या किया.
1: सो दिस इज नॉट अ लर्निंग, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही है. ये हम एक दूसरे को आगे नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों ही फिर एक दूसरे को और ही पुल डाउन करते हैं. रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन, कि दोनों ही एक दूसरे से और भी खिंचते जाएंगे. अगर घर में ऐसा कुछ हो जाता है, इमीडिएटली जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, तुरंत उसको इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फाइन, यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट हैज टू बी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
0: लो करना,
1: जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है. ये जो थॉट है ना, जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी, इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है. हम क्या एम्पावर कर रहे हैं, और वी डूइंग द ऑपोजिट, वी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगा. Am I ready to believe that?
0: No, because my hurt is too strong.
1: सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से नहीं होगा. मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर. सो मैंने, किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूंगा. यहाँ से क्या एनर्जी जानी चाहिए कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे. ये बोलने की चीजें नहीं है, हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे,
0: एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. ओह नो, नेवर. आई थिंक या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस सिगरेट पीने के बाद या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि ये नहीं करेगा,
1: तो दैट इज द रीजन कि वो नहीं करते हैं. और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं. हमें ध्यान रखना है, दिस इज ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट. लेकिन ये कब होगा, जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी. अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूंगा, इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे. यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. हम थॉट क्रिएट कर देते हैं.
0: अच्छा,
1: सी, अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा,
0: चलो देखते हैं. हाँ. ये ना, चल देखेंगे, लेट्स सी, एंड दिस इज व्हाट. But then again,
1: let's see with time. हाँ. क्या होता है, एंड फिर साथ में बोल भी देंगे, अगर फिर किया ना आपने ये,
0: फिर अच्छा
1: that नहीं होगा. itself हाँ. is a thought के I have a doubt कि आप फिर से करने वाले हो. हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में. यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहे जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे. ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते, तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिस एम्पावर करता है. तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति, इसको ख़त्म करें. और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता, वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती
0: जो हमने कभी सोची नहीं थी. बिल्कुल.
1: और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था. लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ क्रिएट होता जाता. और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच के जो वो
0: उसको इतना निकला है, ओवरफ्लो होना था और इस कारण होना
1: था। तो जो निकला बाहर, शब्द जो निकले वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा। तो हमेशा जब भी ये आते हैं ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए, बी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट कि मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस, जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है। हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है। एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती, वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है, वो सारा फिर शब्दों में निकल आता।
0: तो फिर तब क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज नहीं होगा, यू नो द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा।
1: लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं औरों को रियलाइज करवाना। अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते हैं आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है। आपको रियलाइज नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू से मेरा दर्द नहीं खत्म हुआ है अभी, आप ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दर्द खत्म हो। जिस दिन मेरा दर्द खत्म होगा उस दिन मैं बोलूंगी कि आपको रियलाइज हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल, आप मेरा दर्द नहीं खत्म कर सकते, इट इज माई प्रोसेस, आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस। लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करने के बजाय सामने वाले को बोल देते हैं आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आई एम इन पेन, आई वॉन्ट देम टू डू समथिंग जिससे मेरा दर्द चला जाए। जिस दिन मेरा दर्द जाता है आई से आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलती हुई है,
0: अब आपको रियलाइज हुआ ना, फिर मैं उसको हथियार तो बनाया ही होता मैंने,
1: यू नो। तो दैट वे इफ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज कर रही हूँ
0: कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ?
1: जो जो रियलाइजेशन कराने हैं अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो। ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते हैं।
0: वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कितना गलत
1: किया? अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता, एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल,
0: समाज, एवरीवेयर।
1: बट आई थिंक स्पेसिफिकली दिस वुड बी वेरी एप्लीकेबल इन कपल्स टुडे, हस्बैंड वाइफ, छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीजें, यू नो, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉ आज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात
0: मेरी मम्मी के साथ, लाइक एंड इट स्टेज, इट्स देयर।
1: सो नाउ दिस इज वेरी डैमेजिंग, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो रिजेंटमेंट अपने अंदर भर के रखते हैं, ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है। और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाते जाती हूँ,
0: अपने लिए बहुत, अपनी नेचर वैसी बनती
1: है, ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, दो मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ, लेकिन उन्होंने किया कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को खत्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स फॉर मी। क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं खत्म करती आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती, वो और रिश्तों में भी
0: जाए। क्योंकि वो मैं, हाँ, I know, because वो अंदर रहा ना वो कहाँ?
1: वो bitterness है। तो वो bitterness तो मेरी ऐसे vibration है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगी, जिसके भी संपर्क में आऊँगी, कहीं ना कहीं वो bitterness मेरे अंदर से फ्लो करेगी। तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि ये resentment, अगर resentment लेवल पर नहीं खत्म हुआ तो नफरत,
0: ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, यू नो, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए। लेकिन जो नफरत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है, और जब हम अपने आप को विक्टिम समझ कर, यू नो, और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया। जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति।
1: यस, लेकिन इसमें भी यस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ दैट वॉज नॉट राइट फॉर यू, लेकिन अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू कैरी दैट बिटरनेस एंड दैट पेन। अब इसमें ये होता कि पहले तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग है कि मैं ही, यू नो, अपने आप से नफरत कई बार हमें हो जाती कि मैं ही गंदी हूँ क्या, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया कैसे, किसी ने गलत इतना किया, तो अपनी सेल्फ एस्टीम पहले क्रैश हो जाती। तो वो पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, समवन एल्स हैज मेड सम वेरी बिग मिस्टेक, इट वाज नथिंग टू डू विद मी बीइंग अ बैड पर्सन। यू नो, हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन, इट विल टेक टाइम। लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी, यू नो, एक पर्टिकुलर बात के लिए, अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ
0: उसको रीलिव कर करके
1: आई एक्चुअली गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है वो मेरा टेप रिवाइंड होता
0: जाता है। एंड देन वी लैश आउट, यू नो, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, यू नो, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो वो जो मैंने क्रिएट किया, शिवानी, द अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ,
1: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है, इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। यू नो, समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं, ये याद रखना है। डू नॉट, यू नो, वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज रोज रोज और गहरा कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को खुद को तो रोक सकते हैं,
0: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते जा रहे हैं,
1: हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं, ये उन घाव से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा,
0: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली,
1: अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और अपने पर रहम करो। वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए, और उसके लिए हमें इसको अब खत्म करना पड़ेगा। मेक इट स्मॉल, है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तब ही आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस। यू नो, हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ।
0: वेरी ट्रू. यू नो पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है. यू नो यू शुड फॉरगिव फॉर योरसेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए. अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे. तो मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था कि मुझे महान नहीं बनना. लेकिन आई सडनली रियलाइज्ड कि इट इज नॉट दैट. जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज़ के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है. चाहे वो मेरे लिए बहुत यू नो जिंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ. इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन. वी नीड टू रियलाइज Someday we need to realize कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है. थैंक यू सो मच शिवानी. आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम. ओम शांति. अगर मन में कोई सवाल कोई बात उठती है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ जो पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी. ओम शांति.

0: तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: गुड मॉर्निंग,
3: छोड़ा
2: अंग्रेजी बोलने वाला
4: कॉफी वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग पटिंग।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर आपको याद हो, पिछली बार हमने बात की थी एक ऐसे एस्पेक्ट की हमारी ज़िंदगी की जिसे हम सच मान के चलते हैं कि यही सहज है, और वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। आज हम में से 80% लोग तनाव से घिरे हैं, तनावग्रस्त हैं, और हम ये मान लेते हैं कि उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। सिर्फ हम उसे थोड़ी देर के लिए रिलीव हो सकते हैं, और हमने वो तरीके भी देखे थे। लेकिन एक बात सामने आती है कि तनाव को हम पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और एक तनाव रहित ज़िंदगी को पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो कैसे किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात तो हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी ये समझती हूँ कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, क्योंकि हर बार बात वही आ जाती है कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, उनका ज्ञान है जो हमें मिल रहा है। हमने जब स्ट्रेस की बात की थी तो कई मिथ्स, कई बिलीव्स के साथ हम जी रहे थे, तो उसमें से एक बिलीफ अभी भी हम जो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो है, वो ये कि स्ट्रेस को जाँचने के लिए क्या हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? कैसे पता चले कि मैं स्ट्रेस में हूँ, या जब उसका मैनिफेस्टेशन या तो ब्लड प्रेशर में होगा तभी मुझे जाना चाहिए? डू वी रियली नीड अ डॉक्टर?
1: जहाँ तक डॉक्टर के पास जाने की बात आती है, इट्स मोर फॉर द फिजिकल सिम्टम्स कि अगर तनाव ने हमारे शरीर में किसी बीमारी का रूप ले लिया, देन डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर से भी जब हम इलाज करवा रहे हैं उस बीमारी के लिए, तो भी सिर्फ उस बीमारी का इलाज ना करवाएं। अगर हम रियली उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हम उसके अंडरलाइंग फैक्टर को देख लें कि इस बीमारी का मूल कारण भी कहीं ना कहीं मेरी मनोस्थिति है। क्योंकि आज डॉक्टर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, सो द रूट लाइज इन द माइंड, इट्स इन अनहेल्दी माइंड। लेकिन एक डॉक्टर के पास आज उतना समय नहीं है जो वो आपके माइंड के बारे में भी आपसे पूछे कि आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपको टेंशन तो नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे, हाउ एम आई फीलिंग टुडे, ये तो मुझे रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सारा दिन में अपने आप से कुछ एक मिनट्स निकाल कर पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, यू नो, टॉक टू द माइंड कि आज आपका क्या हाल है, आपकी जो हर एक थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, फील द पल्स ऑफ योर फीलिंग। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ एक पैरामीटर्स को चेक करके हमारा डायग्नोज निकालता है कि यहाँ बीमारी हो सकती है। तो हमें भी अपने यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं, मेरी थॉट्स कैसी चलती हैं आजकल, कहीं मुझे कोई अटैचमेंट तो नहीं ब्लॉक कर रही है, क्या सारा दिन में मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ तो नहीं रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं, मैं दूसरों के प्रति आजकल कैसा सोचती हूँ। इट्स वेरी ईजी टू इवेल्युएट दैट फॉर माई सेल्फ, लेकिन अगर हम रुक के नहीं करेंगे, देन आई विल नॉट नो वेयर आई एम हेडिंग। तो एवरी डे इफ आई डू दैट ओनली फॉर 5 मिनट्स, मुझे

0: बीमारी का इलाज बन जाएगा।
1: एक और जैसे हमने एंगर के बारे में बात किया था, हर्ट के बारे में बात किया था, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ अदर्स, मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतना इतना करूँगा, या मेरा पीयर्स जो है उनको देखती हूँ मैं, तो मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ।
0: या सिचुएशंस ऐसे हैं, डेडलाइंस ऐसे हैं, टारगेट्स ऐसे हैं, हार्डली एनीबडी अंडरस्टैंड्स कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने अंदर है, मेरे तनाव का कारण बाहर है। यू नो, हमने पहले भी देखा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो रेजिलियंस अर्थात इनर पावर, तो तनाव इज इक्वल टू परिस्थिति, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, डिवाइडेड बाय आंतरिक शक्ति। तो अभी तक हमने जो आंतरिक शक्ति वाला डिनोमिनेटर था
1: वो डिप्लीटेड था,
0: उसको तो निग्लेक्ट ही कर दिया था, उसको इग्नोर ही कर दिया। तो हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, तो जितना जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर तो बढ़ने वाले हैं, यू कांट डिनाई दैट कि डेडलाइंस और तंग नहीं होंगी, लोग अनरीजनेबल नहीं होंगे, या बॉस डांटेगा नहीं, या वाइफ झगड़ा नहीं करेगी, डोंट एक्सपेक्ट दोज थिंग्स नॉट टू हैपन। तो प्रेशर जो कि न्यूमरेटर है वो तो बढ़ने ही वाला है। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया तो न्यूमरेटर बढ़ता गया, तो स्ट्रेस फैक्टर
1: वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया ना,
0: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। तो प्रेशर, यस, सिचुएशन एक ट्रिगर है, जब तक सिचुएशन नहीं आएगी तब तक तो स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा। लेकिन स्ट्रेस जो प्रेशर का फैक्टर है वो 10% शायद रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी 90% मेरे हाथ में है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो मेरे हाथ में नहीं है। I cannot control the situation. I cannot change the boss. I cannot change my wife. Though we keep changing all these things now, but we don't really change. We will just look for new people. Lekin naye logon ke saath fir naye pressures. So we really can't change the person. So main numerator ko control nahi kar sakti. Lekin mere haath mein denominator hai. Antrik shakti, inner power, and wo totally mere control mein. So why not I increase?
1: In fact, why should, I think we are not even aware of it.
0: Yeah.
1: You know, वो जो आंतरिक शक्ति या जो resilience होना चाहिए, जो है हमारे पास already, हमें उसके बारे में तो एहसास ही नहीं।
0: एहसास ही नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में देख लो कि दो या तीन लोग एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में है, तो उनके लिए न्यूमरेटर कॉमन है लेकिन उनका स्ट्रेस फैक्टर सेम नहीं होगा। ऑफिस में अगर हम कहते हैं कि बॉस बहुत गुस्से वाला है, तो वो आज सपोज ऑफिस के सभी लोगों को बुला के डांट देता है, लेकिन जब वो सभी को डांटता है तो हर एक का डांट सुनने के बाद का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा। व्हाई? अगर स्टिमुलस एक ही है तो रिस्पॉन्स पे
1: एक
0: ही होना चाहिए। स्टिमुलस बाहर से आता, रिस्पॉन्स मेरे अंदर से आता, लेकिन दोनों के बीच में है फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स कि मुझे कैसे रिस्पोंड करना है। हमने वो फ्रीडम टू चूज माय रिस्पांस को निकाल दिया, हमने कहा ये स्टिमुलस तो ये रिस्पांस,
1: बिकॉज़ आई थिंक हमारे पास वो ऑप्शंस हमें याद ही नहीं रह गई, हमें पता ही नहीं है कि हम और भी तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं।
0: तो हमने ये कहा कि उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे बुरा लगना ही नहीं,
1: परेशान होना ही था,
0: मुझे बुरा लगना ही था। अब 10 लोगों को उन्होंने डांटा, सभी को उतना ही तो बुरा नहीं लगा। तो अगर आपको वो बुरा जो लगने की परसेंटेज थी वो 10 मिनट रही, यू फेल्ट बैड, यू वर अ लिटिल अपसेट, बट फॉर 10 मिनट्स, बट आई वाज अपसेट फॉर 1 आवर। बॉस तो एक ही था, तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप 10 मिनट में ठीक हो गए और मुझे 1 घंटा लगा, और शायद किसी और को 10 दिन लग जाए। तो व्हाट डू यू हैव? यू हैव दैट पावर इनसाइड टू अकोमोडेट, टू अंडरस्टैंड and finish. That is inner power.
1: In fact, this is an example ki hum kar sakte hain. Possible hai. This actually makes lot of difference ki
0: ye wo raj yoga se kya hota hai, hum denominator ko
1: increase karte,
0: badhana shuru karte, numerator ko hum kuch nahi kar sakte. That's not in my control. And vartaman samay, jaise kaliyug ke samay mein hum chal rahe hain, to numerator jo hai wo to badhta hi jayega, lekin usne hi teevra gati se hame denominator ko bhi
1: इंक्रीज
0: कराना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता गया फास्ट तो स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा. सो आई जस्ट नीड टू फोकस राइट नाउ, माय फोकस इज ऑन द सिचुएशन, परिस्थिति परिस्थिति परिस्थिति को कैसे ठीक करना है, लोगों को कैसे ठीक करना है. फॉरगेट द सिचुएशन, पूरा फोकस अपना कर दें डिनोमिनेटर पे कि आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है. हमारा फोकस परिस्थिति के ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है जिससे हमारी आंतरिक शक्ति एक्चुअली उतनी कम होती जाती है और इसीलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है. फिर कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि जैसी सिचुएशन वैसा मुझे तनाव. तो फिर ये तो कहीं चॉइस रही नहीं कि तनाव क्रिएट करना ये कहीं मेरे हाथ में था. आई थॉट इट इज ऑलवेज आउटसाइड एंड दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन. जब तक मेरे टेंशन का रीजन बाहर है, आई कैन नॉट लीड अ टेंशन फ्री लाइफ. एंड इफ आई थिंक द कॉज ऑफ माई टेंशन इज आउटसाइड, देन आई एम जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट आई कैन नॉट बी फ्री ऑफ स्ट्रेस. एंड इसीलिए मेजोरिटी पीपल टूडे, आज इंडस्ट्री में स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं. हमारे पास बहुत सारी बुक्स आज मार्केट में हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात करते हैं. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम हैव टू से अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज नॉर्मल. तो क्या होता है, हर एक के अंदर वापस, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलीफ तो है कि स्ट्रेस तो नेचुरल है, और जब कोई इस तरह का हमें कह देता कि ये तो नेचुरल है, तो हम उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते कि ये तो नेचुरल है, और वो नेचुरल करते करते करते हमारा स्ट्रेस लेवल
1: बिल्कुल भाई थोड़ा जो है वो हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होगा. आपके लिए एक अलग क्वांटिटी होगी उस थोड़े की कि थोड़ा स्ट्रेस होना, मेरे लिए चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रेस हो जाए मैं उसे मान लूंगी यही थोड़ा
0: है. लेकिन एक होता है कि बीमारी थोड़ी है और एक है बीमारी
1: नहीं है.
0: तो ब्रह्मा कुमारीज में वी नेवर टॉक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज हम समझते स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हर एक ऑलरेडी कर रहा. हम कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, तनाव मुक्त जीवन, तनाव प्रबंधन नहीं, वो तो आप ऑलरेडी करते हैं. और बीमार रहना और बीमारी को मैनेज करना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी कर रहे हैं. बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, देन इट इज अ गुड क्वालिटी लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे तनाव का कारण मेरे अपने पास है. और कई बार क्योंकि ये भी समझते हैं कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो गए तो आप फिर बहुत लो हो जाएंगे, कंप्लेसेंट हो जाएंगे, आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपके जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं रह जाएगा, आप तो बस आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा. क्योंकि अगेन बिकॉज वी यूज्ड स्ट्रेस एज अ मोटिवेटर, तो हमने सोचा स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है, स्ट्रेस हमें पुश देता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर वो एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, और वो जब एड्रेनालिन सिक्रेट होता है तो हम ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं. और इसीलिए हम समझते थे कि स्ट्रेस होने से काम इफेक्टिव हो जाता है. डेफिनेटली जब स्ट्रेस होता है तो थोड़े समय के लिए वो काम बहुत इफेक्टिव होने लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट रिजल्ट्स इन अ बर्नआउट. इट्स लाइक वॉकिंग एंड रनिंग. आप थोड़े समय के लिए भाग सकते हैं, अगर हम कहें कि हम हर रोज भागें तो हमारा सारा काम जल्दी हो जाएगा. तो क्यों नहीं हम चलने की बजाय भागते रहें सारा दिन. Why don't we do it? हम ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो चलना बंद कर दो, भागना शुरू कर दो सारा दिन, सारा काम ऐसे ऐसे हो जाएगा. कितने देर भागेंगे? थोड़े टाइम के लगेगा, बस आई एम टायर्ड नाउ. सेम विद स्ट्रेस, जब स्ट्रेस को यूज हम करते हैं तो थोड़े समय के लिए काम जल्दी होता है, लेकिन थकावट ड्रेनेज बर्नआउट वो भी होता है. और उसके बाद मुझे जितनी देर आराम करना पड़ता
1: तो
0: राइट तो उससे रिजल्ट क्या निकला. और उसका जो डैमेज मेरे ऊपर हुआ, मन पर, शरीर पर, संबंधों पर, तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट.
1: और वो कई बार परमानेंट हो जाती है वो डैमेजेस. वो देखे गए हैं स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स हैं, चाहे वो रिश्तों की हम बात करें, चाहे अपने मन की बात करें, मानसिक स्थिति की बात करें, या फिर फिजिकली बात करें, वो परमानेंट डैमेजेस हैं.
0: आज एक बीमारी हो जाए उसको कितना टाइम लग जाता है. इनफैक्ट सम पीपल लिव विद दैट इलनेस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड एक बार वो बीमारी हो जाए वो अपने आप में उनके लिए तनाव का एक और कारण बन जाती है. तो तनाव कम तो नहीं होता, और उल्टा वो बीमारी लगने से मेरी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है. तो अगेन इट बिकम्स अ साइकिल. सो आई हैव टू स्टॉप इट वेरी अर्ली.
1: सिस्टर शिवानी, यही बात फिर आती है कि अगर मैं इसको जड़ से मिटा सकती हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ मेरे लिए पॉसिबल है, और जैसा कि हम हर बार कह रहे हैं कि वो हमारे ही हाथ में है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू टेक दैट स्टेप?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव, टू बिलीव कि स्ट्रेस अननेचुरल है, स्ट्रेस हार्मफुल है, स्ट्रेस मुझे अंदर से खत्म करता जा रहा है. यू नो, ये एक बीमारी है जो अंदर से हमें
1: खा रही है
0: और ये एकदम हमें खोखला करते जा रही है. और तनाव के बिना जीना सिर्फ संभव ही नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. व्हाई डोंट आई ट्राई इट आउट? यू नो, व्हाई एम आई चूजिंग टू लिव इन पेन? व्हाई डोंट आई ट्राई इट आउट कि व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव विदाउट स्ट्रेस? लेकिन तनाव क्योंकि एक आंतरिक डिस्टर्बेंस है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई ड्राइव द कार, आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से 15-20 साल मैं गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता. मुझे बिल्कुल ज़ीरो आइडिया है कि गाड़ी के अंदर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है उसका. अगर आज गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी बीच में बंद हो जाए, आई एम हेल्पलेस. आई विल हैव टू स्टॉप देयर एंड गेट आउट एंड कॉल समबडी,
1: वेट फॉर समबडी,
0: के यहाँ आकर जो करना है कर लो, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता. अब अगर मेरे साथ कभी ये हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, राइट, तो आई डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस. मुझे लगता है गाड़ी तो चलानी है, चला तो रहे इतने साल से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. कल अगर कहीं हो जाता है, माय इमीडिएट रिग्रेट विल बी कि मुझे थोड़ा सा आना चाहिए था. अगर मुझे थोड़ा भी आता होता, मैं अपने लिए इस टाइम अपने आप को हेल्प कर पाती, आई वुड नॉट बी डिपेंडेंट. सो आई से ओ गॉड, इफ आई जस्ट न्यू व्हाट टू डू विद द कार एट दैट टाइम. सिमिलरली हम जीवन चल रहे हैं बहुत समय से चल रहे हैं, एंड मोर और लेस हमारे लिए ऊपर नीचे को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें लगता है ये नेचुरल है, ये स्मूथ है. लेकिन अगर हम कहीं अटक गए और उस समय हमें ये नहीं पता कि अंदर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तब हम हेल्पलेस हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम अटक जाएंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि अपनी जीवन की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है. और कहीं ना कहीं इस यात्रा में तो हमें और कोई बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गाड़ी का मैकेनिज्म तो फिर भी सबको पता होता है, लेकिन मेरे अंदर का मैकेनिज्म मुझसे अच्छा किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बारे में सीखा ही नहीं. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो इन ऑर्डर टू नो हाउ इट वर्क्स इनसाइड, आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ. मुझे अंदर का प्रोसीजर बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए. जैसे मुझे बाहर का सब पता है कि ये बॉडी कैसे वर्क करती है, मुझे अंदर का प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ अंदर क्या क्या चलता है सारा दिन, क्या किस पर प्रभाव डाल रहा है, क्या किस चीज़ का रिजल्ट है, और अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो कहाँ पर चेंज करना है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और उसमें अगर हम सबसे पहली बात अगर वो देखें तो वो है अपने परिचय के. अपने बारे में भी तभी तो जानेंगे जब पहली बात अपने को जानेंगे कि मैं कौन हूँ. अपने अस्तित्व के बारे में जानना, हु एम आई. आज दिन तक हम अपने आप को जैसे ही मैं कहा, दिस बॉडी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, सो हु एम आई वॉज माई नेम, माई प्रोफेशन, माई डेजिग्नेशन, माई नेशनैलिटी, माई कास्ट, माई फैमिली नेम, ऑल दोज थिंग्स एंड माई बॉडी. एंड मैं इन सारी चीज़ों से बहुत अटैच थे. अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ तो मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है. यहाँ तक कि शरीर के लिए भी हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ. आज दिन तक सवेरे जब खड़े होकर शीशे में देखा, तो इस शरीर को देखा तो समझा ये ही मैं हूँ. जैसे ही इस शरीर को मैं समझा, तो ये भी बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ कि आज ये यंग है, कल ये ओल्ड हो जाएगा और परसों फिनिश हो जाएगा. और ये जब बिलीफ सिस्टम आया तो फियर ऑटोमेटिकली आ गया कि ये तो थोड़े दिन में पुराना होने वाला है, ये तो एक दिन फिनिश पे हो जाएगा. यू सी इफ पीपल स्टार्ट नोटिसिंग दे हैव वाइट हेयर और दे हैव रिंकल्स ऑन देयर फेस या उनकी स्किन थोड़ी सी यू नो वो ग्लो जा रही है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्रिएट्स लॉट ऑफ फियर, क्योंकि हमने समझना शुरू किया कि यही मैं हूँ. तो अगर यही मैं हूँ तो ये मुझे क्या हो रहा है. और जहाँ ये फियर आया तो फियर ऑफ डेथ पे, एंड फियर ऑफ डेथ इज द डीपेस्ट रूटेड फियर. और जहाँ फियर ऑफ डेथ है तो वहाँ हैप्पीनेस. स्ट्रेस इज फियर, एंड ये फियर हम लाइफ लॉन्ग अपने साथ कैरी करते तो हैप्पीनेस और पीस ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जहाँ वो बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, इसको चलाने वाले चैतन्य शक्ति, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी, आई एम पावर, एंड इफ आई एम एनर्जी देन आई कैन नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जिसकी वजह से फियर खत्म हो गया. क्योंकि जहाँ मैं पेरिशेबल हूँ, डिस्ट्रक्टेबल हूँ, तो मैं फिनिश हो जाऊंगी. लेकिन जहाँ मैं एनर्जी हूँ ये समझ में आया तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हु डाइज, मृत्यु किसकी होगी, इस शरीर की, मेरी नहीं. मैं तो आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, एंटिटी हूँ. अब ये भी शुरू में जब हम सुनते हैं तो ये एक बिलीफ है. पहले बिलीफ था मैं शरीर, अब परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो एक बिलीफ बना कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ. अब मुझे इस बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी एक बिलीफ ही हो जाएगा. मैं नाम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ. इट्स वन ऑफ द लेबल्स दैट आई हैव, बट आई विल हैव टू एक्सपीरियंस कि मैं ये नहीं, मैं इटर्नल, अजर, अमर, अविनाशी, मैं वो शक्ति, वो आत्मा हूँ. और जहाँ वो आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया तब भय फिनिश्ड, बिकॉज देन आई डोंट फियर द लॉस ऑफ एनीथिंग,
1: बिकॉज देयर इज नो लॉस, देयर इज कंटीन्यूअस लाइफ, कंटीन्यूअस एक्चुअली
0: कंटीन्यूअस. जब समझ में आया कि मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है, जब शरीर समझा अपने आप को, तो जब से पैदा हुए जब तक ये शरीर खत्म होता है ये इतना ही जीवन है मेरा, इतने में ही मुझे सब कुछ अक्यूमुलेट करना है. लेकिन इतने में ही कितना कुछ मेरे से चला भी जाता है, तो सारी जीवन उस भय में चलती है कि कहीं ये ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मकान ना चले, कितना डर. तो जहाँ डर है वहाँ टेंशन है. वेर एवर देर इज अ फियर ऑफ लॉस ऑफ एनीथिंग there will be tension, even if it is fear of loss of a person, कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए, वो भी fear है, तो वो tension.
1: और कहीं ना कहीं वो fear ये भी है कि जब ये loss होगा तो जो situation होगी उसे face कैसे करूँगा, you know, वो fear कि उसको face करने की क्षमता नहीं है मुझ में,
0: क्योंकि मैं dependent हूँ उनपे. क्यों? क्योंकि मुझे उनसे खुशी मिलती है. ये बहुत deep rooted है ना. जैसे मुझे tension आपसे मिलती है, गुस्सा मुझे आपके कारण मिलता है, तो खुशी भी
1: आप ही से मिलती है.
0: तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरी खुशी चली जाएगी. सी, मेरे आंतरिक फीलिंग्स की सारी जिम्मेवारी मैंने बाहर ठहराई हुई है, तो मेरी खुशी के जो कारण है वो भी सारे बाहर है. हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ फैमिली, लव इज बिकॉज ऑफ पीपल, हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ पोजेशन, happiness is because of position, because of status. तो अगर मेरी happiness इन सब पे dependent है, तो इनमें से अगर कुछ भी गया तो मेरी happiness चली जाएगी. तो I don't want to lose my happiness. तो मैं डरती रहती हूँ कि कहीं इनमें से कोई चला ना जाए, और डर मतलब stress. तो सबसे beautiful realization जो परमात्मा ने आकर हमें अपने बारे में ही याद दिलाया कि आप ही भूल गए हो कि आप कौन हो, आप ये सब नहीं हो, आप ये सब को यूज करने वाले, इस सब को चलाने वाले, आप एक beautiful conscient energy हो. यू आर अ प्योर बींग एंड योर एनर्जी विच नेवर एवर गेट्स डिस्ट्रॉयड. और इसको जब हम सिर्फ समझ नहीं लेते, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और जिस आत्मा के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाए उसको फिर
1: बाकी सारे फियर
0: और कोई डर नहीं होता, और फिर उसको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे टेंशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि डर नहीं है ना, डर नहीं है तो टेंशन किस बात के, डर वॉज पैकेज्ड विद टेंशन। तो मैं आत्मा शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। हर रोज कुछ क्षणों के लिए अपने आप से समय निकालकर अपने आप से ये बात करें और अपने आप को याद दिलाएं, क्योंकि भले ये सत्यता है लेकिन हम भूल चुके हैं। तो सत्यता को ही मुझे फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तो हर रोज थोड़ा समय निकाल कर, वी कैन डू इट राइट नाउ, थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आस्क माई सेल्फ कि ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं शरीर को यूज करती हूँ, इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, देखती हूँ, लेकिन करने वाला कौन? ये करने वाला मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। आई एम पावर, इट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग हेयर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आई एम एनर्जी, आई चूज कि मुझे क्या सोचना है, क्या फील करना है, क्या महसूस करना है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो डर किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं अमर हूँ तो मेरी मृत्यु
1: नहीं
0: हो नहीं सकती। आई एम इटर्नल। तो ये अगर हम हर रोज बार बार साइलेंस में अपने साथ समय निकाल कर ये बात अपने आप को बार बार दिलाएंगे याद, तो थोड़े दिन के बाद हमें एक्चुअली उसका अनुभव
1: हो जाएगा। डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि अनुभव होने के बाद ही, जब सिचुएशन, एक बार जब अपने आप को पहचान लिया तो फिर जब सिचुएशन आएंगी जहाँ तनाव हम क्रिएट करते हैं, उन्हें भी जो आंतरिक शक्ति वाली बात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसे हम हैंडल करते हैं।
0: क्योंकि वो आप सुबह जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर सारा दिन में जब आप कॉन्टैक्ट में आएंगे सिचुएशंस और लोगों के, आप बार बार अपने आप को ये याद दिलाएंगे मैं आत्मा हूँ, इसको मैं यूज कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये डेजिग्नेशन ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है। तो जितना बार बार ये रिमेम्बरेंस, वी कैन डू इट प्रोबेबली 100 टाइम्स इन अ डे, क्योंकि जितनी ज्यादा बार हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे वो स्मृति पक्की होती जाएगी। तो बार बार मैं आत्मा हूँ, ये मेरा है, तो उससे मेरी डिटैचमेंट अपने आप होती जाएगी और उसको खोने का डर वो खत्म।
1: तो चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो इवन आपका लव्ड वन हो, जैसे सपोजिटली हम बहुत ये कहते हैं कि उनके बिना, उनके ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड कर रही है मेरी। सिस्टर शिवानी, तनाव मुक्त पूरी तरह से हो सकते हैं हम, स्ट्रेस फ्री लाइफ को हम बिल्कुल अपना सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने कहा कि खुद को पहचानना, खुद की पहचान। खुद की पहचान करके किस तरह से जब सिचुएशन सामने आती है जहाँ स्ट्रेस है वो हमें हेल्प करेगा, हम उन सिचुएशंस के बारे में भी जानेंगे अपने आने वाली कड़ियों में। लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

प्रसिद्ध देशभक्त और जीवन पर्यंत भारत की आजादी के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मुरसान नामक जगह पर हुआ था। देशभक्ति की भावना के कारण महेंद्र प्रताप चाहते थे कि जिस तरह भी संभव हो ब्रिटिश हुकूमत को देश से उखाड़ फेंका जाए। इस काम के लिए उन्होंने युवकों को तैयार करने के उद्देश्य से 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय नाम की राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित की और अपनी जमींदारी की संपत्ति का एक बड़ा भाग इसके संचालन के लिए अलग कर दिया। इस संस्था ने अनेक स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए थे।

राजा महेंद्र प्रताप का विश्वास था कि अंग्रेजों के विरोधी राष्ट्रों की सहायता लेकर देश को आजाद कराया जा सकता है। इसलिए सन 1915 में वे भारत से बाहर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश के अंदर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां चलाना संभव नहीं था। उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान और अन्य देशों की यात्राएं की। अफगानिस्तान में उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के राष्ट्रपति और मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में वे गदर पार्टी के संपर्क में आए।

विदेशों में अपने भ्रमण के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने हर जगह अंग्रेजों की भारत संबंधी नीति के विरोध में प्रचार किया। भारत में रहते हुए भी देश के जागरण के लिए उन्होंने दो पत्रों का प्रकाशन किया था, हिंदी में प्रेम और हिंदी और उर्दू में निर्बल सेवक। विदेश में उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। वर्षों तक देश के लिए विदेशों में भटकने के बाद राजा महेंद्र प्रताप 1945 में भारत आए। उन्होंने 1946 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में भाग लिया। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा के सदस्य चुने गए। जीवन के अंतिम दिनों में वे विश्व समुदाय की और सब धर्मों की एकता के पक्ष में प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना नाम ही पीटर पीर प्रताप रख लिया था। राजा महेंद्र प्रताप का देहांत 29 अप्रैल 1779 को हुआ। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधा अनुपम ने।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. आज सारा दिन awareness and checking, कौन ज्यादा powerful है, बातें, situations or me, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: तुम एक लाइन पढ़ रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही है. विद इन योर सेल्फ इज अ स्टिलनेस अ सैंक्चुरी टू विच यू कैन रिट्रीट एट एनी टाइम एंड बी योर सेल्फ. क्या ये योर सेल्फ आत्मा है? हाँ, तो उसके अंदर सैंक्चुरी अगर होती, रिट्रीट में कर सकता हूँ तो कभी का कर लिया होता.
2: हम बाहर रिट्रीट्स पे जाते हैं. आप देखो, पूरे साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस फेस करते करते उतार चढ़ाव बाहर, उतार चढ़ाव अंदर, और सब कुछ होते हुए फिर हम कुछ महीनों के बाद कहते हैं आई जस्ट नीड टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस फॉर 5 days. मुझे इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा किनारा करके, अपने आप को रिचार्ज करके, मुझे सब चीजों से थोड़ा दूर एक रिट्रीट के लिए जाना है 4-5 दिनों के लिए. ऐसा करते हैं हम, और हर एक अलग अलग जगह पे जाता है उसके लिए. लेकिन हम जाते हैं एंड वो 5 दिन में हम क्या करते हैं? हम बाह्य सब चीजों से विड्रॉ करके, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने जीवन के चैलेंजेस से विड्रॉ करके, हम अपने आप के साथ 5 दिन स्पेंड करते हैं. राइट? हम 5 दिन 10 दिन की मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं. उसमें हम अपने थॉट्स को देखते, फीलिंग्स को देखते, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिएट किया उसको चेक करते, किस चीज को चेंज करना, किस चीज को क्लीन करना है वो देखते हैं, हायर सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं. वो सब हम करते हैं उस 5-10 दिन की रिट्रीट के अंदर. वो सब करके हम बहुत एनर्जाइज्ड, रिचार्ज्ड फील करते हैं, और ये सब करके हम फिर वापस आते हैं दुनिया के अंदर, जो आपने कहा, उस जिम्मेवारियों की दुनिया के अंदर, उस चैलेंजेस की दुनिया के अंदर. राइट?
1: वर्ल्ड में
2: कुछ दिनों तक उस रिट्रीट का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है. है ना, कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं करते, जिसको हम कहेंगे हम थोड़ा सा शांत वाली स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अभी अभी वो चीज का अनुभव करके, वो स्थिति क्रिएट करके अब परिस्थिति में आए हैं. ठीक? तो कुछ दिनों के लिए हमारा व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ रहता है.
1: कुछ दिनों होता है किसी के लिए, कुछ घंटे होता है किसी के लिए, और किसी के लिए तो रिट्रीट का बिल देते समय झगड़ा हो जाता है कि मैंने ये नहीं यूज किया था, ये किया था, आपने कितने पैसे ले लिए, ये किया वहां से, फिर गाड़ी नहीं मिली, वो टैक्सी वाले को दिया था, आपको सो ये ब्रेकफास्ट फ्री था, आपने चार्ज कर दिया, कितने झगड़े देखता हूं मैं रिट्रीट सेंटर्स पे.
2: विच मीन्स किसी के लिए पावर कुछ मिनट्स के लिए रहती है ना, किसी के लिए पावर कुछ घंटों की रहती है, और किसी के लिए पावर कुछ दिनों की रहती है.
1: ये घंटे और दिनों भी नहीं है, ये कनेक्टेड टू मनी है. जैसे इसका पैसे का मामला आया देने के टाइम पे,
2: हाँ,
1: ये आदमी को डिस्टर्बेंस शुरू हो गया.
2: कनेक्टेड टू मनी, कनेक्टेड टू मनी इज फाइन, लेकिन हम वो ही, इट डजंट मीन के हम अपना पैसों में नुकसान कर देंगे, लेकिन इट जस्ट मीन्स कि हम अगर ग्राउंडेड हैं, पावरफुल हैं, हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह से क्रॉस करेंगे. इट डजंट मीन कि कोई मुझे चीट कर रहा है एंड आई से आई एम जस्ट कम बैक फ्रॉम अ रिट्रीट, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा मन नहीं है इसमें सॉर्ट आउट करने
1: का. स्टेबिलिटी की बात करो कि मैंने कहा वहीं हिल जाते हैं लोग.
2: हाँ, वहीं हिल जाते हैं ना,
1: रिसेप्शन पे हिल जाते हैं.
2: राइट? किसी का डिस्टर्बेंस तुरंत, आपने कहा पेमेंट करते ही हो गया, किसी का डिस्टर्बेंस कुछ घंटों के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचते हुए या घर पहुंचने के बाद कुछ पता चले ये 10 दिन में क्या क्या हुआ था, और हम डिस्टर्ब हो गए, वी जस्ट लॉस्ट इट दैट टाइम. तो कोई कुछ मिनट्स बाद हार जाता है परिस्थिति से, कोई कुछ घंटों बाद, और कोई कुछ दिनों बाद, और किसी का इफेक्ट काफी लंबा चलता है. लेकिन जो ये आपने अभी पढ़कर सुनाया कि यू हैव अ सैंक्चुरी वे यू कैन रिट्रीट इन टू एनी टाइम दैट यू वॉन्ट, क्योंकि ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं विच इज वेरी यूजफुल, लेकिन ये हम हर बार हर रोज नहीं कर सकते ना. हमें अगर हर बार हर रोज पावरफुल रहना है, अभी क्या हो रहा है, हम कुछ दिनों में वो करते हैं, लेकिन आकर परिस्थिति से फिर हार जाते हैं, क्योंकि हमारी रिट्रीट उतने ही दिन की थी। लेकिन अगर हम एक ऐसा मेथड क्रिएट करें जिससे जो हम वो रिट्रीट में करते थे कि चेक करना, क्लीन करना, साइलेंस में हो जाना, अगर हम कुछ ऐसी मेथडोलॉजी क्रिएट करें कि वो रिट्रीट हम कभी भी कहीं भी बैठे हुए हर रोज कर सकते हैं, तो जो उस रिट्रीट का इफेक्ट हम पर पड़ रहा था वही इफेक्ट हम पर रोज पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो रिट्रीट हम रोज करने लग जाएं, तो डोंट यू थिंक द सोल विल बी मोर पावरफुल? इट्स गेटिंग अ चांस टू रिट्रीट एवरी डे। ये हर रोज हम कर सकते हैं ना,
1: लेकिन उसका रास्ता मालूम है, रिट्रीट का इसका नहीं मालूम।
2: हम जब मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं, करते क्या है हम वहां जाके, हम सारी चीजों से विड्रॉ करते हैं, हम सिर्फ अपने पर फोकस करते हैं। यही करेंगे रिट्रीट में जाके, यही तो करेंगे ना, अपनी थॉट्स को चेक करते हैं, कहां क्या मुझे कौन सी इमोशनल ब्लॉकेज है, कौन सी बात मैंने पकड़ के रखी हुई है, कौन सी चीज को मुझे अब छोड़ना पड़ेगा अंदर।
1: एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो साल में एक बार कहीं चला जाता है जिसका एड्रेस भी किसी को नहीं मालूम है, और फोन घर पे छोड़ के जाता है।
2: राइट,
1: ऑफिस पूरा बोलता है वी डोंट नो सर। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है।
2: हाँ।
1: बोला मुझे इतने ऑपरेशन करने पड़ते, इतना मुझे वो है, आई नीड दैट।
2: यस, आई नीड दैट, सो आई नीड दैट टाइम फॉर माइसेल्फ, जहां एकदम सब चीजों से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, ये साल में एक बार कर सकते हैं, साल में दो बार कर सकते हैं, और कितनी बार करेगा कोई जो बहुत जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑक्यूपाइड है। लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो कुछ दिनों के लिए बहुत काम, पीसफुल और रिलैक्स्ड हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर 365 डेज हम स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टोल ऑन आवर सेल्फ। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए भी हम इस तरह से विड्रॉ कर लेते हैं, वो हमें एट ईज ले आता है, माइंड को भी, बॉडी को भी। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो हम वापस उसी सिचुएशन में फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन मींस कि हर रोज थोड़ी देर के लिए अपनी रिट्रीट पर चले, विच मींस थोड़ी देर के लिए सब जिम्मेवारियों से, फोन से भी आपने कहा तो फोन से भी, सारी बातों से कुछ मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना जो निकाल सके, रोज 15-20 मिनट के लिए भी अपने फोन, अपनी जिम्मेवारियां, अपने लोग, अपनी सब सिचुएशन से विड्रॉ करके अंदर रिट्रीट पर चलें। अगर एक साल का 365 डेज के लिए हमें 10 डेज जाना पड़ता है, 5-10 दिन, हम 365 दिन की चार्जिंग के लिए 5-10 दिन जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि 5-10 दिन की चार्जिंग 365 दिन पर इफेक्ट नहीं करती है, इट डजंट स्टे दैट लॉन्ग, तो क्यों ना हम 24 घंटे की चार्जिंग के लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर दें, 15 मिनट निकालना शुरू कर दें। दैट इज मेडिटेशन, कि सब चीजों से विड्रॉ। उस केस में हम फिजिकली विड्रॉ हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। इस केस में हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जहां हैं वहीं अपनी एक जगह पर बैठकर, लेकिन सारी बाहर की चीजों से कुछ मिनट्स के लिए विड्रॉ कर यहां बैठ जाते हैं, चेकिंग, क्लीनिंग। कई बार क्या होता है, सारा दिन में इतना कुछ हो रहा है, माइंड इतना कुछ क्रिएट कर देता है कि हम बाहर की सिचुएशन से तो फिर भी डिटैच हो जाते हैं। जैसे रात को सोए तो हम सिचुएशन से डिटैच हो जाते हैं, लोगों से भी डिटैच हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी इमोशंस, अपने यहां जो चल रहा है उससे डिटैच नहीं होते, उसी में उलझे रहते हैं, इसलिए रात को नींद भी अच्छी नहीं आती है। अगर हम कुछ मिनट्स के लिए सिर्फ लोगों से और सिचुएशन से नहीं, अपनी इमोशन से भी डिटैच होने का प्रयास करें कि ये जो मुझे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो मुझे इतना हर्ट क्रिएट हो रहा है, ये मुझे जो बात इतनी बुरी लग रही है, ये जो बात मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट इससे भी अलग होके इसको भी ठीक से देखने की कोशिश करें। ये क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे की क्या थॉट है, व्हाट डू आई वांट, व्हाट बिलीफ सिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब।
1: ये करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जब माइंड डिस्टर्ब्ड है तो ये आप जो बातें कर रही है वो थॉट आएगी कैसे कि इसके पीछे क्या है। जब आप उसी के अंदर ही हैं, जो सपने में आदमी देख रहा है सपना और रो रहा है कि देखो मेरा बाप मर गया, तो जागा हुआ है वही उठा सकता है, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है।
2: आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपने सपने को साक्षी होकर देखा है?
1: हाँ,
2: आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया?
1: बहुत बार।
2: कि सपना भी चल रहा है?
1: हाँ,
2: मतलब वो एक सीन भी चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में
1: और मैं देख भी रहा हूँ और मैं आपको बोल भी रहा हूँ ये सपना है
2: ना। ये क्या है? ये है साक्षी होना अपने ही थॉट से।
1: ये अभी भी शुरू हुआ है साल भर से।
2: तो साक्षी किस चीज से हुए? घुसे भी उसी के अंदर है, सपना भी अपना ही है
1: और अपने आप को बोल भी रहा हूं,
2: अपने आप को देख भी रहे हैं। अच्छा, उस सपने के अंदर भी हो सकता है हम ही है।
1: हाँ,
2: ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी सपने में जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी वो सपने के कैरेक्टर्स में हम खुद भी हो सकते हैं
1: जी,
2: राइट। फिर भी हम उस कैरेक्टर को रोल प्ले करते हुए भी खुद अपने आप को देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपने ही थॉट से खुद डिटैच होकर अपने आप को ही देखा
1: और अपने आप को बोला भी।
2: हाँ, ये सपना ही है। हाँ, मतलब अगर उस सपने में कुछ फियर क्रिएट हो रहा था या कुछ क्रिएट हो रहा था,
1: जाके बोला ही सपना है,
2: तो अपने नहीं, कई बार बिना जागे भी हो सकता है ना, हो सकता ना,
1: वो भी हो सकता है।
2: हाँ, कि दिस इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, दिस इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि दिख रहा है सपना है, सपने की इमोशन भी दिख रही है, सपने के अंदर की सीन की इमोशन भी दिख रही है, कि सपोज फियर है, कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ और इतने प्यार से अपने आप को कह रहे हैं इट्स ओके, ये सपना है।
1: परिस्थिति को, रिलेशनशिप को
2: इसको सपना नहीं कह सकते,
1: नहीं सपना कह सकता,
2: ये सपना है भी नहीं ना,
1: तो वहां तो सच्चाई में हो जाता है। तो उस डिस्टर्ब्ड में,
2: यस,
1: आप कह रही हैं कि उस डिस्टर्ब्ड माइंड में भी अपने आप को समझाओ,
2: बट करना ये वाला है। अब इसको अवेक स्थिति में देखेंगे, करनी ये वाली प्रैक्टिस है,
1: ये जो हो रही है ऑटोमेटिकली।
2: हाँ, हो रही है ना, बट हमने अनुभव कर लिया ना कि कैसे होती है, सो वी नो हाउ इट फील्स,
1: बट उसका ना स्किल आया आपको ना आपने किया, इट हैपेंड,
2: इट डिडंट हैपन। पहले क्यों नहीं था, एक साल पहले?
1: वो नहीं मालूम है मुझे।
2: आपने कहा ना एक साल से होने
1: मैंने
2: लगा,
1: कोशिश तो नहीं की, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ मेडिटेशन मे बी।
2: आपने कहा ना पहले नहीं था अभी होने लगा। हाँ, एक साल से मींस सारा दिन में धीरे धीरे जितना हमने यहाँ के क्लटर को, नॉइज को, अपने रिएक्शंस को, अपनी सोच दृष्टि वृत्ति को ज्ञान से और मेडिटेशन से धीरे धीरे जैसे जैसे हमने क्लीन करना शुरू किया, हमें ये गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा। अब जिस आत्मा का सपने में अवेयरनेस लेवल इतना अच्छा होगा, तो जागृत अवस्था में अवेयरनेस लेवल नहीं होगा, ये तो सपने में है। जब हम डीप स्लीप में है, नहीं, अब उसको करके देखना है। ये गिफ्ट्स हमें मिलेंगे, मतलब रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, ये कि जो हम सारा दिन में साइलेंट कर रहे हैं ना माइंड को, इवन 10% अगर हम अपने मन को पहले से साइलेंट कर पाए हैं, 10% भी, पहले कितना सोचते थे किसी बात के बारे में, अब ओके चलो ठीक है, फॉरगिव, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो पुरानी बात हुई। अब जितना ये थोड़ा थोड़ा हम करते जाते हैं, तो मन की क्लटर, ये इनर जो नॉइज है, ये कम होने लगती है। जितनी ये कम होने लगती है, अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। अब यही सीन को जागृत अवस्था में देखते हैं, व्हेन वी आर अवेक। राइट नाउ बट व्हेन वी आर डूइंग, सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, चैलेंज नहीं है, हम सिर्फ सुबह उठे हैं ये करने के लिए, ठीक है, नॉट इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन। हम सुबह उठकर हम अगर अपने लिए एक टाइम फिक्स करें कि रोज 15 मिनट सुबह मुझे अपने लिए वो रिट्रीट का टाइम निकालना है, ठीक है। अब हम बैठे, साइलेंट हो गए, मतलब सारी बाकी टेक्नोलॉजी और चीजों से तो पहले अपने आप को दूर कर लिया, लोगों से भी अपने आप को दूर कर लिया, अब साक्षी होकर अपने इमोशंस को देखते हैं, जो हम सारा दिन में भी देखते हैं, ये जो मुझे फील हो रहा है इसके पीछे की क्या डिजायर है, इसके पीछे का क्या बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे की कौन सी अटैचमेंट है, इससे इसके पीछे की मेरी कौन सी रॉन्ग थिंकिंग है जो मुझे, मेरे अंदर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है। यही तो रिट्रीट है, ये रिट्रीट है, और ये सब चीज से धीरे धीरे जब हम साइलेंट हो रहे होंगे तो फिर हम वो प्योर पावरफुल थॉट जो मेडिटेशन में क्रिएट करते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, माय ओरिजिनलिटी इज आई एम अ प्योर पावरफुल पीसफुल सोल. तो हमने अपने आप को अपने ही इमोशन से भी, अपने ही अंदर के टर्मोइल से भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया. ये डिटैच करके हम अपनी सिचुएशन को और अपने ही इमोशन को एक बेटर पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे. जब हम डिटैच करें बिना देखते हैं तो हम अपने ईगो के थ्रू ही सब कुछ देख रहे होते हैं. लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये आई एम सीइंग एवरीथिंग थ्रू माय ईगो, सब कुछ. जब हम 5 मिनट भी ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं, तो हम ईगो से नहीं, इन सारी चीजों से भी डिटैच होकर अपने ही इमोशंस को भी देखते हैं. जब हम उसको देखते हैं तो धीरे धीरे फिर हम अपने आप से पूछते हैं, बट फाइनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मुझे इनेटली क्या चाहिए जीवन में, यहाँ व्हाट इज माय प्रायोरिटी,
1: क्या चाहिए प्रायोरिटी लाइफ में,
2: वो हमें पूछना होगा ना उस टाइम अपने आप को. उस साइलेंस
1: चाहिए ना, सुख शांति हैप्पीनेस,
2: ये सबको भी छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए. अगर मैं डिटैच नहीं होती और उस समय मैं अपने आप से पूछूं मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे चाहिए कि ये मुझे समझे, मुझे चाहिए कि ये मेरा कहना माने, मुझे चाहिए कि जो मैंने इतनी मेहनत की है उसकी अप्रिसिएशन मुझे मिले, मुझे चाहिए कि अप्रिसिएशन नहीं मिले कम से कम क्रिटिसिज्म तो नहीं मिले, ये मेरी चाहिए की लिस्ट थी. लेकिन जब ये इमोशन से भी 2 मिनट के लिए पीछे हटते हैं एंड फिर अपने आप से पूछते हैं, लेकिन फाइनली मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट.
1: कई बार मन कहता है गुस्से में आके मुझे कुछ नहीं चाहिए, लीव मी अलोन,
2: व्हिच मींस दैट टाइम आई एम डिस्टर्बड बाय माय ओन थॉट्स, मुझे मेरा मन ही सबसे ज्यादा तंग कर रहा है.
1: लीव मी अलोन, आई वांट टू बी क्वाइट, आई वांट टू लॉक द रूम, ऑल ऑफ यू गेट आउट,
2: ऑल ऑफ यू, लेकिन कौन,
1: माय सेल्फ आल्सो, भाई बहन भी, रिश्तेदार भी, सब.
2: यस, तो उनसे तो हो सकते हैं ना, लेकिन इससे करना पड़ता है प्यार से. ये इसको डांट के तो ये छोड़ के नहीं जाएगा. दूसरों को डांटेंगे अगर, सपोज हम किसी में गुस्सा के कहें रूम से बाहर जाओ, वो चला जाएगा फटाफट रूम से बाहर, कहेंगे मुझे छोड़ दो आधा घंटा, कोई मेरे से बात मत करना, सब लोग चले जाएंगे बाहर, आधा घंटा कोई बात नहीं करेगा. लेकिन मन के साथ ये वाला तरीका काम नहीं करता ना. अपने मन को हम इस तरह से नहीं कह सकते, कीप क्वाइट फॉर हाफ एन आवर, मुझे बात नहीं करनी, वो नहीं मानने वाला है, वो और जोर से बात करेगा.
1: मैं उसी डिस्टर्ब सिचुएशन में गुस्से में और रोना चाहता हूँ.
2: तो अगर हम अभी और डिस्टर्ब और उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो हमारी ताकत कम हो रही है ना अभी और, विच मीन्स आई वॉन्ट टू लिव इन दैट पेन मोर.
1: यस,
2: राइट,
1: ओके. सो देन मेरे को होने दो, दर्द होने दो, शक्ति कम होने दो,
2: लेकिन फाइनली कभी तो ठीक करना ही पड़ेगा उसको.
1: अपने आप होगा,
2: अपने आप नहीं होगा. एक दो दिन क्यों चाहिए, और एक दो दिन बाद भी वो अपने आप ठीक नहीं होता है. ठीक करने के लिए उस थिंकिंग के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा. अपने आप जो एक दो दिन में होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो बोलना रोना थोड़ा सा बंद कर देगा.
1: क्या वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रहा है आपसे, आपके लेक्चर से?
2: कौन विड्रॉ नहीं कर रहा?
1: मन मेरा
2: विड्रॉ कर रहा है ना. वो अपने ऊपर इस टाइम वर्क नहीं करना चाहता, ये कर रहा है. वो कहता है मैं मेहनत करने का मन नहीं है. इट्स लाइक आई एम वीक फिजिकली, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए. कोई मुझे आके कहता है प्यार से वॉक करो, बोलो मुझे मन नहीं है वॉक करने का, बीमार तो बीमार, कोई बात नहीं. हम ऐसा करते हैं ना कई बार, दुखता है तो दुखता है, जाने दो, मेरा मन नहीं है करने का. अभी सामने वाला बहुत समझाएगा, बहुत कुछ कहेगा, मतलब मेरे को छोड़ दो, कमजोर तो कमजोर, देखा जाएगा बाद में क्या होता है. मैंने नहीं अभी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी. लेकिन वो करने से हम भले कर सकते हैं, वो कुछ साल भी कर सकते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तो हमें अगर उस वीकनेस से निकल के आना है तो हमें वॉक तो करनी ही पड़ेगी. नहीं तो वीक एंड वीक एंड वीक, जो आपने कहा छोड़ दो अपने आप हो जाएगा, ये छोड़ दो अपने आप तो होगा नहीं.
1: एक ना एक दिन समझ जाता है ना.
2: एक ना एक दिन क्या समझ जाता है? एक दिन समझ नहीं जाता. एक ना एक दिन उसको मेमोरी में चुप करा के रख देता है और उस हर्ट को वहां रजिस्टर करके रोक देता है. समझ नहीं जाता, समझने के लिए तो उसको समझाना पड़ेगा,
1: उसके ऊपर दूसरे थॉट नई नई चीजें आती
2: जाती, नई चीजें आती नीचे दब जाती, और लेकिन फाइनली वो फिर उठेगा, और अंदर तो चोट है ही, उसके ऊपर और कोई बात और कोई बात, फिर जितनी बातें और आएंगी, क्योंकि चोट के ऊपर आई हुई बात है, दर्द ज्यादा होगा ना। इट्स लाइक एक्सरसाइज नहीं की, फिर कुछ गिरे, फिर कुछ हुए, फिर कुछ बीमारी हुई, तो इफेक्ट तो ज्यादा होता जाएगा ना। एंड फिर कुछ भी बात आई तो वो वाली चोट फिर उठ जाएगी,
1: इम्यूनिटी की जैसी कमी हो जाती है, लो हो जाती है।
2: तो टालने से हीलिंग नहीं होगी। बहुत बार दुनिया में कहते हैं टाइम विल हील, टाइम विल नॉट
1: हील। टालने से हीलिंग नहीं होगी, ये भी उस वक्त मन को कौन समझाए जब इतना डिस्टर्ब्ड है मन। तो
2: टालने से हीलिंग नहीं होगी, उसको बोलना पड़ेगा। फाइनली जब वो रो ले जितना उसने रोना था, सपोज उस टाइम नहीं भी मन कर रहा, वो रो रो के जब थक जाए, अब मतलब अब तो बैठो, अब तो कर ले, हो गया तुम्हारा रोना, जितना रोना था तुमने बोल लिया, अपने आप को जितना बोलना था, जितना गलत
1: सोचना,
2: लेकिन फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही, अपने आप नहीं हो जाएगा, दिस इज द थिंग। फिर भी उसको रिजोल्व करने के लिए उसके साथ बैठना तो पड़ेगा ही, एक दो दिन तीन दिन में वो अपने आप जाएगा नहीं, इट्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड इनसाइड। अगर हम उसकी हीलिंग को पोस्टपोन करते हैं, या हम पोस्टपोन भी नहीं करते, हम कहते हैं अपने आप हील हो जाएगा, पेन द वाउंड इज ओनली गेटिंग अक्यूमुलेटेड। अगर उस तरह से उसको सिर्फ दबा देंगे, और फिर ऐसी एक बात नहीं ना, कई बातें आती हैं, तो बहुत सारी बातें अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, और वो घाव कई बार क्रॉनिक बन जाएगा। इसलिए अगर हम ये रोज करें, मेडिटेशन में बैठे, रोज बैठे, मन परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, उदास है, रो रहा है, नेवर माइंड, फिर भी बैठे, जैसे कभी मन नहीं है, थकावट है, फिर भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका उनको बेनिफिट होता है।
1: कई बार मुझे बुखार बुखार जैसा लगता है, बॉडी एक बार मन नहीं कर रहा है, तो मैं धूप में जाके गोल्फ खेलता हूँ, दबा के खूब पसीना आता है, खूब बॉडी हिलती है, एकदम फ्रेश होके वापस आ जाता है।
2: राइट, अब कोई कहेगा नहीं नहीं, कोई कहेगा बुखार है, थकावट है, तो खेलना नहीं चाहिए, और आपने कहा थकावट लग रही है, एक ऑप्शन है,
1: फीवरिश लग रहा है,
2: हाँ, लेकिन उसी में जाके खेल लिए तो वो सारे टॉक्सिन्स निकल गए ना, मींस अंदर का कचरा सारा निकल गया, वो खेलने से निकला, क्लेंजिंग ना, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। अब यही अगर हम कहें मेरा मन उदास है, मेरे से होती भी नहीं मेडिटेशन, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कोई चीज को रिजोल्व नहीं करना है, जो है रहने दो अभी यहाँ पर, एनीवे इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, ये दर्द तो जस्टिफाइड है मेरा, तो वो टॉक्सिन फिर अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स देन इनसाइड। और यही अगर हमने कहा नहीं मुझे फिर भी बैठना है, मुझे फिर भी अपने ये 15 मिनट निकाल के बैठना है, धीरे धीरे धीरे वो मन करने लगेगा जो हम उसको करने के लिए कह रहे हैं। पहले दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, लेकिन फाइनली करेगा।
1: छोटे से बच्चे से 2 साल के बेटे को मैंने उसको बोला, बच्चे को, कि भाई अभी रो के मांगना छोड़ दो, अब हंस के मांगो, प्यार से मांगो, रोते क्यों ये चीज। मैंने बोला अच्छा थोड़ी लगता है, फिर उसको एक्टिंग करके दिखे तुम ऐसे लगते हो, तो मैंने अब आपका रोना हो गया, वो बोलता है मुझे अभी और रोना है, मुझे रोने दो,
2: भाई हमारा मन जैसा है ना, मुझे और रोना है, मुझे
1: अपने ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पुरानी बात,
2: ये सी। अब फिर वो कैसे लगा होगा आंसर उस टाइम की, और क्योंकि वो इनोसेंस है ना, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो बच्चा कहते हैं नहीं मेरे को अभी थोड़ी देर और रोना, फिर मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ठीक भी किसने ही करना है अपने आप को, मैं नहीं करना है अपने आप को, और कुछ नहीं होने
1: तो
2: वाला।
1: मेरा भी मन अगर ऐसे बोले नहीं मेरे को और अभी उदास रहना है, रहने तो बाद में ठीक हो जाऊंगा,
2: लेकिन बाद में भी ठीक करना पड़ेगा, हो नहीं जाएगा अपने आप।
1: इस उस पोजीशन में तो आ जाएगा, जैसे मुझे बीमारी है, मैं बोलता हूँ आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा,
2: उस पोजीशन में
1: मुझे सफर करने
2: दो, 3 दिन के अंदर 4 सिचुएशंस और आएंगे,
1: क्या
2: बातें नहीं आएंगी, और
1: आने दो
2: कहीं कुछ, तो हम वल्नरेबल स्थिति में ना, तो वल्नरेबल स्थिति में दूसरी बातों का असर, हमारी एक बात एक नहीं रहती ना, फिर हमें और किसी से इरिटेट हो जाते हैं, और किसी पे गुस्सा करते
1: वो भी होगा,
2: तो वो होते होते मतलब चोट तो और बह रही है, बढ़ती जा रही है,
1: तो उस टाइम पे जिद करते मतलब होने दो, ठीक है मैं अकेला रह जाऊंगा, छोड़
2: जाएंगे। बच्चा अगर जिद करता ही जाएगा तो आप गिव अप तो नहीं करेंगे उसके ऊपर, आप उसको प्यार से बिठा के मना के समझा के फाइनली तो चुप कराएंगे, हंसाएंगे ना, खुश कराएंगे ना उसको।
1: वो बच्चा थोड़ा ही है,
2: मन बच्चा है ना, उसके साथ भी ऐसे ही करना है। और ये अगर हम रोज करें, जब कोई सिचुएशन भी नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम, वी आर डूइंग मेडिटेशन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, पहले तो वो करना है। कि डेली मॉर्निंग अगर हम वो करने लगे तो डेली मॉर्निंग की प्रैक्टिस जो आपको सपने में दिखने लगा है ना डिटैचमेंट, डेली मॉर्निंग बैठने से धीरे धीरे हम अपने इमोशन से डिटैच होकर अपने इमोशन को देख पाएंगे। आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस विल नॉट बी समवन आउटसाइड। पहले हमारा आंसर होता था आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में कोई व्यक्ति या सिचुएशन थी। जब हम उस पर वर्क करते हैं आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, उस फिल इन द ब्लैंक में अपनी थिंकिंग की लाइन आएगी कि कौन सी थिंकिंग की वजह से आई एम हर्ट, कौन सी अटैचमेंट की वजह से आई एम हर्ट, कौन से बिलीफ सिस्टम की वजह से आई एम हर्ट, अपने पे फोकस आ जाएगा।
1: सिस्टर आपकी ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब रियल लाइफ में जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि अभी मुझे और रोना है, मैं वहां हंसता भी हूँ, उसके ऊपर मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसको कोई गेम दिखाता हूँ या टीवी लगा के दिखाता हूँ या उसके साथ खेलना शुरू करता हूँ, बॉल देता हूँ, ये मुझे मालूम है कि वो बच्चा है और वो मैं चाहता हूँ। लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इस दर्द में दुख में रहना चाहता हूँ और ना मुझे गेम चाहिए, ना मुझे कोई बॉल चाहिए, ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद मैं उसको घंटों घंटों घंटों घंटों घंटों उसके अंदर रहता हूँ और सडनली फिर कोई चीज आ गया, कोई मेहमान आ गया या कोई चीज, कोई लोग मिल गए या गोल्फ में पहुंच गए, खेलने लग गए, तो वो निकल जाता है।
2: निकल नहीं जाता, उस थॉट से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम किसी और चीज की तरफ चले गए। खत्म नहीं हुई बात, चोट खत्म नहीं हुई, दर्द खत्म नहीं हुआ, उससे हमें कोई और चीज आ गई, जैसे गेम आ गई, लोग आ गए, टीवी आ गए, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। यस
1: हाँ, लेकिन एक चीज आपसे बहुत जरूरी पूछनी थी जो कि इन एपिसोड्स के दौरान मुझे, कि एक पावर ऑफ विड्रॉ जो आपने कहा था उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही है कि मैं विड्रॉ को समझता हूँ कि एक कमजोरी, उसके बारे में आप अगर अगले एपिसोड में बताएं तो।
2: डेफिनेटली,
1: थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
3: To recharge ourselves, we go for retreats. Depending on the dedication with which we go for the retreat and the desire to bring about a transformation, we see our results. For some, the stability remains for a few hours, for some, a few days, and for some, it stays longer. At the retreat, we withdraw from the external situations and people, check our emotional blockages and resolve them. Let go of the past and forgive people. Within ourselves is a stillness, a sanctuary we can retreat at any time and be ourselves. Rajyoga meditation is a way to retreat anytime, anywhere for a few minutes. Pause, withdraw from the situation and emotion, focus on our thoughts and feelings, connect to the supreme power, emerge our original sanskar and come back into the situation with power and stability. Power to withdraw means to be with people and in the challenges, but withdraw inside from the turmoil. Withdraw even from our emotions. Detach and see ourselves creating the turbulence. Understand the ego which is causing the pain. Remind ourselves we want peace. And emerge that thought of peace from our original sanskar of purity and power.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओए खुशनसी आगमी पलती अरे होए रोशनी करते हम जलती अरे जो मिलते नहीं तारे तो अंगारों से तन को सजाती हूँ मैं हुस्न की आग में पलके अरे होए रोशनी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर

0: जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: हमारा भी जमाना था।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: दीवाना।
4: एक दीवाना शहर में।
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
4: दो दीवाने शहर में।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोल दी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे मैं याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी विशेष रेडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है श्री कृष्ण की 16 कलाएं। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला अध्याय, रूप माधुरी अर्थात सौंदर्य की कला। दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जय श्री कृष्णा।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप जानते हो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनके व्यक्तिमत्व में सभी 16 कलाओं का समावेश है। पहली कला रूप माधुरी केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनके आंतरिक तेज, करुणा और प्रेम का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण का रूप इतना आकर्षक था कि हर कोई उनके दर्शन मात्र से मोहित हो जाता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों जैसी, उनकी मुस्कान अमृत जैसी और उनका व्यक्तिमत्व चंद्रमा की शीतलता जैसा था। ये सौंदर्य केवल देखने वालों को आनंद नहीं देता था, बल्कि उनके हृदय को शांति और प्रेम से भर देता था। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो नगरवासी उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गोपिया तो पहले ही उनके सौंदर्य की दीवानी थी। उनके रूप का आकर्षण इतना था कि लोग कहते हैं कृष्ण का सौंदर्य केवल आँखों का नहीं आत्मा को छू लेता है। यह रूप माधुरी केवल भारी नहीं थी, उनके हृदय की करुणा, उनकी वाणी की मधुरता और उनके आचरण की सरलता भी उनके सौंदर्य का हिस्सा था। यही कारण है कि श्री कृष्ण का रूप आज भी भक्ति का केंद्र है। तो आइए इस प्रसंग के माध्यम से हम श्री कृष्ण के दिव्य रूप का रसपान करें और उनकी रूप माधुरी कला का अनुभव करें। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्णा दोस्तों, रूप माधुरी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य केवल चेहरे या शरीर में नहीं होता, वह हमारे व्यवहार, करुणा और प्रेम में झलकता है। कृष्ण का सौंदर्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को भी आंतरिक गुणों से सजाए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान दे तो हमारा व्यक्तित्व भी रूप माधुर से भर जाएगा। यही कला हमें बताती है कि सौंदर्य का वास्तविक अर्थ है दूसरों को शांति और प्रेम देना। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से हम श्री कृष्ण की रूप माधुरी कला का अनुभव करें और अपने जीवन में भी इस गुणों को अपनाइए। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्ण वंदे जगत गुरु, अर्थात मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण जगत का गुरु है। उनका रूप ही शिक्षा है, उनका सौंदर्य ही साधना है। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम है। उनकी मुस्कान अमृत जैसी है, उनकी वाणी मधुरता से भरी है और उनका आचरण सरलता का प्रतीक है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में भी कृष्ण के गुणों को अपनाएं। यदि हम अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान दे तो हम भी अपने व्यक्तित्व को दिव्यता से भर सकते हैं। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से हम श्री कृष्ण के जगत गुरु स्वरूप का अनुभव करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह थी पहली कला रूप माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि सौंदर्य का वास्तविक अर्थ है प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की दूसरी कला लीला माधुरी, यानी उनकी अद्भुत लीलाओं का आकर्षण। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

चटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली भोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: इतिहास से, भूगोल से,
0: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
0: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
2: अतुल्य भारत।
0: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
0: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक अभियान चंद्रयान 1 ने दुनिया को सबसे पहले बताया कि चंद्रमा सूखा नहीं है। चांद पर पानी यानी लूनार वाटर खोजने का क्रेडिट भारत को ही दिया जाता है। इस मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह अगस्त 2009 तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा था। इस यान को पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के एक परिवर्तित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इसके साथ ही भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
0: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।
2: भारत अनोखा राग है।
3: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: तवाशिकन तवाशिकन।
1: नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, तू आएगी और मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
1: अच्छा बाबू।

0: है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है, यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए।
1: लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है?
0: तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तुम्हारे दिल में रहती है। देख लो अंदर जाकर वो मौजूद है।

0: जय जय
1: जय जय लाला जी।
0: क्या बात प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तेने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
0: मजूरी? अहले मजूरी एक पंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?
2: इक्का।
0: एक रुपया?
2: पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है।
0: अबे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
2: इसीलिए दुखी हैं जैसे तुम।
0: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
2: इसीलिए सुखी हैं जैसे हम।
0: अरे चल चल, देख ले सुखी की सूरत।
1: लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, ये है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय हाय।
0: अबे जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर से पते की बात करता है।

गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये कृष्ण भजन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसको मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया, ये कृष्ण भजन आज भी हर पवित्र जगह पर, हर घरों में ये दोहराया जाता है। इसलिए कि इसमें वो जज्बात, वो कृष्ण भक्ति मौजूद है और ये राग मालकोस पर आधारित है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाक